नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 17 जुलाई 2026 सुबह के 5:57 होने को है। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमरीका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जीवन में देश प्रेम वो भावना है जो हमें अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती है। जब हर हृदय में सेवा, त्याग और एकता का भाव जागृत होता है, तभी एक नए और उज्जवल भारत का निर्माण होता है।

मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है सत्य, करुणा और सदाचार का पालन। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो हमें ऐसा विवेक और शक्ति प्रदान करे जिससे हमारे विचार और कर्म सदैव मानवता के हित में हों।

जब मन दुख निराशा और असहायता से घिर जाता है तब प्रभु की कृपा ही सबसे बड़ा संबल बनती है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें पूर्ण विश्वास और समर्पण हो।

भक्ति का सबसे मधुर स्वर वो है जिसमें भक्त अपने आराध्य के दर्शन की अभिलाषा में तल्लीन हो जाता है। ये विरह ही अंततः मिलन का मार्ग बनता है।

गुरु ज्ञान के वो प्रकाश हैं जो जीवन के अंधकार को दूर कर सत्य का मार्ग दिखाते हैं। उनके सानिध्य में ही जीवन को सही दिशा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने चिंतन।
1: यह शब्द सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे साथी की तस्वीर उभरती है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहे, जो बिना किसी स्वार्थ के हमें समझे, हमारा मार्गदर्शन करे और हमें बेहतर इंसान बनाए। लेकिन जीवन में एक ऐसा दोस्त भी होता है जो कभी शिकायत नहीं करता, कभी साथ नहीं छोड़ता और हर उम्र में हमारा हाथ थामे रहता है। किताबें केवल कागज और शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि अनुभव, ज्ञान, संस्कार और भावनाओं का खजाना भी होती है। एक अच्छी किताब इंसान को वह सिखा देती है जो कई बार जिंदगी सालों में भी नहीं सिखा पाती। जब इंसान अकेला होता है, किताबें उसका साथ देती है। जब वह निराश होता है, किताबें उसे उम्मीद देती है। जब वह रास्ता भटकता है, किताबें उसे सही दिशा दिखाती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जिस घर में किताबें होती हैं, वहां विचारों की रोशनी कभी कम नहीं होती। आज का समय डिजिटल युग का समय है। मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को जानकारी तो बहुत दी है, लेकिन पढ़ने की आदत कहीं न कहीं कम होती जा रही है। छोटी छोटी स्क्रीन पर सिमटती दुनिया में इंसान धैर्य खोता जा रहा है, लेकिन किताबें हमें ठहरना सिखाती है, सोचने की शक्ति देती है और भीतर से मजबूत बनाती है। एक किताब हमें हजारों लोगों के अनुभवों से जोड़ देती है। हम घर बैठे इतिहास जान सकते हैं, विज्ञान को समझ सकते हैं और महान लोगों के संघर्ष को पढ़ सकते हैं। जीवन जीने की कला सिखाती है हमें किताबें। किताबें इंसान को सिर्फ शिक्षित नहीं करती, बल्कि उन्हें संस्कारित भी करती है। कहा जाता है, अगर आप जीवन में एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो अच्छी किताबों से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि किताबें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाती। वे हमें धैर्य, विनम्रता, समझदारी और सकारात्मक सोच का संदेश देती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम फिर से किताबों की ओर लौटें। बच्चों को मोबाइल से ज्यादा किताबों के करीब लाएं, क्योंकि जो पीढ़ी पढ़ना छोड़ देती है वह धीरे धीरे सोचने की शक्ति भी खोने लगती है। किताबें सचमुच इंसान की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त हैं। वे बिना बोले बहुत कुछ कहती हैं, बिना मांगे बहुत कुछ दे जाती हैं और बिना शर्त जीवन को बेहतर बना देती है। जब इंसान अकेला होता है, परेशान होता है या जीवन में दिशा खोज रहा होता है, तब किताबें उसे नई सोच और नया साहस देती है। किताबें कभी शिकायत नहीं करती, कभी साथ नहीं छोड़ती। आप जब चाहे उन्हें खोल लीजिए, वे हमेशा कुछ नया सिखाने के लिए तैयार रहती है। हमें अतीत से जोड़ती है। प्रेरणादायक किताबें हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं और साहित्य हमें संवेदनशील बनाते हैं। आज के समय में लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि जिस इंसान ने किताबों से दोस्ती कर ली, उसने अपने जीवन को समृद्ध बना लिया, क्योंकि किताबें केवल जानकारी नहीं देती, वे सोचने का तरीका बदल देती है। महान व्यक्तियों के जीवन को देखें तो पाएंगे कि उनकी सफलता के पीछे किताबों का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सभी ने किताबों को अपना सच्चा साथी माना। किताबें हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी जीना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को फिर से किताबों के करीब लाएं। घरों में मोबाइल से ज्यादा किताबों की जगह होनी चाहिए। क्योंकि जिस समाज में पढ़ने की आदत खत्म हो जाती है वहां सोचने और समझने की क्षमता भी कमजोर होने लगती है।
0: किताबों से दोस्ती, अभी आपने सुना आज का चिंतन। वाचक स्वर नीलेश जोशी का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने खेती की बातें। आज के इस कार्यक्रम में दलहनी फसलों में उर्वरक प्रबंधन, इस विषय पर आपको सुनवा रहे हैं ये जानकारी।
2: सभी किसान भाई बहनों का डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों ने आज अपन बात करांगा दलहनी फसल नम उर्वरक प्रबंधन का बारा में। दलहनी फसल जैसा चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, ये हमारा भोजन में प्रोटीन को प्रमुख स्रोत रज। इन्हें फसल नम एक विशेषता यह रज कि ये अपनी गांठ न का माध्यम से, जी इनकी जड़ नम बनने वाली गांठ न छे ओका माध्यम से वायुमंडल की नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिर करी देज। एकासी जी फसल खेत में लगेल छे ओका तो लाभ मिला जा सही, पर ओका साथ साथ अगली फसल भी जी लगावगा ओका लेना भी मिट्टी की उर्वरता में सुधार हुई जाए। पर एको ई बिल्कुल अर्थ नहीं है कि दलहनी फसल न का उर्वरक न की आवश्यकता नहीं रहती है। अच्छी पैदावार का लेना संतुलित न वैज्ञानिक उर्वरक न को प्रबंधन दलहनी फसल न का लेना बहुत आवश्यक छे। न एका लेना सबसे पहलो कदम छे मिट्टी की जाँच कराण। बिना मिट्टी की जाँच कराए उर्वरक न को प्रयोग करनु बिल्कुल भी सही नहीं है। मिट्टी परीक्षण से ये मालूम पड़ज, ये जानकारी होज कि खेत में कहाँ कहाँ का पोषक तत्व न की पर्याप्त मात्रा छे न किना पोषक तत्व न की कमी छे। इनाज आधार पर उर्वरक न की सही मात्रा निर्धारित हो सकज। एका सिकाई होज कि लागत में भी कमी आवज न उत्पादन न भी बढ़ोतरी होज। दलहनी फसल न में सामान्य नाइट्रोजन की आवश्यकता दूसरी फसल न की तुलना में कम रज, फिर भी बुआई का समय 15-20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का माध्यम से प्रारंभिक वृद्धि का लेना देनु आवश्यक रज। एक साथ साथ फास्फोरस को विशेष महत्व छे क्योंकि ये जड़ न का विकास का लेना, गांठ न का निर्माण का लेना न दाना की संख्या बढ़ावना में बहुत सहायक रज। तो हमारा किसान भाई बहनों मिट्टी परीक्षण की सिफारिश का आधार पर फास्फोरस को उपयोग भी अच्छा तरीका से करी सकज। कभी आपकी मिट्टी परीक्षण का परिणाम ये आये हो कि आपका खेत की मिट्टी में पोटाश की कमी छे तो ओकी पूर्ति करनु भी आवश्यक, क्योंकि पोटाश पौधा की मजबूत बनावना का साथ साथ ओका सूखा न रोग न सी लड़ना की सहन शक्ति देज। ये तो था हमारा मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस न पोटाश। एका साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व न की

0: महत्वपूर्ण भूमिका राज दलहनी फसल नमा। अपन सल्फर की बात करा तो सल्फर दलहनी फसल नमा प्रोटीन का निर्माण में सहयोग करज। सल्फर की कमी सी पत्ती न पीली पड़ने लगी जाय, एकासी उत्पादन घटी जाय। इनाज तरीका से जिंक की मात्रा आवश्यक छे, बोरान, मोलिब्डिनम, अभी सब पोषक तत्व न की कमी का लक्षण हमारी फसल पर देखाना लगी जाय, नौको उत्पादन भी प्रभावित करज। एकालेना दलहनी फसल नमा कृषि विशेषज्ञ की सलाह का अनुसार ज उर्वरक नको उपयोग करनो आवश्यक छे। दलहनी फसल नमा राइजोबियम कल्चर का माध्यम से बीज को उपचार अत्यंत जरूरी छे। एका साथ जड़ में अधिक गांठ न बढ़ना में सहायकता मिलेगा न साथ में वायुमंडल की जो नाइट्रोजन छे उका स्थिरीकरण कभी बढ़ाई देगा। फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु यानी कि पीएसबी कल्चर को उपयोग भी फॉस्फोरस की उपलब्धता का बढ़ाई देज न एकासी पौधा की वृद्धि अच्छी हुई जाए। जैविक खाद न को प्रयोग भी उर्वरक प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सो छे। अच्छी तरीका से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को प्रयोग मिट्टी की संरचना का सुधारना में बहुत सहयोग करज। एकासी जल धारण क्षमता बढ़ी जाए, लाभकारी जीवन की संख्या में वृद्धि हुई जाए। तो दलहनी फसल नमो उर्वरक न को प्रयोग सही समय पर सही विधि का अनुसार न सही मात्रा में करनु बहुत आवश्यक छे। अधिकांश उर्वरक न की बुआई का समय 20 से थोड़ी दूरी पर डालनु लाभप्रद रज। एकासी वो पोषक तत्व पौधा का आसानी से मिली जाए। दलहनी फसल नमा संतुलित उर्वरक प्रबंधन मिट्टी परीक्षण की जांच का बात करानु न एका साथ साथ जैव उर्वरक न को उपयोग करीना न जैविक खाद न को समुचित प्रयोग करीना न अपनी फसल की वृद्धि का अच्छो उत्पादन मिली जाएगा न मिट्टी की उर्वरता भी साथ में बनेल रहेगा। तो आज हमारो किसान भाई बहन से योज कहनु छे।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, दलहनी फसलों में उर्वरक प्रबंधन, इस विषय पर आपने ये जानकारी सुनी। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

दीर्घकाल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानि हुई कि हरि के भक्ति बिना जीवन अकारथ बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें जैसे आघाती न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मन चाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको जानकारी दें हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे इंदौर परिक्रमा। सदाबहार फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनहरे गीत होगा 7:35 से, और दिन में सुबह 8:30 पर आज आप सुनेंगे रूपक हमारी ये बेटियां, आलेख राजकुमार नीमा का होगा। लोक संगीत में लीलाबाई मालवीय और साथियों के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 9:00, और सुगम संगीत में मनहर उदास का गायन सुनिएगा 9:15 से। शास्त्रीय संगीत में निखिल वडोदिया का सितार वादन आज आप सुनेंगे, राग होगा अहिर भैरव, और कार्यक्रम हम आपकी सेवा में लेकर हाजिर होंगे प्रातः 9:30 पर। प्रतिदिन की तरह जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा प्रातः 10:00, और 10:05 से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। प्रातः 11:00 आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम फोन करेंगी सुने, और फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन में 12:00 से। संग्रहालय से होगा 12:30 पर, और दिन में 1:00 हम प्रसारित करेंगे महिला कार्यक्रम। रोजाना की तरह शाम 5:00 आप सुनेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, और खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा शाम 7:20। कार्यक्रम विवरण में भी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
4: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब स्थलानां यात्रायै निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री हरियाणायाः जिन्द रेलस्थानके जिन्द सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरितपताकां प्रदर्शयिष्यति। अनेनैव सह श्रीमोदी जिन्दनगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे 7,14,000 कोटि रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। प्रथमस्य हाइड्रोजन संचालित रेलयानस्य अयं शुभारम्भः रेलक्षेत्रे स्वच्छ सतत विकासाय कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। जिन्दनगरात् प्रधानमन्त्री चण्डीगढ़ं प्रति प्रस्थास्यति, यत्र अपराह्णे पादोन द्विवादने सः 7,14,000 रूप्यतोप्यधिकानां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे सः जनसभामपि सम्बोधयिष्यति। ततः परं प्रधानमन्त्री पंजाबस्य जालन्धर नगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः 7,74,500 रूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कतर देशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम अकरोत्। अथ फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति शोक संवेदनाः प्रेषितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् कतर देशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायी रिक्तं भारत कतरदेशयोः मध्ये सामरिक सहभागितां सुदृढां कर्तुं अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति। असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं कतरदेशे स्थित भारतीय समुदायं प्रति तस्य आत्मीय भावं भारत कतर संबंधान सुदृढीकर्तुं तस्य दृढ़ प्रतिबद्धतां च स्मृतवान्। जुलाई मासस्य 20 दिनांके आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृत सत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता एनडीए इति संयुतिः अद्य सहयोगी दलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति। अस्मिन्नुपवेशने प्रावृत सत्राय एनडीए संयुतेः संसदीय कार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते। अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः सहयोगिदलानां परस्पर समन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्ण प्रतिपक्षाय एकीकृत कार्ययोजनायाः विषये विचार विमर्शः भविष्यति। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थयास्य वर्षस्य नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातक स्तरीय चिकित्सा दंत चिकित्सा आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11 लक्षाधिकाः अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अंकपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्यारभ्य त्रिदिवसीय यात्रायै पश्चिम बंगाल राज्यं गमिष्यति। सूत्रानुसारं यात्रावधौ सः सीमा सुरक्षायाः प्रशासनस्य विधिव्यवस्थायाः विकासात्मक कार्यक्रमेषु भागं निर्वक्ष्यति। श्वः श्रीशाह सिलीगुड़ी क्षेत्रस्य जुमागाछिति सीम्नि गत्वा सीमा सुरक्षाबलस्य सैनिकैः साकं सम्भाषणमपि विधास्यति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां त्रि-एकदिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन गतरात्रौ कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे भारतदलं चतुर्स्तोभैः पराजितम्। जो रूट उत्तम प्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठ क्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। अधुना उभे दले रविवासरे लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे आयोज्यमाने अन्तिमायां निर्णायक श्रृंखलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3,200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
5: जींद के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रूपये से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे सीमा

0: सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमा खाच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल के जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरूआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। खेलों में हॉकी इंडिया देशभर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इस पहल का उद्देश्य कोचों और तकनीकी अधिकारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा देश में हॉकी शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर-17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: आइए श्रोताओं, आपको जानकारी देते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। प्रातः 7:20 पर आज आप सुनेंगे विविध जानकारियों से भरा कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा। साथ ही सदाबहार फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल होगा 7:35। रूपक हमारी ये बेटियाँ, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 8:30 से। और फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन प्रतिदिन की तरह आज आप सुनेंगे 10:05 से। इस कार्यक्रम में आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। आप सभी जानते हैं हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन आकाशवाणी इंदौर के चैनल मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर सुना जा सकता है। साथ ही साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए हमारे फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए 2710223 और 2710224, 2710223 और 2710224, और इंदौर का STD कोड है 0731 यानी कि 0731। तो हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इस कार्यक्रम में इंतज़ार रहेगा। आप हमें फ़ोन ज़रूर करें। साथ ही साथ दिन में 1 बजे आज आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे प्लास्टिक प्रदूषण और उसका समाधान, इस विषय पर रोचक जानकारी। साथ ही साथ विभिन्न विषयों पर आपको जानकारी इस कार्यक्रम में सुनने को मिलेगी, जैसे मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता पोषण किशोरों से स्कूल में प्रदर्शन में मददगार, इस विषय पर शेफाली पाठक से प्रीति जोशी की बातचीत। मी टाइम सेगमेंट में आप जानेंगे किस तरह से ब्रेसलेट बनाएं और अपने करियर को एक नई दिशा आप दे सकते हैं, और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन 31 जुलाई तक किस तरह से भर सकते हैं आयकर रिटर्न्स, और मौसम के अनुसार आहार विहार कैसा हो, इस विषय पर हेल्थ टिप्स भी इस कार्यक्रम में आज आपको सुनने को मिलेंगी।

शाम 5 बजे होगा युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। आज के कार्यक्रम में जानिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के विषय में जानकारी, साथ ही साथ साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियों और विभिन्न फिल्मी गीतों और रोचक जानकारी से भरा हुआ ये कार्यक्रम आप शाम 5 बजे सुन सकते हैं। रोजाना की तरह हम खेती गृहस्थी लेकर हाजिर होंगे, समय रहेगा शाम 7:20 पर। आज के इस कार्यक्रम में जल संचयन के विषय में आप जानकारी सुनेंगे, साथ ही साथ भिंडी की उन्नत खेती इस विषय पर डॉक्टर भरत लाल से तुलसा दवैया की बातचीत जरूर सुनिएगा और साथ ही इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे विभिन्न लोकगीत।

श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 से, और शास्त्रीय संगीत में आज रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे गायन शंभू प्रसाद पवार का, राग होगा बागेश्री कांगड़ा।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के 13 स्टेशनों सहित देश को 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों की मिलेगी सौगात। दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों से की चर्चा। 20,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। और भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक सम्मेलन आज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में ये रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उनका

0: है आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जिंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का वर्चुअली माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसमें मध्यप्रदेश के टीकमगढ़, अशोकनगर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सांची, विदिशा, छतरपुर, भिंड, शिवपुरी सहित 13 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव टीकमगढ़ जिले के लगभग 189 करोड़ रूपये से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरित करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए पास हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। एनटीए ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस साल भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केन्द्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश ने नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 तथा इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के माध्यम से निवेश आकर्षित करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दोनों आयोजनों में प्रदेश को 20,193 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लगभग 27,000 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
3: मध्य प्रदेश को आप जरी स्टेट, रेशम स्टेट, मैनमेड फाइबर स्टेट, देश का कॉटन हब का ताज पहनाओ या हमारे खेतों में पसीना बहाते किसानों के साथ लूम में बैठे हुए बुनकरों और शिल्पकारों के साथ आप आनंद का समय गुजारो, ये लक्षण भी अगर कहीं दिखाई देते हैं तो मध्य प्रदेश में सहजता के साथ दिखाई देते हैं।
1: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों, उद्योगपतियों और वैश्विक ब्रांड प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश को देश का उभरता हुआ औद्योगिक और टेक्सटाइल हब बताया। उन्हें जनवरी 2027 में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने का आमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश निवेशकों को अनुकूल नीतियां, मजबूत अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन और त्वरित प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निवेश प्रस्तावों, साझेदारियों और एमओयू के माध्यम से मध्य प्रदेश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग में धार जिले का पीएम मित्रा पार्क देश का सबसे बड़ा मित्रा पार्क है। इसमें 90% भूखंड आवंटित हो चुके हैं, ये एक उपलब्धि है। कल नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल मध्य प्रदेश के धार को देश के पहले पीएम मित्रा पार्क की सौगात दी थी। प्रदेश की बढ़ती निर्यात क्षमता और रोजगार सृजन की शक्ति से अब दुनिया परिचित हो रही है। भोपाल स्थित निर्वाचन सदन में आज अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन में कई देशों के निर्वाचन प्रबंधन से जुड़े प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, अधिकारी ऑनलाइन सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने, निर्वाचन प्रबंधन में नवाचार, मतदाता सहभागिता, तकनीक के प्रभावी उपयोग और निर्वाचन से जुड़ी वैश्विक सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये सम्मेलन निर्वाचन प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नई दिशा प्रदान करने के साथ साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज

सुबह 9:30 बजे फिर शुरू होगी। कल रात अंधेरा होने पर रथों को वहीं रोक दिया गया था। आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा के रथ श्री गुंडिचा मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल अशोकनगर जिले के विकासखंड मुंगावली के ग्राम सिमरखेड़ी में नवनिर्मित विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। धार में कल भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। आधुनिक रथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्तियों को विराजित कर नगर भ्रमण में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। खंडवा जिले के रुस्तमपुर स्थित मेसर्स प्रेरणा कृषि सेवा केंद्र के खिलाफ उर्वरक विक्रय और भंडारण में अनियमितता पाए जाने पर पंधाना थाने में FIR दर्ज की गई है। कटनी में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ईको क्लब दिवस के अवसर पर कल एक पेड़ माँ के नाम अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रमों आयोजन किया गया। आगर मालवा जिले के सोयत कला में लगभग 6.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन नवीन तहसील कार्यालय भवन का कल कलेक्टर ने निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। मंदसौर के सीतामऊ विकासखंड के हाई रिस्क क्षेत्र लदूना और दीपाखेड़ी में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने इंदौर परिक्रमा।
1: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
2: नमस्कार श्रोताओं, इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम के साथ आपका मित्र मुकाम सिंह चौहान। श्रोताओं, कल 16 जुलाई 2026 गुरुवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्राएं पूरी आस्था और उत्साह के साथ ओडिशा के पुरी, गुजरात के अहमदाबाद और मध्य प्रदेश के उज्जैन सहित देश के विभिन्न शहरों में निकाली गई। इस्कान मंदिर की यात्रा में पहली बार तीनों भगवान अलग अलग रथों पर सवार हुए। भगवान बलदेव ताल ध्वज पर, देवी सुभद्रा दर्प दलन पर और भगवान जगन्नाथ सबसे बड़े 35 फीट ऊंचे नंदी घोष रथ पर विराजमान हुए। भगवान के लिए बंगाल के कारीगरों ने जापान से मंगाए गए विशेष धागों और मोतियों से करीब 2.5 लाख रुपए की दिव्य पोशाक तैयार की। उज्जैन में आयोजित इस भव्य रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु सम्मिलित हुए।

0: श्रोताओं, 15 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंदौर अबुधाबी सीधी उड़ान सेवा का भव्य शुभारंभ किया। यह मध्य प्रदेश की नागरिक विमानन नीति 2025 के तहत शुरू की गई राज्य की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा है। इस हवाई सेवा से जुड़ी कुछ बातें हम आपको बता दें। पहले इंदौर से अबू धाबी जाने के लिए दिल्ली या मुंबई होकर जाना पड़ता था, जिससे 7 से 8 घंटे का समय लगता था। अब इस सीधी फ्लाइट से यात्री मात्र 3 घंटे 15 मिनट में अबू धाबी पहुंच सकेंगे। यह सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। इंदौर और पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र के लिए यह एक बड़ी सौगात है। इस सीधी उड़ान सेवा से क्षेत्र में व्यापार, निवेश, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विचार पर काम कर रही है, जिसमें हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके।
1: मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से विमानन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ान का ये बहुत महत्व का अवसर। ऐसे में मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति 2025 से वित्त पोषित यह योजना, जिसके माध्यम से इंदौर से अबू धाबी हवाई मार्ग पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये नई विमान सेवा हमारे अपने संकल्प की पूर्ति भी करेगी। यहाँ मुझे इस बात की ज्यादा अंदर से भी खुशी है। सच में हमारे लिए आर्थिक रूप से इंदौर की अपनी समृद्धि और इंदौर की समृद्धि और बढ़ जाती है जब मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में ये हमारा मालवा का पहला रीजन बनता है। इसके साथ साथ हमारे राज्य के अंदर भी आज की स्थिति में मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि इस एविएशन नीति 2025 के बलबूते पर हमारे राज्य के अंदर भी विमान सेवाएं, चाहे हेली सर्विस हो या रूटीन की हमारी डेस्टिनेशन यात्राएं हैं। इससे पहले जो मुझे बताया गया, हमारी अपनी सफलता के साथ अभी तक का जो आंकड़ा है, हमारी रीवा दिल्ली, रीवा इंदौर, रीवा रायपुर, ये जो अलग अलग सेवाएं हैं 25 और 26 में क्रमशः ये आज भी जारी है। अब आगे जाकर के हम अपने जबलपुर, कोलकाता, भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता, इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के अंदर भी इंदौर से धार्मिक पर्यटन की हेली सर्विस जो रेगुलर फ्लाइट के नाते से यहाँ से उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, खास करके ये जो मार्ग है कम समय में ज्यादा बेहतर सुविधा के लिए, और जिसे मैं आज अगर अबू धाबी की तरफ देखता हूँ तो हर सप्ताह के अंदर 4 दिन उपलब्ध होने वाली सेवा जो न केवल हमारे यात्रियों का समय घटाएगी, 7 से 8 घंटे लगते हैं लेकिन इस यात्रा में 3 घंटे 15 मिनट में ये यात्रा पूरी होगी, क्योंकि हमको दिल्ली बम्बई कहीं और नहीं जाना, यहीं से शुरू करना, यही हमारे लिए ये अपना महत्व का केंद्र बनेगा। हमारी एविएशन नीति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए पर फ्लाइट 15 लाख रुपया सरकार पर उड़ान के लिए देने को तैयार है और इसी सिलसिले में ये बड़ी सौगात मिल रही है।
0: श्रोताओं, इसी दिन यानी 15 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के धार रोड स्थित जिला चिकित्सालय के नवनिर्मित अत्याधुनिक भवन का लोकार्पण किया। 4 मंजिला नए अस्पताल भवन का निर्माण लगभग 83.13 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जिसमें 300 बेड की क्षमता है। इस सर्व सुविधा युक्त चिकित्सा भवन में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी जैसी उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे इंदौर और आसपास के जिलों के मरीजों को काफी राहत मिलेगी। पहले चरण में फिलहाल 34 बेड की प्रसूति यानी मैटरनिटी विंग शुरू की जा रही है, जबकि शेष बेड और अन्य मुख्य विभाग जैसे मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग आने वाले समय में पूरी तरह संचालित होंगे। इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ राज्य के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया,
2: इसके विस्तार के लिए हम सब लोग लगातार काम करते रहे और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि पहले ये सिर्फ ओपीडी बनी थी, फिर 30 बेड का हॉस्पिटल बना, फिर 100 बेड का हॉस्पिटल बना, आज 300 बेड का हॉस्पिटल बनाए, क्षेत्र की बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी सौगात है।
0: माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करते हुए,
1: किसी भी स्थान पर सच में आज मैं जहां जिस स्थान पर जिस जगह का यह हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने NMC लगाते हुए आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई और मेडिकल कॉलेज के लिए आज अपने प्रदेश के अंदर 5,500 UG की सीट अपने प्रदेश के अंदर हो गई। प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर के 5 से बढ़कर 33 मेडिकल कॉलेज आज हमारे राज्य में हुए और ये 2.5 साल के अंदर बचे हुए सारे कॉलेज जोड़ेंगे तो 52 मेडिकल कॉलेज अकेले अपने मध्य प्रदेश में होंगे। जीवन उपयोगी सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बढ़ते बढ़ते, और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो अपने राज्य के बच्चों को नीट की एग्जाम में क्लियर होने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा जो बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ नहीं दे पाता है, उन सबके बच्चों को सरकार फीस देकर के डॉक्टर बना रही है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, क्योंकि डॉक्टर बनता है, डॉक्टर के साथ हमारा भविष्य का एक बड़ी चिकित्सा की पूर्ति करने के लिए एक नए प्रकार की व्यवस्था में हमको व्यक्ति चाहिए, और हमने अब उसमें भी रास्ता निकाला कि हम लोन देकर के उसको डॉक्टर बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज बड़ी संख्या में खुले, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी बच्चे पढ़े और पढ़ करके 4 साल 5 साल 6 साल वो शुरुआत में डॉक्टर बनने के बाद हमारा लोन चुका दे, उसके बाद वो चाहे तो नौकरी करे या चाहो तो वो आगे बढ़े, लेकिन बच्चा डॉक्टर बनने के लिए उसकी अगर क्षमता योग्यता है बुद्धिमत्ता है तो सरकार के माध्यम से उसकी मदद करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। सेवा और सुशासन के लोक कल्याण के क्षेत्र में यहाँ नया मंदिर बनेगा जो स्वास्थ्य के मामले में हमारे अपने जीवन की एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करेगा।

0: और श्रोताओं, 15 जुलाई को आयोजनों के श्रृंखलाबद्ध क्रम में अगला बड़ा आयोजन बलराम कृषि महोत्सव 2026 के रूप में रहा। इस आयोजन का भव्य शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि और किसानों और व्यापारियों की मौजूदगी में किया गया। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। कार्यक्रम के दौरान कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीजों एवं नए कृषि यंत्रों, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में रासायनिक खाद के बजाय प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाने पर विशेष बल दिया गया, ताकि खेती को टिकाऊ और अधिक मुनाफेदार बनाया जा सके। इस बात पर प्रकाश डालते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव,
1: आज के इस किसान सम्मेलन में बलराम कृषि महोत्सव और जैसा कि माननीय कैलाश जी भाई साहब बता रहे, हमारे अपने इस पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष मनाने का हमने निर्णय किया है और किसान कल्याण वर्ष में किसान हितैषी सभी योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रयत्न चल रहे हैं। जब किसान कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं तो किसानों की बात जनता के बीच जिलों में जाकर करने के लिए एक बड़ा बीड़ा उठाया हमारे मित्र कपिल यादव और उनकी पूरी टीम ने, और किसान कल्याण के साथ किसानों के अलग अलग विभाग को उन सबको जोड़ करके, चाहे हमारा उद्यानिकी विभाग हो, कृषि विभाग हो, हमारे एमएसएमई लघु कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के विभागों को साथ जोड़ते हुए जब हमने किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की तो 16 अलग अलग विभागों को जोड़ करके इस पूरे विभागों का एक समुच्चय बनाया और इस आधार पर हमने निर्णय किया कि सरकार के माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों की अपनी आय बढ़ाने के लिए, उनका समग्र संपूर्ण विकास के लिए एक साथ समग्र कल्पना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बीते साल 2025 में हमारी सरकार के माध्यम से जब हमने अपने गरीब वर्ग के कल्याण के लिए, सभी वर्गों को आगे बढ़ने के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष की घोषणा की थी, और आप सबको मालूम होगा पहली बार हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर, संभाग केंद्र पर, जिला केंद्र पर, कई तो तहसील केंद्रों पर भी उद्योग और रोजगार वर्ष मना करके यहाँ रोजगार की जो बड़ी संभावना उस पे काम करना प्रारंभ किया है, और उसी का परिणाम है हमारी अपनी सरकार के माध्यम से 10 लाख करोड़ से ज्यादा के रोजगार के कारखाने हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे लग करके शुरू हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है और ये साल जब हम किसानों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीते साल का धन्यवाद दूंगा, यहाँ माननीय श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी मौजूद है, नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, 250 से ज्यादा नदियां अलग अलग क्षेत्रों से निकल करके पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद देश के शेष राज्यों में जाकर के अपनी आंचल से जल की लहर ले जाकर के लोगों की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। किसानों के लिए मन में सद्भावना है, हमारे मन में है किसान की समृद्धि और होना चाहिए। इतना बदलते दौर में पीकेसी योजना के माध्यम से, पार्वती कालीसिंह चंबल योजना के माध्यम से श्योपुर से लगा करके, श्योपुर से लगा करके मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, पूरे 13 जिलों के अंदर पानी मिलेगा। अब हमारी एक एक योजना किसान आधारित बन रही है, किसानों के माध्यम से अब फूड प्रोसेसिंग, फसल का ठीक से दाम मिल जाए और इंडस्ट्रिया लगे तो खेत से कारखाने तक और कारखाने से बाजार तक पूरा इकोसिस्टम बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। अब आगर में भी, उज्जैन में भी और इंदौर में भी हर एक जगह फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लग रही है। एक एक करके हर एक स्थान पर सारी चीजें, कोदो कुटकी के लिए फूड प्रोसेसिंग की हमारी इकाई चालू हो रही है। अब की बार इस गर्मी के फसल के टाइम अर्थात जैसे ही बरसात खत्म होगी, सोयाबीन के बाद आप जो करोगे, गेहूं चना या अपनी सब्जी या आलू वगैरह, उन सब के लिए दिन में बिजली देंगे, दिन में पूरे समय। आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो मछुआरे भाई बहन हैं उनको मत्स्य उत्पादन के लिए हमारी सरकार उसमें मदद कर रही, और जो पशुपालन करते हुए अपनी आय बढ़ाना चाहता है ऐसे में दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए, हमारे यहाँ अभी 12% दूध का उत्पादन राज्य में होता है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। और उसके बलबूते पर जो दूध का उत्पादन करना चाहते हैं, दूध डेयरी लगाना चाहते हैं, 40 लाख की डेयरी 10 लाख रुपए सरकार उसको अनुदान देगी लगाने के लिए। दूध भी आपका, पशु भी आपके, कमाई भी आपकी, लेकिन आपका दूध उत्पादन में योगदान प्रदेश की समृद्धि और आपके घर की समृद्धि के लिए होना चाहिए। वास्तव में आज भी हमारे राज्य की जीडीपी का 43% हमारा अपना कृषि सेक्टर से आता है, और खाद्यान्न उत्पादन में भी हमारा प्रदेश देश में दूसरे नंबर पे है। श्री अन्न, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, इसमें हम नंबर 1 पे हैं। संतरा, धनिया, लहसुन में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर इंदौर के अंदर से यह शुरुआत होने वाली, पूरे प्रदेश के अंदर नवंबर तक जाने वाली है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस कृषि उपज मंडी को शिफ्ट करने की बात भी आई, मैं यहीं से शिफ्ट करने की घोषणा करता हूँ, ताकि बड़ी कृषि उपज मंडी मिले, लोगों को सारी व्यवस्था हो, व्यापारियों को भी भला हो। इस किसान कल्याण वर्ष में संकल्प करें और किसान की बेहतरी के लिए जो बन सके

0: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
1: अभी आप सुन रहे थे इंदौर परिक्रमा, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने सुनहरे पल।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुनहरे पल में। मैं हूं राहुल तिवारी। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं हिना फिल्म के इस गीत के साथ, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज में। संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: अनजान ऐप से बचें।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: गीत, आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जब जब फूल खिले, आइए इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: काजल फिल्म का गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनहरे पल, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
3: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहेब और श्री अनंतपुर साहेब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अम्बाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
3: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य

0: संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केन्द्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरूआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से कंगंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए

0: मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन फ्रॉम जींद रेलवे स्टेशन इन हरियाणा दिस मॉर्निंग। डेली गवर्नमेंट अप्रूव्स 400 करोड़ रुपीज स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन पॉलिसी टू प्रमोट इनोवेशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी डिक्लेयर्स रिजल्ट्स ऑफ नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन। गुजरात एटीएस अरेस्ट 5 पर्सन फ्रॉम पाटन डिस्ट्रिक्ट इन कनेक्शन विद इट्स प्रोब इनटू जैश ए मोहम्मद टेरर मॉड्यूल। एंड इन मेन्स क्रिकेट, होस्ट इंग्लैंड बीट इंडिया बाय 4 विकेट्स इन सेकेंड ओडीआई टू लेवल 3 मैच सीरीज 1-1। And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With its introduction, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. More from our correspondent.
3: India has set a new global benchmark with this project, surpassing many other nations currently testing this technology. While countries like Germany and China usually run 2 or 3 coach hydrogen trains, India has developed a 10 coach formation. It is designed to carry nearly 2,600 passengers, which is the highest capacity among compared hydrogen trains globally. This hydrogen train is powered by a 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. The hydrogen facility has been established at Jind to enable safe, efficient and reliable hydrogen-powered rail operations. Anand Kumar, Akashwani News, Jind.
2: From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m. he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, Prime Minister Modi will visit Jalandhar in Punjab this afternoon, where he will inaugurate and lay the foundation stone of rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Our correspondent reports that these projects are aimed at strengthening connectivity, improve passenger convenience and accelerate economic development in the region.
4: Prime Minister will inaugurate 74 redeveloped railway stations across 20 states virtually from Jalandhar, including SAS Nagar Mohali Railway Station, Shri Muktsar Sahib Railway Station,

0: मृदा अपि चन्दन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वश्री रामा। हमारे देश की मिट्टी चंदन के समान है, जिसका गांव गांव सिद्धवन के समान है, और जहां का हर बालक राम और जहां बालिकाएं देवी स्वरूप पूजी जाती हैं।
1: इन्हीं देवी स्वरूपा बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने, अपने मनपसंद क्षेत्र में सफलता दिलाने और समाज में एक अहम भूमिका निभाने के लिए एक ऐसे आत्मविश्वास की आवश्यकता है जो उनमें शिक्षा से जोड़कर या शिक्षा के प्रति जागृति पैदा कर लाया जा सकता है। यदि हम सुखी और समृद्ध समाज और उन्नत राष्ट्र की रचना करना चाहते हैं, तो हमें बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हम बालिकाओं को कैसी शिक्षा दें, या फिर ऐसी शिक्षा दें जो उत्तम नागरिक तैयार करने हेतु उसे सक्षम बनाए।
0: यदि कर्मण्यता ही जीवन है तो शिक्षा स्त्रियों को कर्मण्य बनाती है। शिक्षा मात्र ज्ञान वर्धक न होकर व्यक्तित्व व चरित्र को निखारने का कार्य भी करती है, समस्त मानवीय गुणों का विकास करती है।
1: भारत को एक विकासशील देश से विकसित देश बनाने में बालिकाओं को ज्ञान और शिक्षा द्वारा सक्षम बनाना आवश्यक है, ताकि वे सभी क्षेत्रों में, विशेषकर स्वास्थ्य, पोषक आहार, जल और सफाई तथा पर्यावरण के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगी। शिक्षा के प्रति माताओं को जो नजरिया रखना है, उसका असर उनकी पुत्रियों पर पड़ता है। इस तरह भावी पीढ़ियों को शिक्षित करने की दिशा में भी वर्तमान में बालिका शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
0: लिंग भेद को दूर करने और समानता की भावना बढ़ाने के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ाना प्रथम व अनिवार्य कदम है।
1: हमारे देश में एक समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और ये कुरीति के रूप में हमारे सामने आ गई है, और ये है गिरती हुई लड़कियों की जनसंख्या। पिछले कुछ दशकों से लड़कियों की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। वैसे प्रकृति के द्वारा तो लड़के और लड़की की संख्या का बेमेल सवाल पैदा ही नहीं होता, लेकिन जब गौर किया जाए तो ये कैसे हो गया? ये समस्या किसने पैदा की है? क्या हद से ज्यादा मोह लड़कों के प्रति पाला गया और लड़कियां पैदा हों तो उन्हें इस संसार में नहीं आने दिया गया? मेडिकल साइंस के मान से क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो इस लिंग भेद को मिटाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं? इसी संदर्भ को रेखांकित कर रही हैं डॉक्टर सविता इनामदार।
2: जो निर्णय लिया जाए समाज में कि भाई लड़के और लड़कियां बराबरी से हों, इसके लिए जरूरी है कि प्रकृति को उसका काम करने दिया जाए और लड़के और लड़कियों दोनों के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हुए, एक लिंग आधारित भेदभाव को दूर करते हुए अगर हम बराबरी का हक देते हैं, तो ये जरूरी है कि इस प्रकार की कुरीतियां जो कन्या भ्रूण हत्या के रूप में है, ये खत्म होना चाहिए। वो देश जहां पर लहसुन प्याज पर भी पाबंदी लगती है, उस देश में आप सोचिए तो सही कि अगर कन्या भ्रूण हत्या होती है तो जो सशक्तिकरण की आज हम बात कर रहे हैं, ये सशक्तिकरण बेमानी हो जाता है। क्योंकि अगर जन्म लेने के पूर्व ही हम मरने की मार डालने की साजिश कर रहे हैं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है बराबरी का या सशक्तिकरण का। तो इसलिए जरूरी है कि हम इस बात पर गौर करें कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके चलते लिंग आधारित भेदभाव चलता है और जिनके चलते कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम दिया जाता है।

0: स्वामी विवेकानंद ने बालिका शिक्षा की महत्ता स्वीकार करते हुए लिखा है, हम चाहते हैं कि भारत की बालिकाओं को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे आत्मनिर्भर होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सके और संघमित्रा, लीला, अहिल्याबाई और मीराबाई आदि भारत की महान नारियों द्वारा चलाई गई इस परंपरा को आगे बढ़ा सके। समाज सेविका सरोज अग्रवाल चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर मैदानी इलाकों में बालिका शिक्षा के प्रचार प्रसार में संलग्न है, उनका मानना है,
1: पर आज के जमाने में माता पिता लड़कियों पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, जो मेरी नजर में है और मैं अभी तक जितना फील्ड कर रही हूँ 18 साल से 19 साल से, पर माता पिता कहते कोई बात नहीं बेटा नहीं पढ़े, पर बेटियों को पढ़ा के हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। जो शासन प्रशासन भी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो ये है कि जो गांव में आज भी रहता है कि बेटियों को नहीं पढ़ाएं, पर गांव के भी लोग आजकल इतने वो पढ़े लिखे हो गए कि अपनी बच्चियों को अगर उनके गांव में स्कूल नहीं होता तो वो शहर भेजते हैं। मैं जो गांव में इनमें सब में जाती हूँ, लड़कियों का भविष्य लड़कों से ज्यादा अच्छा है।
2: बालिका शिक्षा की प्रगति व परिपूर्णता, इसके लिए उनके माता पिता और समस्त परिवार का सक्रिय योगदान अत्यंत आवश्यक है। माता पिता की जागृति और उनकी रुचि के अभाव में बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति कठिन ही नहीं असंभव भी है। महिला शिक्षा की राष्ट्रीय समिति ने अपने प्रतिवेदन में बालिका शिक्षा की प्रगति में माता पिता के सहयोग की आवश्यकता प्रतिपादित की है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है,
0: पढ़ो कि अपने मुल्क को पढ़ा लिखा कहा जा सके।
2: इस देश के माथे की बिंदी नहीं, इस देश का चेहरा बनना है तुम्हें।
0: पढ़ो कि दुनिया का नक्शा अधूरा है अभी, पढ़ो और आगे बढ़ो।
2: एक और दुनिया इंतजार में है तुम्हारे, एक और दुनिया इंतजार में है तुम्हारे।
0: लिंग भेद को दूर करने और समानता की भावना बढ़ाने के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ाना प्रथम व अनिवार्य कदम है। आज बालक और बालिकाओं में नामांकन, ठहराव, उपलब्धि और दिशा में बहुत अधिक अंतर है। लिंग की दृष्टि से 22.84% बालिकाएं आज भी बालकों से साक्षरता में पीछे हैं। महिला

शिक्षा की राष्ट्रीय समिति ने अपने प्रतिवेदन में बालिका शिक्षा की प्रगति में माता पिता की सहयोग की आवश्यकताओं की अपेक्षा की है। इस आशय में नेपोलियन ने कहा था, मुझे सुयोग्य माताएं दो, मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूंगा।

0: वर्तमान में बालिका शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु भारत शासन की विभिन्न योजनाएं लागू हैं, जिससे निश्चित ही बालिकाओं का उत्थान होगा और उनका विकास होगा।
1: बालिका शिक्षा के विकास हेतु मध्य प्रदेश शासन ने भी कई योजनाएं चलाई हैं। शासन ने भी बालक बालिकाओं की शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान के 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। मुकेश त्रिवेदी, प्राचार्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराफा उज्जैन।
2: शिक्षा का लोकाभिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान अभी मुख्य रूप से कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। इसमें बालिकाओं को और बालकों को सभी तरह की जो सुविधा 1 से 8 तक के बिल्कुल जीरो मूल्य पे, जरा भी फीस नहीं लगती है, निःशुल्क इनको पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है, निःशुल्क गणवेश उपलब्ध कराते हैं। और यदि कोई बच्ची या बच्चा किसी दूसरे गांव से, जिसके गांव में मिडिल स्कूल की सुविधा नहीं है, तो उनको साइकिल भी प्रदान करने की शासनिक सुविधा है। इसी तरह से जब बच्चे या बच्चियां स्कूल में रहते हैं तो अधिक समय लगता है, तो उनके जो भोजन की या उनके जो पोषण की समस्या उसको दूर करने के लिए भी शासन ने मध्यान्ह भोजन योजना चला रखी है, जिसमें जिससे कि बच्चों की जो अपनी पोषकता है, पोषक तत्व उनको मिल सके और उनका मन भी पढ़ाई में लग सके। ये अभी भी जो सोच जो है, पारिवारिक जो सोच है, वो बालकों पर ज्यादा ध्यान देना और बालिका कम ध्यान देने के लिए, क्योंकि शासन शासकीय विद्यालय में पैसा फीस नहीं लग रही, छात्रवृत्ति मिलती है, इसलिए अधिकांश जो बालिका है वो तो सरकारी विद्यालय में पढ़ रही है। फिर भी अंतर जो है, अभी अंतर तो है, इनॉल अगर देखेंगे तो बालकों की संख्या ज्यादा है अध्ययनरत में और बालिकाओं की संख्या कम है। लगभग अगर अपन माने तो अगर 100 बालक अगर अध्ययनरत अगर है तो यहाँ पे अपने पास लगभग 85 बच्चियां दर्ज होंगी, इसका डिफरेंस है।
3: अच्छा, लिंगानुपात को कम करने की दिशा में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: ये सही बात है, लिंगानुपात तो बराबर होना चाहिए। अभी देखने वाला है कि बालिकाएं जो हर क्षेत्र में जो है अपना परचम लहरा रही है, इसलिए वर्तमान समय में बालक बालिका में कोई भेद नहीं है और इसे करना भी नहीं चाहिए। मेरा यही मत है, ये जितनी क्षमता बालकों में है उससे कई गुना ज्यादा जो बालिकाओं में क्षमता है, और वो अभी दुनिया के हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है।
0: बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने और लक्ष्य प्राप्ति तक अपने मनपसंद क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस आशय में मैथिली शरण गुप्त ने कहा है,
1: भागे न क्यों हमसे भला फिर, दूर सारी सिद्धियां, पाती स्त्रियां आदर जहां, रहती हो वहीं सब सिद्धियां।
0: सार्क और बीजिंग शिखर सम्मेलन में स्त्रियों के सशक्तिकरण और उन्नति के लिए कदम उठाने और प्राथमिकता से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा की प्रगति हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। भारत में 70% जनसंख्या अभी भी गांव में ही रहती है। ग्रामीण बालिकाओं में व्याप्त अज्ञान, अंधविश्वास, अंध रूढ़ियों के उन्मूलन हेतु ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। योजना जिंसी वाले बलड़ी परियोजना जिला खंडवा में परियोजना अधिकारी हैं। आपका मानना है कि लड़के लड़की को समान शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है।
4: मैं ये समझती हूँ कि यदि जब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं निश्चित रूप से ये चाहूंगी कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी शिक्षित पढ़ी लिखी हो, और उसी प्रकार फिर मुझे भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी हो, और दोनों को समान रूप से शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है और समान अवसर मिलना भी बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में।
3: आज भी बेटे और बेटी में फर्क होता है?
4: हाँ, वैसे हम फील्ड में देखते हैं तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि बेटे बेटी में अभी भी अंतर किया जाता है। कुछ उनकी पारिवारिक स्थितियां भी ऐसी होती है जिसके कारण वो दो में से एक को पढ़ा सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं बेटे को पढ़ा लूं और बेटी को ऐसी जितनी हो सके दे सकते हैं उतनी चालू चलता हूँ शिक्षा दे दे, और इस प्रकार से लड़की को पीछे रख देते हैं और लड़के को आगे बढ़ा देते हैं, भले ही लड़के में योग्यता कम हो और लड़की में ज्यादा हो, तब भी ऐसी स्थितियां बहुत बार देखने में आती है जो कि बिल्कुल गलत है, और दोनों जिसमें योग्यता अधिक है उसको अधिक अच्छा अवसर मिलना चाहिए।
1: भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में पहुंचकर वहां नवीन अनुसंधानों को आयाम देकर बालिका शिक्षा की महत्ता को प्रोत्साहित किया है। अब तो विश्व स्तर पर भी स्वीकार कर लिया गया है कि शिक्षा से सशक्तिकरण होता है और जीवन पर्यंत निरंतर शिक्षा मानव जीवन के स्तर को उन्नत करती है। महिला सशक्तिकरण के लिए दो प्रमुख क्षेत्र हैं, पालन पोषण और दूसरा साक्षरता। इन दोनों ही क्षेत्रों में जागरूकता और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। बालिकाओं को साक्षर बनाकर ही उन्हें अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेत किया जा सकता है। गर्भ में बालिका भ्रूण की हत्या करना इसका एक ज्वलंत उदाहरण है।
5: जो कानून बना वो पीसी यानी कंसेप्शन यानी गर्भ धारण करने के पूर्व और पीएनडीटी एक्ट, ताकि लड़के और लड़कियों की जो संख्या है वो समान रहे।
0: डॉक्टर सविता इनामदार,
5: इसके अलावा एक चीज और है, केवल ये ना सोचा जाए कि लड़के और लड़कियां संख्या बराबर होना चाहिए क्योंकि समाज में ये जरूरी है। ये भी सोचिए कि लड़कियों की वैसे भी स्थिति खराब है, उन्हें समाज में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है, और ये अगर आप गर्भस्थ शिशु को गिरा देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, तो एक बहुत जोरदार संदेश समाज में पहुंचता है कि लड़कियां होती ही बेकार हैं, इनका यहाँ रहना ही सही नहीं है। तो इसलिए दो चीजों को ध्यान में रखते हुए कि एक तो संतुलन बना रहे समाज में लड़के लड़कियों का, और दूसरा ये भी कि स्त्री की गरिमा और उसका स्थान और उसका महत्व बरकरार रहे, ये जरूरी है कि कन्या भ्रूण हत्या या वे सब प्रैक्टिसेस जिनके द्वारा कन्या शिशु मृत्यु के घाट उतार दी जाती है, वो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कड़े से कड़े कानून तो बनने ही चाहिए, और इंसानियत के नाते हमें ये भी जरूरी है कि इस प्रकार की जन भावना हम फैलाएं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, और जो आज के जमाने में आज के दशक में प्रूफ कर रही है, सिद्ध कर रही है लड़कियां किसी तरह से कम नहीं है। समस्या तो इस बात की है कि हम लड़कियों को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए बड़ा नहीं कर रहे हैं, लड़कियों को हम शादी के लिए बड़ा करते हैं, लड़कों को हम अपने पैर पे खड़ा होने के लिए बड़ा करते हैं, और वहीं से त्रासदी, हमारे मन की जो त्रासदी दुख तकलीफ शुरू हो जाती है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और उसको अपने घरों में प्रैक्टिस करें कि लड़के और लड़कियां समान होते हैं, और वो अपने लड़कियों को भी बराबरी शिक्षित करें, स्वस्थ रखें, उनको उनके पैर पे खड़ा होने के लिए बड़ा करें, तो किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, एक सामंजस्य रहेगा, एक संतुलन रहेगा जो समाज के हित में रहेगा।
1: भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा है, संगीत साहित्य कला विहीना, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना।
0: क्यों ना अपने हाथ से लाना उजाला सीख ले, बालिका पैदा नहीं हुई है छटपटाने के लिए।
1: रोशनी तो द्वार चलकर आएगी स्वयं, बालिका तैयार हो गर शिक्षा को अपनाने के लिए।
6: मैं श्रीमती शांति चौहान, परियोजना खकनार, जिला ब्रांडपुर। बेटा और बेटी में समानता का व्यवहार करना चाहिए, उनमें अंतर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेटी दो कुलों की मतलब लाज होती है। बेटा वारिस है तो बेटी पारस है, बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है, बेटा तन है तो बेटी मन है, बेटा मान है तो बेटी गुमान है, बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा राम है तो बेटी बाघ है, बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है, बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, बेटा प्रेम है तो बेटी पूजा है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ।
0: हमारी बेटियों को अब बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, साथ ही अधिकारों में भी इजाफा हुआ है। फिर भी जब बात उत्तराधिकार की होती है तो नाम बेटों का ही लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, बेटियों का भी उतना ही अधिकार है। पराया धन कहकर उन्हें वारिस होने से वंचित नहीं किया जा सकता। बेटियों के हक की बात जब चलती है तो कई प्रश्न खड़े होते हैं, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर तो नए कानून दे देते हैं। इसी संदर्भ के साथ सुनील चौधरी।
7: वर्ष 2003 में शासन ने इसमें एक संशोधन किया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, और उस संशोधन का परिणाम यह हुआ है कि कोई भी बच्ची जिस दिन अपनी माँ के गर्भ से पैदा होती है, तुरंत बाद उसके पास पिता की संपत्ति में या पैतृक संपत्तियों में अधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए, बेटियों के जहाँ तक कानूनी अधिकार का सवाल है, अभी हम यदि बेटियों की बात करें तो बेटियों शब्द से ऐसा लगता है कि कोई माइनर बच्ची, नाबालिग बच्ची वो हमारी बेटी है, पर बेटियों से मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हम बेटी उसे मानते हैं जो जब तक शादीशुदा होकर मां नहीं बन जाती तब तक हमारी बेटी ही होती है। ऐसी स्थिति में बेटियों को धारा 125 में यह अधिकार है कि पिता की जो संपत्ति है, पिता उसे अफरा तफरा करना चाहता है और उसका भरण पोषण का अधिकार पिता पे है, तो वो संपत्ति को क्लेम कर सकती है, उस संपत्ति को विक्रय रुकवा सकती है और कोर्ट से कह सकती है कि मुझे मेरा भरण पोषण या मुझे मेरा लालन पालन का जो अधिकार है पिता से इसकी व्यवस्था करवाई जाए। एक बात तो ये हुई। इसके अतिरिक्त जहाँ तक बेटियों का प्रश्न है, यदि कोई पिता उनका पालन करने वाला व्यक्ति किसी पैतृक संपत्ति को बगैर किसी कारण के व्ययन करता है, बगैर किसी कारण के अलाइनेट करना चाहता है, उसे विक्रय करना चाहता है और बेटी को ऐसा लगता है कि उसका अधिकार है, तो वो कोर्ट की शरण में जा सकती है, कोर्ट से अपने अधिकारों की स्थापना करवा सकती है, कोर्ट से अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती है।
8: बिटिया घर की संस्कृति वह घर का संस्कार, दोनों कुल उज्जवल करे वचन कर्म व्यवहार। नहीं सिर्फ घर में सदा बाहर भी वह सिद्ध, रोज प्रगति वह कर रही बिटिया हुई प्रसिद्ध। कभी इंदिरा बन डटी बन कल्पना उड़ान, नुई है व्यापार में प्रतिभा राष्ट्र प्रधान। बेटी नित कर तप्यरत दो उसको अधिकार, सहज सरल निर्वाध हो जीवन सही प्रकार। तनुज तनुजा दोनों सदा पाए एक सा प्यार, भोजन वस्त्र पढ़ाई का भी समान अधिकार। डोली जिस घर से उठे खुले रहें वे द्वार, मात पिता और भाई पर सदा रहे अधिकार। नहीं दान की वस्तु है और न धन भी अन्य, बेटी वह सौभाग्य है करती दो कुल धन्य।
1: ICDS और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो NIFSID ने अपने उद्देश्यों में इस बात पर बल दिया है कि बेटियों पर आज हम ध्यान देंगे तो हमारा भविष्य सुनहरा होगा, पीढ़ियां सराहेंगी हमारे इस कदम को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रशिक्षण के अनेक कार्यक्रम संचालित किए हैं। सोमेश दुग्गल ने इसकी संक्षिप्त जानकारी हमें दी।
9: जो बेटियों को हमें आगे बढ़ाना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 50% से ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है और 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, पॉलिसी दी और हमें एक विश्वास के साथ एकजुट कर दिया एक काम करने के लिए। मुझे लगता है वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा एक दृढ़ संकल्प के साथ सराहनीय कार्य माना जाएगा। और इसमें NIFSID का बहुत ही बड़ा योगदान रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। जिस तरह से हमारे डायरेक्टर साहब ने पानीपत के मंच पर मोदी साहब के साथ इस कार्य को अंजाम देने में सहयोग किया और NIFSID के जो कार्यक्रम है उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसलिए भी है क्योंकि हम आने वाले वर्षों में ट्रेनिंग जो कर रहे हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दों पर कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि बच्चियों का ना सिर्फ हम सेफ गार्ड कर सके बल्कि उनको एम्पावर कर सके, एजुकेशन दे सके और वो शाइन करें। हम चाहते हैं कि विलेजेस में वाइब्रेंसी आए रिगार्डिंग सेविंग द गर्ल चाइल्ड।
10: आने से पहले कोख में मां मार क्यों दिया, बिन मांगे मैया ऐसा।

0: बेटी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नवरात्रि इसकी शक्ति पूजा का प्रतीक है। बेटी की गरिमा और बेटी की महिमा को रेखांकित करने वाला अभियान है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी का जीवित रहना सभ्यता का जीवित रहना है। बेटी का जीवित रहना संस्कृति का जीवित रहना है। बेटी का जीवित रहना चेतना का जीवित रहना है, संवेदनशीलता का जीवित रहना है। इसलिए जब तक हम बेटी को बचाते हैं तो मानवता को बचाते हैं, और जब बेटी को पढ़ाते हैं तो उसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर अजहर हाशमी,
1: बेटियों को बचाने और बेटियों को पढ़ाने में हम तो आगे हैं, लेकिन समाज का वो जो है विध्वंसक वर्ग जो बेटियों की तालीम से भी खुश नहीं है, बेटियों की तरक्की से भी खुश नहीं है, बेटियों के प्रथम आने से भी खुश नहीं है, बेटियों की पोजीशन प्राप्त करने से भी खुश नहीं है, जो बेटियों को एक बहुत दुर्दशा में देखना चाहता है, ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से तब लगाम लगेगी जब उनकी पुलिस में शिकायत होगी। और ऐसे स्क्वाड बनाने पड़ेंगे, ऐसे रक्षक दस्ते बनाने पड़ेंगे, जैसे सुरक्षा समितियां होती हैं पुलिस के पास, जैसे अन्य प्रकार जैसे त्योहार आते हैं और गश्त देते हैं, तो ऐसे दस्ते बनाने पड़ेंगे जैसे समाज कंटकों पर निगाह रखे। तो ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से बेटियों की रक्षा भी होगी, बेटियां पढ़ेंगी भी, बेटियां आगे भी बढ़ेंगी, बेटियां उन्नति के शिखर पर भी चढ़ेंगी जैसे कि चढ़ रही हैं। तो ये बहुत जरूरी है, और बेटियां ही इस देश को इस दुनिया को बदल रही हैं जो है, और नए नए अध्याय सफलता के लिख रही हैं। ये सफलता के नए अध्याय लिखती हुई एक खुद मिसाल के रूप में, संस्कृति के रूप में, सभ्यता के रूप में अपनी छवि छोड़ रही हैं। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं। इस प्रदूषण के जमाने में बेटियां सुरभित फिजाएं हैं, बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। लू लपट को दूर करती हैं, लू लपट को दूर करती हैं, बेटियां जल की घटाएं हैं, बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। दुर्दिनों के दौर में देखा, दुर्दिनों के दौर में देखा, बेटियां संवेदनाएं हैं, बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। गर्म झोंके बन रहे बेटे, बेटियां ठंडी हवाएं हैं, बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं। त्याग तप गुण धर्म साहस की बेटियां गौरव कथाएं हैं।
0: सदियों से होती आ रही बालिकाओं की उपेक्षा और उनके प्रति भेदभाव एक दिन में तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन सभ्य समाज के सहयोग से देश भर में उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने की योजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो तो बालिकाओं को बालकों की तरह सशक्त और समान दर्जा अवश्य प्राप्त हो सकता है।
2: नारी अर्थात बालिका ब्रह्म विद्या है, श्रद्धा है, शक्ति है, पवित्रता है, कला है, और वो सब कुछ है जो इस संसार के सर्वश्रेष्ठ के रूप में दिखाई देता है। नारी कामधेनु है, अन्नपूर्णा है, रिद्धि है, सिद्धि है, और वो सब कुछ है जो मानव प्राणी के समस्त अभावों, कष्टों और संकटों का निवारण करने में समर्थ है। हमें बालिका को उस शिक्षा को देने की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है।
0: साधना को सत्य से श्रृंगार दो, भावना को आचरण का आधार दो, तब तुम्हारी मनोकामना रंग लाएगी, जीवन को शिक्षा का

0: हमारी ये बेटियां, आलेख डॉक्टर राजकुमार नीमा का, वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और सुधा शर्मा के थे, प्रसारण सहायक उदित तिवारी और प्रस्तुतकर्ता थे सिद्धनाथ सोलंकी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र पर तैयार किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे रूपक, हमारी ये बेटियां। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना आपको दे दें। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस शुक्रवार यानी आज 17 जुलाई को सुबह 11:32 से 12 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहें सावधान। ये कार्यक्रम आप 11:32 से 12 बजे के बीच FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ यानी विविध भारती चैनल पर सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए विशेषज्ञ होंगे इंस्पेक्टर सरिता सिंह और सब इंस्पेक्टर निकिता सिंह, स्टेट साइबर सेल इंदौर। आप साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान इस कार्यक्रम में सीधे प्राप्त कर सकते हैं हमारे इन नंबर पर कॉल करके। हमारे नंबर हैं 2710223 और 2710224। एक बार फिर से नंबर सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। प्रश्न पूछने के लिए समय याद रखिएगा 11:32 से 12 बजे तक आज 17 जुलाई 2026 को। और ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर और हमारे विविध भारती चैनल FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लीलाबाई मालवीय और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये पारंपरिक लोकगीत गणेश वंदना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं एक और पारंपरिक लोक भजन लीलाबाई मालवीय के स्वर में।

0: लोक संगीत में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे लीलाबाई मालवीय के गाए मालवी लोकगीत। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं मनहर उदास की गाई गजलें। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अर्जन दसवानी की लिखी इस गजल के साथ, आवाज मनहर उदास की है।
1: सबसे पहला पहली गजल जो पेश करने जा रहा हूं, अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको,

इंसान की जो है कब्र, इस शेर में एक वर्ड आएगा लहद, लहद का मतलब है कब्र। आखिर में इंसान को नए कपड़े पहनाते हैं, नहलाते हैं, इसके बारे में देखिए शायर ने क्या लिखा।

0: थैंक यू।
1: सुगम संगीत में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे मनहर उदास की गाई गजलें। मीडियम वेव 462.94 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में आइए श्रोताओं अब सुनते हैं निखिल बड़ोदिया का सितार वादन। राग है अहीर भैरव।

शास्त्रीय संगीत में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे निखिल बड़ोदिया का सितार वादन, राग था अहीर भैरव। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी का प्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से करेंगे।
1: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे इंदौर जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है इंदौर जिले की चिट्ठी। आलेख मनीन्द्र दुबे, वाचन स्वर दीपा सिंह। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विगत दिनों इंदौर की सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान में महिला एवं बाल विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा ली। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंदौर का यह संस्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तीन प्रमुख मिशन, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति तथा मिशन वात्सल्य से जुड़े हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बैठक में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर जिला मुख्यालय पर 300 बिस्तरी आधुनिक जिला अस्पताल का लोकार्पण किया। नया भवन 83.13 करोड़ रुपए की लागत से 2 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में विकसित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 33 चिकित्सा महाविद्यालय हैं। आगामी 2.5 वर्षो में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 52 करने का लक्ष्य है। शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र इंदौर द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2027 की तैयारी का निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रशिक्षण केंद्र की सहायक आयुक्त और प्राचार्य आशा चौहान ने बताया कि पात्र अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का निवासी होना आवश्यक है। इंदौर जिला मुख्यालय पर राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया है। इस उद्देश्य से कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य सहकारिता, एमएसएमई, राजस्व, ऊर्जा सहित 16 विभागों को एक मंच पर लाकर किसानों के समग्र विकास का अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान के दौरान प्रदेश में 13 नवम्बर तक खेती किसानी पर आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर के देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से प्रदेश की पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर अबुधाबी का शुभारंभ किया। ये हवाई सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार को उपलब्ध रहेगी। इस सेवा के शुरू होने से इंदौर से अबुधाबी जाने में 8 घंटे के स्थान पर सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट लगेंगे। इंदौर में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. तरुण गुप्ता ने बताया कि पोलियो निरोधक दवा की खुराक देने के लिए जिले भर में 3600 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। वे अभियान के लिए टीकाकरण केंद्रों और चलित दलों में 8000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त किया गया था। प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में 50 बिस्तरीय सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेद अस्पताल प्रारंभ किया जाएगा। ये निर्णय प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में शासकीय सुशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय की साधारण सभा की बैठक में लिया गया। इंदौर जिले के महू विकासखंड में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 1230 जल संरचनाओं का उपचार किया गया। वहीं जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के लिए 3000 से अधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं निर्मित की गईं। ग्राम जामली के तालाब परिसर में अभियान के समापन समारोह के दौरान नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर उसकी देखभाल का संकल्प लिया। इंदौर जिला रोजगार कार्यालय में युवा संगम कार्यक्रम के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित 12 कंपनियों ने 300 युवाओं का चयन विभिन्न पदों के लिए किया गया। इस मेले में रोजगार के लिए 532 युवाओं ने पंजीयन कराया था। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक युवा हैं। युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला उद्यमी बनना चाहिए। मुख्यमंत्री को कॉन्क्लेव में आए युवाओं ने मध्य प्रदेश युवा संकल्प 2026 का मसौदा भी सौंपा। इंदौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे इंदौर जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
2: हेलो, एमएच हॉटलाइन।

0: हेलो हेलो MH हॉटलाइन।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा सजीव फोनिन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में, और मैं हूं राहुल तिवारी। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में अपनी पसंद के गीत आप सुन सकते हैं, और गीत सुनने के लिए, हमसे मुखातिब होने के लिए आप हमारे नंबर नोट कर सकते हैं और अभी नंबर डायल करके अपनी फरमाइश जो है वो बता सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 2710223 और 2710224। और आप अगर मोबाइल फ़ोन से कॉल कर रहे हैं या इंदौर के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो आप STD कोड 0731 ज़रूर लगाएं। तो श्रोताओं, आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पहले किन श्रोता का कॉल जो है वो हमारे इसमें आया है। हम पहले उनसे बात करते हैं और फिर बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगली फरमाइश की ओर। नमस्कार MH हॉटलाइन।
2: नमस्कार सर।
1: जी
2: सर, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: जी छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री बोल रहा हूँ।
1: बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद यूनुस खत्री जी, कैसे हैं आप सब लोग?
2: बस बढ़िया है सर, बस पानी का इंतजार हो रहा है सर, पानी नहीं आ रहा है बस।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मालवांचल या यूं कहें कि पूरे मध्य प्रदेश में।
2: जी जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, सही बात है। और सभी दौर दुआओं का दौर तो जारी ही है, सभी दूर
2: जारी है बेशक।
1: और निश्चित रूप से समय, देखिए मानसून है, समय जो होता है, मौसम जो होता है, वो सब अपनी गति से कार्य करते हैं। तो यहाँ हम सब इंतजार ही कर सकते हैं और
2: क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कौन सा गीत सुनवाए खत्री साहब आपको कार्यक्रम में?
2: सोच रहा हूँ कि आकाश में अगर हो गया है तो संत ज्ञानेश्वर का गीत सुन ले अपन।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: ज्योति से जो,
1: जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गीत है। लता मंगेशकर जी की आवाज है इसमें, भरत व्यास के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। आइए खत्री जी, आपकी पसंद पर सुनवाते हैं ये गीत।
2: जी

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: जी कौन श्रोता बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं महेश जिला का ग्राम आगर मालवा।
0: बहुत बहुत स्वागत है महेश जी, ग्राम आगर मालवा जिला से। और कैसे हैं वहाँ पर, किस तरह का मौसम है?
1: जी सर, मौसम तो कड़ी धूप आ गई
0: है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो खेतीहर किसान है उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये रहता ही है कि बारिश हो जाए बस, कैसे भी करके। क्यों
1: जी सर, बारिश का तो बिल्कुल अपन किसान लोग इंतजार कर रहे हैं।
0: बेशक बेशक, सही बात है। और जब तक पानी नहीं आता है, मुझे लगता है कि जो गीतों की बरसात है उससे थोड़ा दिल को ठंडक दी जानी चाहिए। तो कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको?
1: सर वो ऐसा है कि अपन को भी मजा नहीं आता है बारिश बिना, प्रगति को मजा नहीं आता।
0: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बिलाला जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जी सर, आज गीत सुनवा देना जीत पिक्चर का।
0: जीत फिल्म से कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: जिस फिल्म में वो दिन के दिन दिन दिल का क्या रे साहिब, कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज।
0: बहुत खूबसूरत गीत है, कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज है, समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत है। तो आइए,
1: नाम जान सकता हूँ मैं?
0: हैं?
1: आपका नाम जान सकता हूँ?
0: मैं राहुल तिवारी बात कर रहा हूँ, आपकी सेवा में हाजिर हूँ।
1: जी और जी सर, आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए, मैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके सभी चाहने वालों को पेशे खिदमत है जीत फिल्म से ये गीत आपकी पसंद पर।

0: इस छोटे संतराल के बाद हम लेंगे हमारे अगले श्रोता का कॉल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420

0: 0223 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
3: राहुल जी नमस्ते।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
3: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
2: जी जी सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है और आज कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है। बड़े दिनों बाद हमारी, खैर आपकी और हमारी कॉल कनेक्ट हुई है। कार्यक्रम में तो कॉल आता ही होगा आपका।
3: हाँ जी बिल्कुल, कॉल लगाते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन आपसे बड़े दिन बाद बात हो रही है।
2: जी जी जी, आपके गाँव में और वहाँ पर किस तरह का माहौल है इन दिनों? खेती किसानी का काम कैसा चल रहा है?
3: जी अभी खरपतवार निकालने का काम चल रहा है सोयाबीन में।
2: बिल्कुल
3: जी, और बरसात का तो काफी इंतजार है सभी किसानों को,
2: सभी दूर है इंतजार। और अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप मालवा में हैं, हमारे मालवा में एक छोटी सी लोक रीति है कि जब पानी नहीं गिरता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर खेतों में भोजन बनाते हैं और इंद्र देवता से ये प्रार्थना करते हैं कि बारिश जो है वो जल्दी हो। तो क्या इस तरह का आयोजन आपके गाँव साइड भी हुआ है अभी इन दिनों?
3: बताना चाहेंगे राहुल जी, हमारे गाँव में ऐसा मान्यता है
2: जी
3: कि हमारे गांव के अंदर मतलब हनुमान जी विराजमान है।
2: जी जी,
3: तो मतलब पूरा गांव में से मतलब खाली नहीं कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल
3: जी हाँ, तो अगर ऐसी जरूरत भी पड़ती है ना बरसात के लिए, तो हनुमान जी के वहाँ अर्जी लगाई जाती है तो जरूर बरसात होती है।
2: बिल्कुल, ये आपके यहाँ की एक अलग परंपरा है।
3: हाँ जी
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आज गीत कौन सा सुनवाए कार्यक्रम में आपको?
3: अलका याग्निक की आवाज में है, दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानू, कसूर फिल्म का।
2: जी बहुत खूबसूरत फरमाइश है, तो आइए बिना देर के आपकी पसंद पर सुनते हैं कसूर फिल्म से ये गीत।
3: जी थैंक यू सो मच।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
3: हाँ नमस्कार
2: जी, कौन बोल रहे हैं?
3: राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल।
2: बहुत बहुत स्वागत है राजू अग्रवाल जी कार्यक्रम में आपका। और सबसे पहले बस यही जानना चाहेंगे, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है
2: जी। जी आज कौन सा गीत सुनवाएं?
3: आज सर ये राजेश खन्ना जो महान अभिनेता, उनकी पुण्यतिथि 18 जुलाई की
2: जी,
3: तो उनकी एक फिल्म है अमर फिल्म का गीत है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना
2: जी। बिल्कुल किशोर कुमार
3: की आवाज में है और आर डी बर्मन और आनंद बख्शी साहब का बनाया हुआ गीत है।
2: बिल्कुल, तो
3: शानदार गीत है और श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि फालतू लंबी बातें नहीं करें मौसम वगैरह पे, जिससे के समय मतलब ज्यादा मिले फोन लगाने
2: बाकी के श्रोताओं को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
3: बातें नहीं करें।
2: ठीक है अग्रवाल जी, हम बिल्कुल आपकी सलाह हमारे श्रोताओं तक जा ही रही है घर, और आगे भी हमारे श्रोता जो है इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए आपकी पसंद पर सुनवाते हैं अमर प्रेम फिल्म से ये गीत।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्कार राहुल जी।
0: जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं अनिल भंडारी सुजामन नगर से बोल रहा हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका कार्यक्रम में।
1: ये आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है सभी कार्यक्रम आप।
0: जी जी जी बिल्कुल, और हमारी भी कोशिश रहती है कि हमारे श्रोताओं को जो है वो मनोरंजन के साथ साथ आनंद भी आता रहे। और
1: आप गीतों द्वारा हमारा मनोरंजन करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं।
0: जी जी जी जी बिल्कुल, तो आज बताइए आपकी सेवा में कौन सा गीत पेश करें?
1: आज एक जमाने की पुरानी गायिका अभिनेत्री है कानन देवी।
0: जी जी जी
1: उसका फिल्म थी फिल्म जवाब।
0: जी
1: उसके बेहतरीन गीत जो आज तक अमर रहा गीत, कभी भी सुनते हैं तो याद आती है दुनिया दुनिया तूफान मेरी।
0: क्या बात है,
1: बहुत प्यारा गीत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पुराना गीत भी है और बहुत ही ये कहें कि जो उस एरा की एपिक फिल्में हुआ करती थी उनमें से एक फिल्म है जवाब, कमल दास गुप्ता का संगीत था इसमें।
1: हाँ जी, ये फिल्म हमने 1965 में देखी थी।
0: जी जी जी बिल्कुल, तो आपकी तो बड़ी पुरानी याद है ही, और निश्चित रूप से ये गीत भी इतना ही लाजवाब है, बहुत अर्थ भरे हुए हैं गीत में। तो आइए बिना देर किए आपकी सेवा में पेश करते हैं ये गीत।
1: इसका संगीत भी बहुत जोरदार,
0: बहुत बढ़िया संगीत है। जी तो लीजिए, पेश है ये गीत।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में।
1: क्या हाल चाल है आपके?
0: जी हम सब खैरियत से हैं, बहुत बढ़िया हैं। आप लोग कैसे हैं वहाँ पर?
1: हम भी अच्छे हैं, और क्या है।
0: जी, तो आज कौन सा गीत सुनवाएं कार्यक्रम में?
1: मूवी का नाम है शेर शाह
0: जी,
1: और गाने के बोले रात का लंबिया लंबिया।
0: जी, बहुत खूबसूरत गीत है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि किन को समर्पित कर रहे हैं आज ये गीत, आप अपने मित्रों को, परिवारजन?
1: देखो, फर्स्ट तो आपके लिए।
0: जी,
1: और सेकंड मेरी सिस्टर
0: जी,
1: और एक और मतलब इंदौर की नहीं, मैं मतलब वो कहाँ के श्रोता मुझे नहीं पता, वो एक भैया है जगत भैया, उनके लिए, और एक और जिनको मैं बहुत खास समझती हूँ, उनके लिए रहेगा ये सॉन्ग।
0: चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं ये
1: गीत।
0: जी

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
3: जी नमस्ते सर।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं?
3: इंदौर से कोहिनूर कॉलोनी से जीनत परवीन बोल रही
2: हूं। जी जी जीनत जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और ये जानना चाहेंगे कि कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
3: मैं प्यासा साउंड का सुनना चाहूंगी।
2: जी।
3: इन हसीन वादियों से दो चार नजारे।
2: जी, लता जी और सुरेश जी की आवाज है, सुरेश वाडकर जी की, संतोष आनंद जी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। तो आइए, समय चूंकि बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा है तो कार्यक्रम में और भी श्रोताओं के फोन आएंगे हमारे पास, इसलिए हम आपको फटाफट सुनवाते हैं आपकी पसंद।
3: शुक्रिया।
2: जी जी जी, आपकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार एमएल हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार सर
0: जी। जी कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम दालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: जी प्रजापति जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको?
1: फिल्म नसीब का सुना दीजिए
0: जी।
1: वो जो लता के मंगेशकर की आवाज़ में वो गाना की बोल लाइन गा के बताओ क्या?
0: नहीं आप ऐसे ही बताइए मुझे बोलकर गाना, तो फिर हम पेश करेंगे, वो गाएंगे लता जी।
1: हाँ तो चलो कोई बात नहीं। हाँ
0: जी, कौन सा गीत है, गीत के बोल क्या है मतलब?
1: ला ला ला ला ला ला ला भीगे नसीब में तू
0: जी
1: नहीं, तेरे नसीब में हम के नहीं।
0: जी प्रजापति जी
1: जाने, जाने, इसने लिखा।

0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ, मैं खाते गांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी कार्यक्रम में, और कार्यक्रम के अंतिम श्रोता हैं आप। सबसे पहले बस ये जानेंगे कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: मधुमति का है सर, आजारे परदेसी, लता मंगेशकर की आवाज।
0: जी, बहुत खूबसूरत गीत है जलोदिया जी। कहाँ से बोल रहे हैं जलोदिया जी?
1: मैं खाते गांव से बोल रहा था सर।
0: जी, प्रॉपर खाते गांव या कोई आसपास गांव?
1: खाते गांव। हाँ, बस नहीं, खाते गांव ही का रहने वाला हूँ मैं, और
0: जी
1: खाते
0: जी
1: गांव से ही बोल रहा हूँ।
0: जी जी चलिए, तो आपकी पसंद पर सुनते हैं मधुमति फिल्म से गीत, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में।
1: ठीक है सर।
0: जी।

0: और इसी गीत के साथ अब आज का MH हॉटलाइन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए राहुल तिवारी को अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: हेलो हेलो MH हॉटलाइन।
1: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच का ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फ़ोन इन कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुने।
1: श्रोताओं नमस्ते, मैं हूं नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूं फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। मित्रों, यदि मनोरंजन की परिभाषा पूछी जाए तो उसमें आप सभी की अधिकतम पसंद यही होगी कि उन्हें फिल्मी संगीत सुनना पसंद आता है। तो फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम का सिलसिला हम शुरू करते हैं पहले फोन कॉल के साथ। कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल्स रिकॉर्ड कर सकें। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: किससे बात हो रही है हमारी?
2: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। जी,
1: कैसे हैं?
2: बस बहुत अच्छे हैं, और आपके मिजाज कैसे हैं?
1: जी, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपका पहला फोन कॉल है?
2: जी जी
1: जी। तो हारून साहब, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
2: फिल्म का नाम है, फिर एक गाना है, फिर तेरी कहानी याद आई तेरे दर पर सनम।
1: ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। नमस्कार
2: जी। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार
1: नमस्कार। मैं रानू बोल रही हूँ देवास
0: रानू, कैसी हैं?
1: से। ठीक हूँ,
0: कहाँ
1: और
0: से बोल
1: आपके
0: रहे
1: क्या हाल चाल?
0: हैं? हम भी बढ़िया हैं। कहाँ से बोल रहे हैं रानू गुप्ता जी?
1: देवास से।
0: जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, फोन करें गीत सुने में।
1: जी, मुझे एक गाना सुना है, मूवी का नाम है सत्या,
0: जी
1: और गाने के बोले सपने में मिलती है वो कुड़ी।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार।
1: नमस्ते जी।
0: परिचय दीजिए आपका।
1: मैडम, मैं सौम्या मिश्रा बात कर रही
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप? सौम्या मिश्रा जी,
1: हूँ, ललितपुर उत्तर प्रदेश से।
0: क्या करती हैं आप? अच्छा,
1: मैं स्टडी करती हूँ,
0: क्या कुछ पढ़ रहे हैं?
1: मेरा इस साल फर्स्ट ईयर है।
0: आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
1: मूवी का नाम है दिल ने मुश्किल सॉन्ग है, द ब्रेकअप सॉन्ग।
0: ठीक है, आपकी पसंद हम पूरी करेंगे। धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: कर दे दिल की फीलिंग्स।
1: हेलो,
2: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमल बुगला।
1: कैसे हैं? कैसा है राजस्थान में हमारा प्रसारण सुनने में?
2: मैडम बहुत बढ़िया है, आपका प्रसारण हम डीटीएस के माध्यम से सुनते रहते हैं मैडम।
1: अच्छा, बहुत खुशी हुई पूरन वर्मा जी आपसे बात करके। और ये बताइए कि आज कार्यक्रम में आपने फोन किया है, आपकी पसंद का गीत कौन सा है?
2: जी मैडम, गीत भी सुनेंगे और आप बताइए वहाँ का मौसम कैसा है और आप कैसे हो?
1: हम लोग बढ़िया हैं और यहाँ पर एक लंबा समय हो रहा है पानी नहीं बरसा है, बारिश के हिसाब से लगभग 5-6 दिन हो रहे हैं बारिश नहीं हुई है।
2: आपके तो 5-6 दिन हो गए मैडम, हमारे यहाँ तो कम से कम 15 दिन हो गए बारिश नहीं हुई, जब से खेतों में बीज बोए बुआई भी पड़ गया, बाजरा पड़ गया, पर अभी तो नहीं आ रहा मैडम बारिश।
1: बिल्कुल सही बात है, किसानों के लिए तो बहुत दिक्कत की बात है और हमसे ज़्यादा इंतज़ार उनको है, और भगवान करे जल्दी मानसून आए और हमारी फसल अच्छी होए, है ना?
2: जी मैडम, जी मैडम
1: जी। तो आज कौन सा गीत सुनना पसंद किया है वर्मा जी?
2: जी मैडम, तो आज फिल्म का नाम रहेगा पापा कहते हैं और गाने के बोले प्यार में क्यों होता है तू जाने या मैं जानूं।
1: जी जी जी, बहुत अच्छा गीत है। चलिए, आपकी पसंद हम पूरी कर रहे हैं आपके रेडियो सेट पर। बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
2: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।

0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति इस राधा सिटी मथुरा से आरणी देवी से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: बहुत स्वागत है शारदा प्रसाद जी आपका।
0: जी हृदय से धन्यवाद। दीदी आप लोग कैसे हैं? मौसम कैसा है? कुछ पानी वर्षा या बरसात हुई कि नहीं?
1: नहीं अभी तो नहीं हुई है, पिछले 5-6 दिनों से हमारा इंतजार है और उम्मीद करते हैं कि मानसून जल्दी आए, अच्छी झमाझम बारिश हो, हमारे किसान भाई भी खुश हो और हम सभी का जो मन लालायित है वर्षा को देखने के लिए वो पूरा हो।
0: जी जी बिल्कुल, यही हाल मथुरा वृंदावन में भी है।
1: हाँ,
0: कि एक सप्ताह से बारिश नहीं हुई है, पिछले 7 और 8 जुलाई को बारिश हुई थी, उसके पश्चात 15 जुलाई को थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन अभी चमचमाती हुई धूप है, गर्म गर्म हवाएं हैं, उमस भरी गर्मी बरकरार है।
1: हाँ और मानसून का इंतजार है।
0: जी जी,
1: तो ऐसे में कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है चांदनी से काली घटा टकराई, तो आनंद आएगा ही।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि ये जो आपकी गीत की पसंद है वो पर्वत से जल्दी काली घटा टकराए और वर्षा होए, है ना?
0: जी यही उम्मीद करते हैं कि दीदी बस आषाढ़ भी खत्म होने वाला है और झमाझम बारिश हो जाए, उसके बाद रिमझिम रिमझिम के जो फुहार सावन की पड़ेगी तो वो बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सावन भी आने को है, कुछ दिनों के इंतजार के बाद आज तो रथ यात्रा शुरू हुई है।
0: जी
1: है
0: जी बिल्कुल,
1: तो शुभकर हो
0: से रथ यात्रा प्रारंभ हो सके, आपको आकाशवाणी परिवार को समस्त श्रोताओं को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।
1: जी जी आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया, आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर।
0: जी धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: मैं इंदौर से जीनत परवीन बोल रही हूँ
0: कैसी हैं
1: जी। अच्छी हूँ मैम
0: जिनत जी। आज फोन किया है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
1: जी। फिल्म का नाम है ईमानदार और गाना है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही प्यार छुपा रखा है।

0: मैं दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से।
1: कैसे हैं?
0: मस्त हैं दीदी जी। और कहते हैं जब रियल में फोन नहीं लगता
1: जी,
0: जब रियल में फोन नहीं लगता सपने में लगाता हूँ और आपसे बतियाता हूँ, अपने मन के अपने मन पसंद गीत सुनता हूँ
1: जी।
0: लेकिन जब सपना ही टूट जाता है तो खाली हाथ रह जाता हूँ और मन महसूस के रह जाता हूँ। नमस्कार दीदी जी।
1: नमस्कार। यहाँ पर हम थोड़ा सा रोकेंगे दिनकर जी। ऐसा है, किसी भी जगह का ट्यून कर लीजिए पूरे भारतवर्ष में, आकाशवाणी में कहीं ना कहीं संगीत चल रहा होता है और आपके पसंद का कहीं ना कहीं तो गीत मिलेगा।
0: जी बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ये मैंने जो है एक शेरो शायरी सुनाया और कभी कभी फोन भी नहीं लगता उसका जो है उसके बारे में आपसे बात किया दीदी जी।
1: चलिए, आपने ऐसा कहा तो हम मान लेते हैं। हमें लगा आपने शिकायत की है, तो हमने सोचा शिकायत हमें अच्छी लगती है, उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है कि हम क्या कुछ नया कर लें। पर हमने सोचा यदि आपको गीत सुनने को नहीं मिलता है तो हमारा इतना बड़ा आकाशवाणी परिवार है पूरे भारत में, किसी भी जगह का आप ट्यून करके सुन सकते हैं। और हमें तो वैसे खुशी होती है कि आप हमारे आकाशवाणी मध्य प्रदेश को पसंद करते हैं।
0: जी दीदी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ जो है लखनऊ और छतरपुर दो स्टेशन सुनता हूँ और डाइवर्ट होके आपका जो है प्रोग्राम जब छतरपुर से आता है तो आपसे भी जुड़ जाता हूँ।
1: जी चलिए, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: मुझे फिल्म जो है गीत जीत
1: जीत फिल्म का गीत।
0: जी जी जी, अभी साथ लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो।

0: हेलो, नमस्कार मैम
1: जी। नमस्ते, आपका परिचय दे दीजिए।
0: मैं बोल रहा हूँ वृंदावन से
1: जी।
0: सत्यम तिवारी
1: जी, बहुत स्वागत है आपका
0: जी।
1: जी, आज कार्यक्रम में फोन किया है, अपनी पसंद बता दीजिए।
0: आप सुनाना निगाह है फिल्म का, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया।

0: हेलो।
1: हाँ जी, मैं पिपलिया मंडी जिला मंदसौर से दिव्यांशु प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: जी प्रजापति जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रजापति जी, कौन सा गीत सुनना पसंद किया है आज आपने?
1: फिल्म सुहागा तेरी रब ने बना दी जोड़ी।
0: जी बहुत धन्यवाद, आपका गीत आपके रेडियो सेट पर हम भेज रहे हैं।

याद उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, कल रस्ते में उसने हमको पहचाना तो होगा। कुछ बातों के मतलब है और कुछ मतलब की बातें, जो ये फ़र्क समझ लेगा वो दीवाना तो होगा। तो आज फ़ोन इन कार्यक्रम फ़ोन करें गीत सुने में बस इतने ही गीत हमने शामिल किए। अब अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। भारत में ही डिजाइन इंजीनियरिंग और एकीकृत की गई ये रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का आज वर्चुअली माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, अशोकनगर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सांची, विदिशा, छतरपुर, भिंड, शिवपुरी सहित 13 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज टीकमगढ़ में आयोजित अमृत स्टेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इस अवसर पर 189 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कटनी जिले में देश की सबसे लंबी और तकनीक रूप से सबसे जटिल जल सुरंग का निरीक्षण करेंगे। लगभग 12 किलोमीटर लंबी इस सुरंग नर्मदा के जल को गुरुत्वाकर्षण के जरिए सोन नदी के गछार तक पहुंचाने वाली देश की अनूठी इंजीनियरिंग उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज भोपाल स्थित निर्वाचन सदन में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और अधिकारी ऑनलाइन सहभागिता करेंगे। भोपाल जिला बार एसोसिएशन में कल हुए मतदान के बाद आज जिला न्यायालय परिसर में वोटों की गिनती का काम जारी है। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। सबसे पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म जीने की राह से। ये गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर साथियों के हैं। इस गीत के लिए

हमें नेपाल पैलेस सागर से आई है। श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगली श्रोता सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं। कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब, मुश्तबा, रऊफ और शाहिद। अगली श्रोता गांधीबाग अकोला से हैं, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

आया सावन झूम के। इस फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है गोला बाजार बक्सर से। श्रोता हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। अगले श्रोता गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जतेक बीरक और मीका बीरक। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म यस बॉस से। गीतकार है जावेद अख्तर, संगीतकार जतिन ललित। इस गीत के लिए फरमाइश में आई है सपना संगीता रोड इंदौर से। श्रोता हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। अगले श्रोता बीड शहर से हैं प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल।

फिल्म बॉबी से अगला गीत सुनेंगे मन्ना डे शैलेंद्र सिंह और साथियों के स्वर में। गीतकार हैं विट्ठल भाई पटेल, संगीतबद्ध किया गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश हमें आई है गौतम नगर जिला नांदेड़ से। श्रोता हैं प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले। अगले श्रोता चहुलदा बागपत से हैं, संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म साजन से। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। फरमाइश हमें आई है महननगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। श्रोता हैं अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता, सिद्धांत गवाणकर और एकांश गवाणकर। अगले श्रोता नागपुर से हैं शैलेश गवाणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गवाणकर। अगले श्रोता डोगर गांव छत्तीसगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
6: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी

0: मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या?
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: बड़े अच्छे लगते हैं
7: क्या
6: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
7: और
2: आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
8: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
9: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
8: तो सुनते रहिए मालवा की शान
10: आकाशवाणी इंदौर।
9: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
11: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
12: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
11: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
12: वही दोपहर 1 बजे।
11: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।

0: धारावाहिक कामिनी काय कंतारे का दूसरा भाग
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। अभी तक आपने सुना कि अवंती नरेश भर्तृहरि अपने प्रिय अश्व नीलमणि पर सवार होकर चुपचाप महल से निकल जाते हैं। भयानक जंगल में हिंसक भेड़ियों से बचते हुए वो एक ग्राम पैठार में आ जाते हैं। यहाँ के भोले भाले कोल के रात और शबर के निश्चल व्यवहार से अत्यंत प्रभावित होते हैं। इधर अवंती के राजमहालय की स्थिति गंभीर है। आइए अवंती चलते हैं।

0: उज्जैनी चिंतित है अपने महाराज की अनुपस्थिति से। पूरे 7 दिन बीत गए, राजकाज जैसे ठहर गया है। यूं दैनंदिनी व्यवस्था तो पूर्ववत है, किंतु 3 दिन से राजसभा एकत्र नहीं हुई। सभासद सामंत महाराज की अनुपस्थिति का कारण जानने को व्यग्र हैं। उधर महाराज भी चिंतित हैं।
1: न्याय पाने की आशा में विभिन्न ग्रामपुरों, हाटनगरों से आए ग्रामीणों, कृषकों, व्यवहारी वणिकों को अब या तो लौटना पड़ रहा होगा, या आजकल की प्रतीक्षा में ठहरे हुए लोगों से अतिथिगृहों, पंथागारों में भीड़ बढ़ती जा रही होगी। नागर बोध और व्यवहार कौशल से अनभिज्ञ ये भीड़ और इसके भदेश असंस्कृत अपरिष्कृत रहन सहन खीज उत्पन्न करने लगा होगा।
0: नगर व्यवस्था के इन व्यवधानों, असंतुष्टि और आक्रोश की सुगबुगाहट परत दर परत अनुगुंजित होती हुई महामात्य तक पहुंची। महामात्य जानते हैं कि यह नागरिकों का रोष उनकी स्वयं की छवि को भी प्रभावित कर सकता है, उसे मलिन कर सकता है। उन्हें यह भी चिंता है कि अंततः महाराज हैं कहीं, बिना बताए कर्तव्यों से विरत होकर उनके पलायन का कारण क्या है। इन व्याकुल करने वाले अनुतरित प्रश्नों का कोई समाधान राज महर्षि पिंगला के पास हो। रथवाय महामात्य से पूछता है कि सेनापति के यहां चलें क्या। इस पर महामात्य कहते हैं,
2: नहीं, कदाचित वो प्रातः क्रिया में व्यस्त होंगे, उन्हें पूर्व सूचना भी नहीं भेजी है। राजमहाले में चलना उचित होगा। आवश्यकता हुई तो उन्हें भी वहीं बुला लेंगे।
0: रथवाह महामात्य का आदेश पाकर राजमहाले की ओर रथ हांक देता है। रात्रि प्रमोद का अभ्यासी राजवर्ग अलस भोर की निद्रा का आदि रहता है, अतः राजपथ भी उनिद्र सुनसान था। इसके आकाश पर मंदिरों से उठती प्रार्थना, स्तुति, शंख, घंटा आदि के स्वर तथा पक्षियों का कलरव छाया हुआ था। जैसे ही रथ राजमहालय के पास पहुंचता है, प्रहरी जोर से बोला,
3: सावधान, संभवतः महामात्य इसी ओर आ रहे हैं। सजग और तत्पर रहे, महामात्य सेवा में किसी भी भूल को सहन नहीं करते।
0: महामात्य का रथ रुकता है। सभी प्रहरी शस्त्रों के साथ उन्हें प्रणाम करते हैं। महामात्य महल के मंत्रण कक्ष की ओर जाते हैं। अंतरंग की दासियां भी भागती हुई अगवानी में पहुंचती हैं। वैसिका नाम की विश्वस्त अनुचरी महामात्य से निवेदन करती है,
4: महामन महामात्य, आसन ग्रहण करने की कृपा करें।
2: वैसिका,
4: आज्ञा आर्य।
2: मेरी ओर देखो,
4: धृष्टता होगी देव,
2: इतनी धृष्टता आवश्यक है।
0: वैसिका ने सिर ऊंचा करते हुए पलकें उठाई तो उसकी आंखें महामात्य की आंखों से मिल जाती हैं। उसे लगा कि वह आंखों के रंध्र से मन तक झांक रहे हैं। महामात्य से भेंट के समय है, जिसके पार झांकने में असफल महामात्य अपनी असफलता को मंद हास्य की कूट स्मित में बदल कर कहते हैं,
2: महादेवी से निवेदन करो कि हम उनके दर्शन करना चाहते हैं।
4: महादेवी स्वयं आर्य की प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं उन्हें आपके आगमन की सूचना देती हूं।
0: यह कहकर वैसिका जाती है।
2: इस वैसिका और मेरी वय में दुगने से भी अधिक अंतर होते हुए भी मुझे उसके प्रति आकर्षण का अनुभव क्यों होता है? नहीं पूर्णरथ, तुम वानप्रस्थ के आंगन में खड़े विदुर हो, परम प्रतिष्ठित सम्मानित राजपुरुष हो। आकर्षण की दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। लगता है कि वैसिका को तुम्हारे आकर्षण का आभास हो गया है। हाँ, उसकी सहज चपलता तो यही दर्शाती है। नहीं, ये उचित नहीं है पूर्णरथ, नहीं।
0: उसी समय कक्ष में एक पाला हुआ मयूर आ जाता है। वैसिका उसे पकड़ने का यत्न करती है।
5: ठहर, ठहर। ये मयूर कैसे यहाँ वहाँ उड़ रहा है? ठहर मैं कहती हूँ।
4: पकड़ में नहीं आ रहा है। क्षमा करे आर्य, महादेवी के लाड़ प्यार ने इसे इतना उद्धत बना दिया है कि ये निरंकुश और वर्जना रहित हो गया है। किसी की भी नहीं मानता। ओहो, रुक रे मयूर, चाहे जहां चला जाता है ये उद्दंड मदन मयूर, बेला कुबेला कुछ भी नहीं देखता।
6: प्रतिहारी,
0: महामात्य की आवेशित वाणी से सभी परिचारिकाएं भयातुर हो जाती हैं।
6: इस मयूर को ले जाकर उपवन के पिंजरे में बंद कर दो।
2: महादेवी से निवेदन करना कि हम उनके दर्शन पाने के लिए बाद में उपस्थित होंगे।
3: जो आज्ञा आर्य, मैं इस मयूर को उपवन के पिंजरे में बंद करने ले जाता हूं।
0: महारानी पिंगला अपने कक्ष से वासंती कक्ष की ओर चल पड़ी। उन्हें वातावरण कुछ असहज और भारी प्रतीत हुआ। वैसिका महामात्य के आने की सूचना देकर जाने कहां निकल गई, इसलिए चंपा ही मार्ग दिखा रही थी। चंपा महारानी पिंगला के नैहर से साथ आई थी।
7: चंपा, क्या हो रहा है प्रासाद में? अंतःपुर की रक्षिकाएं अपने स्थान पर क्यों नहीं है? क्या तुमने महामात्य की ऊंची आवाज सुनी?
8: महादेवी, महामात्य की आवाज का आभास तो मुझे भी हुआ है। स्यात रक्षिकाओं पर कुपित हुए होंगे, वैसिका भी वहीं होगी। लीजिए, कक्ष में सभी मूर्तिवत स्तब्ध हैं। परिचारिकाएं, रक्षिकाएं और वैसिका भी। संभवतः महामात्य की कोई अवज्ञा हुई होगी।
0: कक्ष के मध्य वैसिका खड़ी थी, अप्सरा की मूर्ति सी स्खलित वसना, अवनत मुख वक्ष पर पहने अंग वस्त्र से झांकते ओरोज तथा उच्छन्न विशुद्ध वय वसंत का ज्वार ढांपे भुजबल्लरी। उसे सलज्ज मौन देखकर महारानी पिंगला ने कहा,
7: सभी लोग कक्ष से बाहर जाएं। चंपा, तुम भी। केवल वैसिका ही यहां रहेगी। वैसिका, तुम यहां बैठो। क्या हुआ था? तुम अकेली थी?
4: नहीं, नहीं महादेवी।
7: तो दूसरा कौन था?
4: आपका मयूर।
7: अरे, मयूर ने ये दशा कर दी तेरी? सचमुच, यदि मयूर के स्थान पर कोई मनुष्य होता तो आगे से सावधान रहना। राजमहालय में पशु भी पाले जाते हैं।
4: दासी हूं ना महारानी, कह लीजिए जो मन में आए।
7: कुपित न हो वैसिका, मैं तुझ में अपना ही अंतर आत्म अनुभव करती हूँ। उसे छूना, सहलाना, जीना चाहती हूँ।
0: यह कहते कहते महादेवी का संताप स्वरों में उभर आया। वो रुआंसी हो गई थी।
7: वैसिका, बहुत कुछ है जो मन में भरा हुआ है, पर निकल ही नहीं पाता।
4: देवी, स्वस्थ हो देवी। बीसीओ कान इसोर लगे हुए। मेरा क्या है, मैं तो दासी हूं। परंतु आपको इस अवस्था में रोते देखकर न जाने क्या क्या अनुमान लगाए जाएंगे। महाराज की चिंता में यूं भी उद्विग्न हैं आप। स्वयं को संभालना आवश्यक है महारानी।
7: मैं अपराधी नहीं हूं वैसिका।
4: ऐसा क्यों सोचती हैं महादेवी?
7: नरेश को मुझ पर संदेह है। संदेह का

0: कारण भी है। महाराज की कोई सूचना मिली है?
1: अभी तक तो उनके जाने की दिशा का भी पता नहीं है। महामात्य के पास कोई सूचना हो कदाचित, किंतु वो तो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। राजपुरोहित के पास जाना था, वैसे का शिविकाओं का क्या हुआ?
0: आदेश पहुंचा दिया गया है, शीघ्र ही द्वार पर उपलब्ध होंगी।
1: तुम्हें भी मेरे साथ चलना है वैसिका?
0: मैं नहीं, मुझे क्षमा कर सकेंगी देवी?
1: नहीं वैसिका, तुम्हें चलना ही होगा। तुम अभी भी निर्भय संकोच रहित नहीं हो। मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था कि तुम मेरी अभियात्म हो। तुम दुर्बल होती हो तो मैं ढह जाऊंगी। हम दोनों स्त्रियां हैं, पुरुष की चौसर पर पड़ी गोटियां। ये मात्र संयोग है, या उसे भाग्य कह लो, कि मैं स्वामिनी के घर में हूं और तुम सेविका के खाने में, और पासे पुरुष के हाथ में है। वैसिका, महामात्य तक ये निवेदन पहुंचा दिया जाए कि हम महाकाल ज्योतिष पीठ में उनकी प्रतीक्षा करेंगी और तुम हमारे साथ चलोगी।
0: जैसी आज्ञा महादेवी, किंतु आपके साथ चंपा का ही जाना उचित होता।
1: क्यों, महामात्य का सामना नहीं करना चाहती?
0: नहीं।
1: या उनके सामने पड़ने से बचना चाहती हो?
0: मैं महामात्य से नहीं, अभी तो चंपा की करक से बचना चाहती हूँ। मेरे प्रति आपकी सहृदयता से चंपा को क्षोभ होता होगा। उसे आपके नैहर से भेजा गया है महारानी, आपकी छाया के रूप में, और मैं तो कृतदासी हूं। ये तो आपकी अनुकंपा है कि आपने मेरा सम्मान बचाए रखा। पर न जाने क्यों, सम्मान बनाए रखने के उपक्रम के तनाव से इसका टूट जाना ही अधिक निरापद है। कम से कम एक भय से तो मुक्ति मिल जाती। अकिंचन सम्मान में आदर कम, ईर्ष्या और उपहास अधिक मिलता है महारानी। उपहास?
1: चुप हो जाओ वैसिके, महाकाल तुम्हें शतायु करें। वैसिके, रोने के लिए सारा जीवन पड़ा है। स्वामिनी हो या सेविका, सभी की अपनी जन्म कुंडलियां हैं, ग्रह हैं, उनकी गतियां और प्रभाव हैं, सभी के अपने फलादेश हैं। अस्तु, आंसू पोंछ कर जो सम्मुख है उसका सामना करो साहस के साथ।
2: यह क्या हो रहा है इस महालय में? अनुपस्थित नरेश, उद्विग्न महारानी, आवेश में महामात्य और अब क्रीता की प्रतिष्ठा। हे महाकाल, शुभ शुभ ही घटित हो सब, शुभ शुभ।
1: अरे चंपा, आ गई?
3: प्रस्तुत हूँ महादेवी। शिविकाएं आ गई हैं और बाहर प्रतीक्षा कर रही हैं। और हाँ वैसिका, सज्जा कक्ष में महादेवी को साथ ले जाकर उनके साथ साथ स्वयं को भी संवार लो। महालय के रहवासी अन्य के सामने विवर्ण अवस्था में नहीं जाते।
1: चलो वैसिके।
2: मार्ग के जनरब कोलाहल के बीच से अंगरक्षक का सचेत स्वर गूंजता है।
4: कृपया मार्ग छोड़े, राज राजेश्वरी महादेवी पिंगला आ रही है। कृपया मार्ग छोड़े, राज राजेश्वरी महादेवी पिंगला आ रही है। कृपया मार्ग छोड़े, राज राजेश्वरी महादेवी पिंगला आ रही है।
2: अंततः दैवज्ञ के निवास पर पहुंचकर रथ रुकता है। महादेवी के स्वागत के पश्चात राज पुरोहित का पुत्र उनसे कहता है कि राज पुरोहित अर्थात उसके पिताश्री उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
5: आसन ग्रहण करें महादेवी। महाकाल के इस क्षुद्र सेवक को आपके एकाएक पधारने का प्रयोजन अभी बताएंगी अथवा महामात्य के आने पर?
1: प्रथम तो राज परिवार की ओर से प्रणाम स्वीकारें आचार्य श्रेष्ठ।

0: अखंड सौभाग्यवती भव। पुत्री, तुम्हारा परिचय? महादेवी की सेविका हो से आप?
1: प्रणाम स्वीकार करे देव। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे महारानी की सेवा का अवसर प्राप्त है।
0: यहाँ आकर बैठो, वहां खड़ी रहोगी तो ध्यान बटने की संभावना है।
2: ज्योतिष पीठ को कोई अभाव तो नहीं है आचार्यवर? हमें सहयोग करने में प्रसन्नता होगी।
0: भाव अभाव का कारण तो काल है। हम सभी महाकाल के चरणों में पड़े हैं, किंतु काल तो निरवधि निर्बाध है ना देवी? और ये ज्योतिष विद्या क्या है? काल की गति का प्रभाव आंकना भर। सभी काल के वश में है। काल ही सब प्राणियों का अनुशासन करता है। मनुष्य ही इकलौता प्राणी है जो काल के अनुशासन का अतिक्रमण करना चाहता है। किसी क्षण को पकड़कर कालजयी होने का दंभ पाल लेता है। वो ये भूल जाता है कि काल तो अनंत है।
2: आपके वचन सत्य हैं आचार्य श्रेष्ठ।
0: क्षमा करे देवी, अपने रौ में बह गया, भूल गया कि आप उपस्थित हैं। मैं अपने छात्रों को सामने जान बैठा। विडंबना ये है कि संन्यास की वय में भी पहुंचकर काल से आंख मिलाने का दुस्साहस कर रहा हूं। बूंद की समुद्र से होड़।
3: महामात्य परार रहे हैं, सजग और तत्पर रहे। महामात्य परार रहे हैं, सजग और तत्पर रहे।
0: पधारिये महामात्य, आसन ग्रहण करें।
2: देव, एक गोपनीय प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ।
0: प्रश्न केवल महारानी का है अथवा दोनों का या फिर तीनों का?
4: समूचे राज्य की ओर से है देव, महारानी के साथ उसे मेरा प्रश्न भी मान ले।
0: इस युवती के माथे पर भी मुझे प्रश्नातुरता का भास हो रहा है। यदि यह प्रश्नकर्ता नहीं है तो इसे बाहर भेज दीजिए।
4: वैसे का तुम प्रज्ञ हो।
2: महामात्य महामन, मैं वैसिका को इसीलिए साथ लाई हूं कि उसकी प्रज्ञा प्रखर हो। महामात्य, यदि उसे समागत माने तो मुझे प्रसन्नता होगी।
4: जैसी महादेवी की इच्छा।
0: अब प्रश्न करें महामात्य।
4: महादेवी, आप ही कहें।
2: जी देव, 7 दिन से महाराज की कोई सूचना नहीं है। कहाँ है, किस दिशा में गए हैं, कोई नहीं जानता। इसे गोपनीय रखा गया है ताकि राज्य में संशय या प्रवाद न फैले। अनेक निर्णय स्थगित पड़े हैं। राज्य भर से आए नागरिक राजधानी में रुके पड़े हैं। पथ, पंथवास, पन्य, जनाकीर्ण होने से असुविधा हो रही है। महाराज के प्रति चिंता बढ़ती जा रही है देव। हमारी प्रमुख चिंता स्वयं महाराज को लेकर है।
0: और कोई प्रश्न?
4: अरे महाराज यहाँ कैसे शीघ्र लाए जा सकते हैं?
0: ग्रहचाल का संकेत है कि प्रवासी की वापसी स्वतः ही होगी।
2: तब राज्य कैसे चल पाएगा?
0: अवंती राज्य तो महाकाल की कृपा दृष्टि में है देवी।
5: महादेवी किसकी कृपा दृष्टि में रहेंगी?
4: हम राज्य की चिंता में यहाँ आए हैं वैसिका।
2: क्षमा करे देव,
0: मैं नेत्र बंद कर देख रहा हूँ। महाराज को दक्षिण दिशा में बिना वाहन के शस्त्र विहीन।
4: ओह, तो हम महाराज की दक्षिण दिशा में खोज करें?
0: यों तो प्रवासी को स्वयं ही लौटना है, फिर भी प्रयास कर लेना चाहिए।
2: देव, आपने बताया कि महाराज वाहनहीन है, तो उनके प्रिय अश्व नीलमणि का क्या हुआ? वो खड्ग सहित गए थे और आपका कथन है कि वो शस्त्र विहीन है। आचार्य, मैं आशंकित हूं, भयभीत हूं।
0: नरेश की इस प्रकार अचानक चले जाने का कोई कारण तो होना चाहिए। देवी, आपको तो कुछ ज्ञात होगा।
2: देव, स्पष्ट तो कोई कारण नहीं।

0: है।
1: मेरा आशय ग्रह कलेश से है। रोग का कारण ज्ञात हो तो निदान सहज हो जाता है, नहीं महामात्य?
2: आचार्य, आप विचारपूर्वक ही कह रहे होंगे। महादेवी मुझे जो भी आदेश करेंगी, मुझसे जो भी अपेक्षा करें, मैं प्रस्तुत हूं।
1: मेरी ओर देखो पुत्री, मैं तुम पर भी कुछ भार छोड़ना चाहता हूं।
3: क्षमा करें आर्य, वर्षों में पहली बार मुझे किसी ने पुत्री कहकर पुकारा है। इस गरिमा को संभालना मेरे लिए कठोर है, किंतु वास्तविकता यह है कि मैं एक अकिंचन दासी हूं और मुझे एक ही भय है, स्वामिनी की अप्रसन्नता का। मेरे पास अपना कुछ नहीं है देव, इस कारण कुछ खोने का भय भी नहीं। स्वामिनी के साथ गौरव जुड़ा है, मर्यादा जुड़ी है, दायित्व जुड़ा है, और मेरे साथ है उनके प्रति निष्ठा और दायित्व, जिसका निर्वाह मुझे करना है।
1: यही स्मरण कराना चाहता हूं, महादेवी की संभाल तुम्हें करनी होगी। महादेवी जो किसी से न कहना चाहे वो उनसे पूछकर महामात्य तक पहुंचाना होगा। दायित्व तो कोमल है और गंभीर भी। समझ लो कि आज से तुम भी राज दायित्व के बंधन में आ पहुंची हो। मैं राजवंश का शुभाकांक्षी हूं। शुभ अशुभ जो भी हो, अपने इस वृद्ध पुरोहित से कुछ मत छिपाना। अरे मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं जाना।
3: सेविका को वयसिका कहकर पुकारते हैं देव।
1: हाँ वयसिका, वार्तालाप में ज्ञात तो हुआ था, पर वृद्धावस्था में स्मृति भंग हो जाता है। वयसिका, सेविका वयसिका, राजपुरोहित की पुत्री और राजमहल की सेविका। कितना विचित्र है ये सोचना। पर पुत्री इतना सुन लो कि इस अशक्त पिता के इस ग्रह में तुम किसी भी समय किसी भी दशा में आ सकते हो, प्रतीक्षारत रहेगा ये पिता।
2: अब आज्ञा दें और इसे स्वीकार करें।
1: स्वर्ण मुद्राएं, काल की गति को बूझने का पारिश्रमिक, तुम लोगों का यही चलन है। प्रशासनिक दायित्व ऐसा करना कि इन्हें नागदत्त के आश्रम तक पहुंचा देना। नागदत्त के संबंध में जानना तुम्हारा दायित्व भर नहीं है, धर्म भी है। महाकाल आप सभी का कल्याण करें। जय महाकाल।
4: जय महाकाल।

आप सुन रहे थे कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का दूसरा भाग। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार मुकेश विश्वकर्मा, रानी पिंगला कंचन राजानी, महामात्य अरशद इकबाल, देवश विजय दिंडोरकर, वैसिका स्वस्तिका चक्रवर्ती, चंपा दीप्ति अग्निहोत्री। प्रस्तुति सहायक अंकित सक्सेना, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन, संयोजक राकेश ढौंडियाल और परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया।

राजा भर्तृहरि महल छोड़कर चले जाते हैं। महालय में रानी पिंगला उनकी कुशलता के लिए चिंतित हैं। राजा के प्रिय अश्व नीलमणि को अपरिचित व्यक्ति ले जाता है, जिसने उन्हें हिंसक भेड़ियों से बचने के लिए कांटों वाले बबूल पर चढ़ने की सलाह दी थी। राजा के प्रिय

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामनी काय कांतारे की दूसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ़, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। भारत में ही डिजाइन, इंजीनियरिंग और एकीकृत की गई यह रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का आज वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, अशोकनगर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सांची, विदिशा, छतरपुर, भिंड और शिवपुरी सहित 13 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज टीकमगढ़ में आयोजित अमृत स्टेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इस दौरान 189 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज कटनी जिले की देश की सबसे लंबी और तकनीकी रूप से सबसे जटिल जल सुरंग का निरीक्षण किया। लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह सुरंग नर्मदा के जल को गुरुत्वाकर्षण के जरिए सोन नदी के कछार तक पहुंचाने वाली देश की अनूठी इंजीनियरिंग उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज भोपाल स्थित निर्वाचन सदन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और अधिकारी ऑनलाइन सहभागिता करेंगे। भोपाल जिला बार एसोसिएशन के कल हुए मतदान के बाद आज शाम जिला न्यायालय परिसर में वोटों की गिनती का काम जारी है। शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है और फीफा फुटबॉल विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को न्यूयॉर्क में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी प्यारी सखियों को आपके अपने रेडियो सखी आराधना जैन का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ। कहते हैं, हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, पर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जी हाँ सखियों, जीतने की उम्मीद हमेशा जिंदा रखो। सखियों, ऐसी ही उम्मीद, ऐसी ही जीत हमें हर जगह चाहिए। बात यदि इस समय हम पर्यावरण प्रदूषण की करें तो धरती पर बढ़ते प्रदूषण में एक गंभीर प्रदूषण प्लास्टिक की थैलियों का है, जो कि हम सभी देख रहे हैं। और सखियों, जिसके जिम्मेदार काफी हद तक कहीं ना कहीं हम और आप ही हैं, है ना सखियों। बाजार जाना और जरा जरा सी चीजें खरीदने पर तुरंत प्लास्टिक की थैलियों में सामान लाना हम सभी की आजकल एक आम बात हो गई है। फिर चाहे सामान गीला हो या सूखा, खाने का हो या फिर घरेलू उपयोग का, लेकिन हाँ, इसमें एक बात तो तय है सखियों कि हर थैली का प्रयोग एक बार या अधिक से अधिक दो बार से ज्यादा नहीं करते हम सभी। इसी कारण सखियों, इतनी अधिक मात्रा में उपयोग की जाने वाली थैलियों से आजकल न सिर्फ मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है, बल्कि पॉलीथिन को निगलने के कारण जानवर ही नहीं, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की भी मौत हो रही है। सखियों, कई खतरनाक अमानक रसायनों से निर्मित पॉलीथीन एक बार कूड़ा बनने के बाद हवा में उड़कर नाले नालियों, पार्क, तालाब और सड़कों पर फैल जाती है, जो ना सिर्फ नाले नालियों को चौक कर गंदगी फैलाती है बल्कि जमीन को भी बंजर करती है। इसलिए सखियों, अब जरूरी हो गया है कि धरती पर बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए हम सभी को आगे आना होगा, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना होगा और प्लास्टिक थैलियों के विकल्प के रूप में कपड़े का थैला, कागज के पैकेट या फिर लिफाफे और पुराने अखबारों का प्रयोग करना होगा, तभी हम इस बढ़ते हुए प्रदूषण को रोक पाएंगे। सखियों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी हमारी बात पर गौर अवश्य करेंगी, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। सखियों, मौसम तो है बारिश का, हाँ ये जरूर है कि बादल इस समय हमसे कुछ रूठ गए हैं, है ना, लेकिन रूठे हैं तो मानेंगे भी, क्योंकि हमें मनाना जो आता है। तो चलिए इसी प्यारे से एहसास के साथ सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, बारिश की बूंदों से भरा हुआ, जिसे हमने चुना है आप सभी के लिए फिल्म जब भी मेट से।

0: और सखियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। सखियों, केंद्र सरकार ने देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए हैं, योजनाएं बनाई हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए हर सक्षम और सशक्त प्रयास किए हैं, ताकि देश के हर क्षेत्र का न सिर्फ विकास हो सके बल्कि हर छोटे से छोटे व्यक्ति को भी उन योजनाओं का लाभ मिल सके। सखियों, ऐसी ही एक योजना है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। सखियों, यह योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक एकीकृत पोषण सहायता योजना है। वहीं इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण की समस्या को खत्म करना और बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था को देखभाल के तहत मजबूत बनाना है। सखियों, इस योजना के अंतर्गत अन्य समाहित योजनाएं हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी योजनाएं, पोषण अभियान और किशोर उम्र की लड़कियों से संबंधित योजनाएं। वहीं सखियों, इस मिशन के तहत पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाकर डिजिटल बुनियादी तरीके से सक्षम आंगनवाड़ी में परिवर्तित किया जा रहा है। इसमें खास बात है सखियों की, इनमें स्मार्ट लर्निंग उपकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, बच्चों के अनुकूल कलाकृतियां और बेहतर जल एवं स्वच्छता सुविधाएं शामिल हैं। तो सखियों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का ना सिर्फ आप लाभ उठाइए बल्कि जुड़िए और जोड़िए इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभार्थियों को। इसी विश्वास के साथ सखियों, बात हो रही है पोषण की, तो पोषण हर उम्र और हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है, ये तो सखियों हम सभी जानते हैं, है ना? लेकिन खास तौर पर बढ़ते हुए बच्चों के लिए तो पोषण बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही पोषण सीधे तौर पर उनके मानसिक और शारीरिक विकास को बेहतर बनाने में मदद करता है। यानी कहना चाहिए सखियों कि ये संतुलित आहार ईंधन की तरह किशोरों के शरीर में काम करता है। और सखियों, यही विषय है आज की हमारी भेंटवार्ता का भी। विषय है पोषण किशोरों के स्कूल प्रदर्शन में मददगार। इसमें आहार विशेषज्ञ शैफाली पाठक से बातचीत कर रही हैं प्रीति जोशी। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: नमस्कार सखियों, पौष्टिक भोजन न सिर्फ हमें पोषण देता है बल्कि हमारी ऊर्जा का स्रोत भी है। तो पौष्टिक भोजन के बहुत सारे लाभ हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आहार विशेषज्ञ डाइटिशियन श्रीमती शैफाली पाठक। और हमारा आज का विषय है पोषण किशोरों के स्कूल प्रदर्शन में मददगार। तो आइए आहार विशेषज्ञ शैफाली पाठक जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार शैफाली जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद प्रीति जी।
1: शैफाली जी, जैसा कि हमारा आज का विषय है किशोरों के स्कूल प्रदर्शन में मददगार पोषण, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि किशोरों के लिए संतुलित आहार का तो बहुत महत्व है और इसमें कौन से प्रमुख पोषक तत्व होने चाहिए।
2: यह बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर हम इस एक बात को ही समझ लें कि कौन कौन से प्रमुख तत्व बच्चों के या किशोरों के प्लेट में होने चाहिए, तो उनकी आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो सकती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि संतुलित आहार का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता, उसमें जो पोषक तत्व चाहिए वो भी सारे पूरे हो जाने चाहिए। कई बार बच्चे पेट भर के खाना तो खा लेते हैं लेकिन उनका जो पोषण है वो उन्हें नहीं मिल पाता है।

0: हमें ये समझना होगा कि हमारी थाली में 5 प्रमुख न्यूट्रिएंट्स या कहें तो पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहला है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये हमारी मांसपेशियों की रिकवरी के लिए या उनकी हड्डियों की मरम्मत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये हमें कहाँ से मिलेंगे? ये वेजिटेरियन मील्स में दालें, छोले, राजमा, पनीर, दूध, दही आदि से प्राप्त होंगे। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन मील्स की बात करें तो वो अंडे और चिकन से मिल सकते हैं। दूसरा न्यूट्रिएंट होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि पूरे दिन हमें ऊर्जा देता है, और इसके प्रमुख स्रोत होते हैं ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, मक्का, यानी हमारी रोटी और चावल। तीसरा होता है सब्जियां, और उनसे हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये हमें सब्जियों को या कलरफुल चीजों को हमारी प्लेट के अंदर रखना बहुत जरूरी होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो होता है फैट, वो हमें तेल और घी के थ्रू मिलता है और ड्राई फ्रूट्स के थ्रू मिलता है।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो पौष्टिक आहार में होना चाहिए। हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे शेफाली जी कि किशोरावस्था में सही पोषण का शरीर और दिमाग के विकास पर क्या असर पड़ता है, और इसके बिना कौन से जोखिम हो सकते हैं?
0: यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमें स्पेशल इस पर ध्यान देना चाहिए कि सही खाने से सिर्फ और सिर्फ बच्चों का शारीरिक विकास नहीं, उनका मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चों के खाने में कम ऊर्जा के स्रोत है, यानी कार्बोहाइड्रेट कम है, तो उनका जो एनर्जी लेवल्स है वो कम होंगे, उनका जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट होगा। बेटर फोकस के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ में हमें एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी ध्यान देना चाहिए, जैसे ओमेगा 3। स्पेशली जो शाकाहारी लोग होते हैं उन्हें ओमेगा 3 नहीं मिलता है उनके खाने के थ्रू, और उसका प्रभाव बहुत हद तक बच्चों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है। इससे एकाग्रता की कमी देखी जाती है, और अगर हमें ओमेगा 3 के सोर्सेस ऐड करने हैं डाइट में तो उसके लिए हम उन्हें ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स प्रॉपर मात्रा में देंगे।
1: बहुत अच्छी बात कही है आपने शेफाली जी। कई बार स्कूल गोइंग जो टीनेजर्स हैं उनके लिए पोषण बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चे टीनेजर्स खाना प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं तो हम उन्हें एक अच्छे दिखने वाले और अच्छे टेस्ट वाले अच्छे न्यूट्रिशन के साथ में स्नैक्स दे सकते हैं, जैसे कि तिल गुड़ के लड्डू या ड्राई फ्रूट्स। कई बार बच्चों को पिज्जा और पास्ता पसंद आते हैं, तो हम उन्हें भी न्यूट्रिशियसली प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके अंदर सब्जियां डाल सकते हैं अच्छे से, और बाहर के सॉसेजेस की जगह पर हम पनीर या हंकर्ड यानी दही के थ्रू भी डिप्स बना सकते हैं और उनका यूज उनके फूड में कर सकते हैं।
1: बहुत सही बात आपने कही है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किशोरों में फास्ट फूड या जंक फूड की जो आदतें हैं उनके स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक असर डालती हैं, तो क्या कहेंगे आप?
0: बिल्कुल डालती हैं। फास्ट फूड और जो पैकेज्ड फूड आजकल बच्चे ले रहे हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में सोडियम होता है, जो कि उनके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा गलत प्रभाव डालेगा। उनमें सुस्ती हो गई है। आजकल के बच्चों को अगर हम देखेंगे तो वो बाहर जाकर एक्टिव नहीं होना चाहते हैं। कारण यही है कि उनके खाने में वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं और पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड बहुत अधिक मात्रा में है। तो हमें इन चीजों को बंद करते हुए उन्हें उसी के अल्टरनेटिवली घर के बने हुए स्नैक्स देने चाहिए, जैसे कि मखाने, चने या परमल या रोस्टेड नमकीन उन्हें हम बना करके दे सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और वाकई में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि खाने में सभी तरह के पोषक तत्व शामिल हो और जो बच्चों को पौष्टिक आहार मिले तो वो उनके लिए पोषण से भरपूर रहे। किशोरों के लिए हाइड्रेशन का क्या महत्व है? पानी के अलावा कौन से ऐसे पेय पदार्थ हो सकते हैं जो स्वस्थ विकल्प हो सकते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए?
0: यह एक और बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अक्सर हम भोजन पर तो ध्यान देते हैं लेकिन पानी को हम उतनी ही गंभीरता से कभी भी नहीं लेते हैं। हमारे शरीर में लगभग 60% पानी होता है, इसीलिए शरीर को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर बच्चा दिन भर में पर्याप्त पानी नहीं पिएगा तो उसे जल्दी ही थकान महसूस होगी और वो सुस्त हो जाएगा। तो अगर बच्चा पानी नहीं पीता है तो हम उसे नींबू पानी दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, या कोई भी इन्फ्यूज्ड वाटर बना करके दे सकते हैं जो पानी की जगह उपयोग में ले सकता है। चीजें दे सकते हैं जिसके थ्रू उनका हाइड्रेशन मेंटेन हो, जैसे कि ऐसे फ्रूट जिनका वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे वाटरमेलन हो गया या ककड़ी हो गई या ऑरेंजेस हो गए, ये भी हाइड्रेशन को मेंटेन रखने में मदद करते हैं।
1: जी बिल्कुल ठीक है। कुछ आसान और पौष्टिक स्नैक्स अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं हमारी सखियों को, ताकि वो बच्चों के लिए बनाए और बच्चे अच्छे से उसे खा सकें।
0: जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी। घर से बनने वाले कुछ हेल्दी स्नैक्स होते हैं हम बच्चों को जो बना करके दे सकते हैं, जैसे कि बॉइल्ड कॉर्न की चाट,

0: जानना चाहेंगे कि टीनेजर्स लड़कियां जो हैं, उनके लिए पोषण का खास महत्व होता है, तो क्या उनके शारीरिक विकास में सही आहार जो है वो किस तरह से उनके लिए मदद करता है?
1: यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि किशोरावस्था में लड़कियों के शरीर में कई बड़े बदलाव होते हैं। इसी समय उनके पीरियड शुरू होते हैं, हार्मोनल बदलाव आते हैं और उनकी जो हड्डियां होती हैं वो तेजी से डेवलप होती है। अगर इस समय हमने उनके खाने पीने या प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा तो उन्हें एनीमिया हो सकता है, यानी खून की कमी, उनकी हड्डियों का विकास प्रॉपरली नहीं हो सकता है, बाल झड़ने लग सकते हैं या स्किन पेल हो सकती है। इसीलिए इन समस्याओं से बचने के लिए हमें प्रोटीन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन के लिए हमें दालें, फलियां, दूध और दही, इन पर स्पेशल फोकस करना होगा। ये चीजें उनकी मील में होनी ही चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है आयरन, क्योंकि पीरियड शुरू होने के बाद आयरन की डेफिशिएंसी लड़कियों में बढ़ जाती है, और आयरन की कमी से चक्कर आना, सर दर्द होना या फिर पेनफुल पीरियड जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और अगर हमें ये समस्याओं को बचना है तो उनकी फूड में आयरन के सोर्सेज होने चाहिए। आयरन के सोर्सेज हम सभी को पता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें। और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, अगर हम आयरन की दवाई भी ले रहे हैं और उसके बाद में हमने चाय पी ली तो उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आयरन की जो भी सोर्सेज हम ले रहे हैं उसके साथ नींबू जरूर से लें, जो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपने आहार की बात करी थी लड़कियों के लिए खास करके, तो क्या आप ऐसी कोई आहार योजना बता सकती हैं जो लड़कियों को ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य और लंबे समय तक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सके?
1: जी बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूं कि एक अच्छी सेहत किसी सुपर फूड या किसी महंगे सप्लीमेंट से नहीं बनेगी, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से बनेगी। अगर हम अपनी आदतें सुधार लें तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह हम एक ग्लास गुनगुना पानी ले सकते हैं। नाश्ते में हम पोहा, उपमा, मूंग दाल चीला, बेसन चीला, स्प्राउट्स या इडली या कुछ भी चीज प्रोटीन के सोर्स के साथ में ले सकते हैं। उसके बाद दिन के खाने को हम एक बैलेंस्ड मील की तरह लें, जिसकी शुरुआत हम सलाद से करें, उसके बाद में प्रोटीन का कोई सोर्स जैसे दाल और दही रख लें, हरी पत्तेदार सब्जी जरूर से लें, और उसके बाद रोटी या चावल हम जो भी खाना चाहते हैं वो ले लें। शाम के स्नैक में हम चाय और बिस्किट की जगह मखाने, भुना चना या भुट्टा, मूंगफली, इस तरीके की कोई चीजें लें। रात का खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, उसकी शुरुआत भी सलाद से होनी चाहिए, और उसके बाद में कोशिश करें कि हम हल्का खाना लें, जैसे दाल चावल, दलिया, खिचड़ी, या अगर रोटी भी खानी है तो बहुत बड़ा पोर्शन इकट्ठा ना खाएं, और खाने और सोने के बीच में 2 घंटे का ब्रेक जरूर से रखें, और उसके बाद में आप दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी जरूर से पिएं, और अच्छी नींद यानी 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी से लें।
0: बैलेंस डाइट क्या होती है ये जरूर हमारी सखियों को आप बताएं।
1: एक बैलेंस डाइट होती है वो डाइट जिसके अंदर सारे पोषक तत्व संतुलित मात्रा में रहें। जैसे कि हमने कहा प्रोटीन, तो एक बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन होना यानी 20-30% आपकी टोटल मील का, अगर हम जो भी पोर्शन खा रहे हैं उसका 30-35% आप प्रोटीन ले लें। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि रोटी और चावल से मिलेंगे 20-30% वो ले लें, कुछ परसेंट फैट रहे, और सैलेड यानी फाइबर उसके अंदर प्रॉपर आ जाए। यही एक बैलेंस डाइट होती है, कोई सुपर फूड नहीं होता, सिर्फ हमारा घर का खाना, क्लीन खाना, सही समय पर खाना और उसे सही मात्रा में खाना, यही बैलेंस डाइट होता है।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि इस तरह से बैलेंस डाइट हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल करना चाहिए। आप हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हुई और विषय से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद प्रीति जी।
2: सखियों, अभी हम सुन रहे थे आहार विशेषज्ञ शेफाली पाठक से प्रीति जोशी की बातचीत। विषय था पोषण, किशोरों के स्कूल प्रदर्शन में मददगार। और अब सखियों, क्यों न सुन लें इस प्यारे से मौसम का एक और प्यारा सा गीत।

सिक्यों, ये प्यारा सा गीत आपने सुना फिल्म हम साथ साथ हैं फिल्म से, और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। सिक्यों, आजकल बाजार में आपने भी देखा होगा कि विभिन्न तरह के खूबसूरत रंग बिरंगे ब्रेसलेट्स का चलन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है ना। लेकिन सिक्यों, इसके इतिहास की यदि बात करें तो पता है सिक्यों, इन खूबसूरत ब्रेसलेट्स का जो चलन शुरुआत हुई थी वो जादुई सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति और योद्धाओं द्वारा युद्ध में कलाई की सुरक्षा के लिए बांधा जाता था। लेकिन समय के साथ आज ये आधुनिक फैशन का हिस्सा बन गए हैं, और अब आजकल हर खास मौक़ों पर अपने स्वजनों को, अपने करीबियों को यादगार के तौर पर खूबसूरत गिफ्ट का जरिया भी बन गए हैं। तो चलिए सखियों, आज मी टाइम में हम आपको बताते हैं इसी आर्ट के बारे में, जिन्हें आप ना सिर्फ घर बैठे तैयार कर सकती हैं बल्कि आप बाजार में बेचकर अच्छी खासी कमाई का जरिया भी बना सकती हैं। सखियों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ब्रेसलेट बनाने के लिए आपको ना तो बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है

और ना ही बहुत सारी जगह की और ना ही बहुत ज़्यादा सामान की। बस ज़रूरत है सखियों थोड़ी सी सामग्री की, जैसे कि रंग बिरंगे धागे ले सकती हैं आप, रंग बिरंगे ऊन ले सकती हैं, इसी के साथ ही रंग बिरंगे इलास्टिक का भी आप उपयोग कर सकती हैं, साथ ही रंग बिरंगे छोटे बड़े मोती, क्रिस्टल या अल्फाबेट बीट्स भी ले सकती हैं। काटने के लिए आपको चाहिए कैंची और हाँ, गांठ को पक्का करने के लिए गोंद या ग्लू, ताकि जो आप गठान बांधें वो पक्की रहे, खुले नहीं। और सखियों अब बात करते हैं इसके चलन की। तो आजकल ब्रेसलेट्स का जो चलन है वो सभी जगह देखने को मिल रहा है, जैसे कि शादी पार्टियों में, दोस्ती यानी कि फ्रेंडशिप डे में, भाई बहन रिश्तेदारों और तीज त्योहारों को भी खास बनाने के लिए होने लगा है इसका प्रयोग। सखियों ये कलाई पर सजा खूबसूरत ब्रेसलेट आप जितना सुंदर बनाएंगी उसकी कीमत भी उसी तरह निर्धारित की जाएगी। तो फिर बनाइए सखियों हर त्यौहार को कुछ खास इन खूबसूरत ब्रेसलेट्स के साथ और दीजिए अपनी क्रिएटिविटी को एक नई उड़ान, एक नई पहचान और हाँ, चाहे तो कमाई का जरिया भी। इसी बात के साथ सखियों सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मैंने दिल तुझको दिया से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: तो सखियों, ये तो था हमारा आज का खूबसूरत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। तो फिर मिलने के वादे के साथ अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी आराधना को। नमस्कार। सखियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पल में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से
1: प्रस्तुत है। आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए बद्री प्रसाद खरे और साथियों की आवाजों में देशभक्ति गीत।

अजुद्दी दास कबीरपंथी के गाए इस देशभक्ति गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे हरिओम शरण के गाए भजन।

0: हरिओम शरण के गाए इस भजन के साथ ही आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: पर सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
8: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
9: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
8: तो सुनते रहिए मालवा की शान
10: आकाशवाणी इंदौर।
9: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
11: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। खामोशियां, इस फिल्म का गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत रश्मि सिंह का है और संगीतबद्ध से किया है जीत गांगुली ने।

द डर्टी पिक्चर। इस फिल्म का गीत सुनिए कमाल खान की आवाज में। गीत रजत अरोरा का है और संगीत है विशाल शेखर का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद में करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इससे पहले उन्होंने जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा अब विकास की नई पटरी पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा,
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जालंधर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। इसमें प्रदेश के 13 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं, जिनमें विदिशा, सांची, अशोकनगर, शिवपुरी, टीकमगढ़ और छिंदवाड़ा जैसे स्टेशन शामिल हैं। भोपाल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी सौरभ कटारिया ने बताया कि विदिशा, सांची, अशोकनगर और शिवपुरी स्टेशन भोपाल मंडल का हिस्सा है। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव,

विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज कटनी में प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना स्लीमनाबाद जल सुरंग का निरीक्षण किया। यह करीब 12 किलोमीटर लंबी सुरंग देश की सबसे लंबी जल सुरंग है, जिससे नर्मदा का पानी बिना पंप के गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी तक पहुंचेगा। इस परियोजना से जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों के करीब 1450 गांव की 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। प्रदेश को नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 और निवेश संवाद कार्यक्रम में करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे करीब 27,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निवेशकों को जनवरी 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि टेक्सटाइल राउंड टेबल में करीब 1,592 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और रक्षा और डेटा सेंटर तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में करीब 18,601 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं। इस दौरान एमपीआईडीसी ने 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर जिले के कलेक्टर कार्यालय में डीवीएमसी की बैठक ली। कुछ देर बाद वे सिमरी शाहबाद पहुंचकर ग्राम चौपाल और स्कूल भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद श्री सिंधिया अशोकनगर रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे तुलसी सरोवर पहुंचकर पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। वहीं पारकना और सहराई में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कल श्री सिंधिया पाटखेड़ा और मढ़ी महितपुर में विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। दतिया विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में जिलेभर में सघन जांच की जा रही है। पुलिस ने सेवड़ा चुंगी चेकिंग प्वाइंट पर एक युवक के पास से करीब 15 लाख और गोराघाट चेकिंग प्वाइंट पर एक स्कॉर्पियो वाहन से करीब 21 लाख रुपए बरामद किए हैं। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने आज बालाघाट और डिंडौरी जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के 31 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 जुलाई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश तेज हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दमोह के मगरौन स्थित जरारू धाम गौ अभ्यारण्य में दादा गुरुजी और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के नेतृत्व में 2100 पौधों का रोपण किया गया। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले के सभी जर्जर या क्षतिग्रस्त विद्यालय को चिन्हित कर उन पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक और पात्र विद्यार्थी 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और पन्ना जिले के गुनौर विधायक डॉ राजेश वर्मा ने जिले में नए न्यायालय भवन का लोकार्पण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।
1: टोक्यो विद दैट वी एंड
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा

0: तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
0: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
4: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है।

0: निदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन

0: पर अमरीकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके पसंद के गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। पसंद है आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी सूरज, सुजला ज्योति और रियांश ठाकुर ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म जब प्यार किसी से होता है का ये गीत।

0: घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, मधु राजावत, रशीर चितरंजन, कमलेश, सरोज, आरती, रितिका, रेखा, रिचा, स्वीटी, रिया, रीत और ऋषभ राजावत। आप सभी ने सुना चाहा है फिल्म दिल तो पागल है का गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है उत्तम सिंह ने। लीजिए सुनिए।
1: चांद ने कुछ कहा

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लीजिए अब सुनिए कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत और साथियों की आवाज़ों में फिल्म हम दिल दे चुके सनम का गीत। गीत महबूब का है, संगीत है स्माइल दरबार का और पसंद आप सभी श्रोताओं की। कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति और शिवानी श्रीमाली की। साथ ही सुनना चाह है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में लीजिए अब सुनिए फिल्म अशोका का गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत गुलजार का है और संगीत है अनु मलिक का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा की। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी मनन और तानिया की।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत सुनिए, जिसे देव कोहली ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने, आवाजें हैं कुमार सानू, साधना सरगम और साथियों की। फिल्म का नाम है खिलाड़ियों का खिलाड़ी। पसंद आप सभी श्रोताओं की। जिला खंडवा, ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे की। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद में करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इससे पहले उन्होंने जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जालंधर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसमें प्रदेश के 13 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं, जिनमें विदिशा, सांची, अशोकनगर, शिवपुरी, टीकमगढ़ और छिंदवाड़ा जैसे स्टेशन हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज कटनी में प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना स्लीमनाबाद जल सुरंग का निरीक्षण किया। ये 12 किलोमीटर लंबी देश की सबसे लंबी जल सुरंग है, जिससे नर्मदा का पानी बिना पंप के गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी तक पहुंचेगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर जिले के कलेक्टर कार्यालय में DVMC की बैठक ली। कुछ देर बाद वे सेमरी शाहबाद पहुंचकर ग्राम चौपाल और स्कूल भवन का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश को नई दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2026 और निवेश संवाद कार्यक्रम में करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे करीब 27,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को जनवरी 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने का न्यौता दिया है। दतिया विधानसभा उपचुनावों के मद्देनजर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में जिले भर में सघन जांच की जा रही है और मौसम विभाग ने आज बालाघाट और डिंडौरी जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के 31 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीत और आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। रात 8:00 आप सुनेंगे सुर्खियों में। रात 9:30 पर कार्यक्रम खेल जगत के अंतर्गत सुनिएगा स्पोर्ट्स में कमेंट्री का महत्व, इस विषय पर दामोदर प्रसाद आर्य से की गई भेंटवार्ता, भेंट करता है मनीष गजभिये। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात 9:45 पर। रात 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुनेंगे रात 10:30 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा संगीता गोस्वामी का राग यमन में ख्याल गायन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन और वेव OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:02 और 22 सेकेंड हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने विविध कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। आरंभ हो गई है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सांध्यकालीन सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस सभा में हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं नमस्कार। शाम के 5 बजे हैं और ये समय होता है युवा साथियों का। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम है युववाणी। तो आइए सुनते हैं युववाणी।

0: दिन भर की भाग दौड़ अब धीरे धीरे थम रही है और इसी सुकून भरे वक्त में आपका स्वागत है आकाशवाणी के युवा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं तनुष्का।
1: और मैं हूं चित्रा। साथियों, उम्मीद है आपका दिन शानदार रहा होगा। अगर नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनट हमारे साथ बताइए। बातें होंगी, मुस्कुराहट होगी, नई जानकारियां होंगी और ढेर सारा उत्साह भी।
0: बिल्कुल, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कुछ दिलचस्प खबरें, खेल जगत की बड़ी उपलब्धियां, विज्ञान की नई उड़ान और साथ ही दो ऐसे सवाल जिनका शायद आपको जवाब पता हो या शायद आज पता चल जाए।
1: तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। आज का पहला प्रश्न है कि समुद्र में रहने वाला ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास न मस्तिष्क होता है और न ही हृदय।
0: और आज का दूसरा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर एक दिन उसके एक साल से भी लंबा होता है।
1: साथियों, अगर आपको जवाब पता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, कार्यक्रम के अंत में हम इनके सही उत्तर भी आपको बताएंगे।
0: बिल्कुल, चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: दोस्तों, आज 17 जुलाई है और आज दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हमें न्याय, शांति और मानवाधिकारों के महत्व की याद दिलाता है।
6: दोस्तों, न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समानता, सम्मान और हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का आधार भी है। जब समाज में न्याय का सम्मान होता है, तभी विश्वास और शांति मजबूत होती है।
5: तो आइए अब सुनते हैं चंद्रेश मंडलोई, जो कि जिला विधिक सहायता अधिकारी हैं, उनकी आवाज में इस विषय पर एक विशेष रिकॉर्डिंग।
7: आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार है। कहा जाता है कि न्याय के बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती है और बिना अधिकार के न्याय अधूरा है। यह कथन विश्व व्यवस्था पर पूरी तरह सटीक बैठता है। आधुनिक दुनिया में जहां तकनीक और वैश्वीकरण ने देशों को एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों की प्रकृति भी जटिल हो गई है। युद्ध, नरसंहार और मानवता के खिलाफ होने वाले क्रूर अपराध किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे पूरी मानवता को झकझोर देते हैं। इन्हीं गंभीर वैश्विक अपराधों पर लगाम लगाने, अपराधियों की जवाबदेही तय करने और पीड़ितों को उनका हक दिलाने के उद्देश्य से हर साल 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। इस दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे के रूप में भी मनाते हैं और यह जाना जाता है।

यह दुनिया भर के उन सभी लोगों और संगठनों को एक मंच पर लाता है जो न्याय का समर्थन करते हैं और सांसारिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा तथा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2026 आज यानी कि 17 जुलाई 2026 शुक्रवार को मनाया जा रहा है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय और मानवाधिकार को बढ़ावा देने वाले अधिवक्ताओं और संगठनों के योगदान का सम्मान करने के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की मुख्य विशेषता इस प्रकार से है कि यह ऐतिहासिक महत्व लिए हुए है। यह दिवस 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि, जिसको हम रोम सेचुएट कह अपनाए जाने की वर्षगांठ का प्रतीक है के रूप में जानते हैं। आईसीसी का समर्थन इसी संधि के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसे हम आईसीसी के नाम से जानते हैं, की स्थापना हुई थी, जो कि नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने का कार्य करता है। इस दिवस का उद्देश्य गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना और न्याय के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2026 का अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, महिला किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष और सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, जिसके घोषित होने का उद्देश्य और विवरण इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन फार्मर। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, उनकी आजीविका, खाद्य सुरक्षा और पोषण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए यह पहल शुरू की गई है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के नेतृत्व में यह वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन, जैव विविधता और पशुपालक समुदायों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष इसी की एक थीम है। सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष उनके लिए घोषित किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्वयं सेवा और जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष को सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित भी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को हम मना रहे हैं, इसका भी भारत के वर्ष की दृष्टि से बहुत मुख्य महत्व है। वैश्विक और घरेलू स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण, गंभीर अपराधों के लिए जवाबदेही तय करने और कानून के शासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराना है। 2026 में भारत के संदर्भ में हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मानवाधिकारों की सुरक्षा, भारत में नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों जैसे गंभीर मुद्दों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है, लैंगिक और सामाजिक समानता बनाए रखना है। हमारा भारत विविधता वाला देश है और यह दिन हाशिए पर मौजूद समुदायों को न्याय दिलाने और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता पर जोर देता है। भारत में त्वरित न्याय व्यवस्था का संस्थापन। भारत में लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह दिवस न्याय प्रणाली में सुधार और सभी नागरिकों के लिए सुलभ न्याय सुनिश्चित करने की याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विधिक सेवा यानी कि लीगल सर्विसेज का चोली दामन का साथ है। विधिक सेवा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न रखा जाए, उन्हें न्याय सहज एवं सुलभ और निशुल्क प्राप्त हो सके, यह सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के मुताबिक अनुच्छेद 39A के तहत गरीबों और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता पूरे देश में प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जिला स्तर तक मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। हम सभी को यह जानना जरूरी है कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना है, उसी प्रकार से राज्यों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना है। हमारे मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में स्थापित है, जिसके मार्गदर्शन में संपूर्ण प्रदेश में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना है होकर राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न पीड़ितों एवं वंचितों और जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त कानूनी योजनाएं विभिन्न प्रकार की चल रही हैं, जिसमें महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सदस्यों, औद्योगिक श्रमिकों

और आपदा पीड़ितों को आय सीमा के बावजूद मुफ्त विधिक सहायता दी जाती है, और जो अनारक्षित वर्ग से हैं और पिछड़ा वर्ग समुदाय से हैं, उन्हें 2 लाख रुपए तक की जिनकी वार्षिक आय हो उन्हें भी मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से अभिरक्षित व्यक्ति जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है, उन्हें भी, वो चाहे इस आय वर्ग में आते हो या ना आते हो, उन्हें भी मुफ्त कानूनी सलाह सहायता प्रदान की जाती है। हम ये जान गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी उन्हें संबल प्रदान करना, उन्हें पुनर्वास करने के उद्देश्य को लेकर हम मना रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश राज्य में भी पीड़ितों को पुनर्वास करने के लिए उन्हें आर्थिक स्थिति के आधार पर त्वरित राहत और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने, उन्हें शिक्षा दिलाने, उन्हें जीवन में पुनर्वास करने के लिए और उन्हें अपराधों की भयावह जो उन्हें दंश झेला है उससे बाहर निकालने के लिए मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 हमारे प्रदेश में लागू है, जिसके तहत अपराधी घटनाओं जैसे हत्या, यौन अपराध, एसिड अटैक और गंभीर चोट आदि के शिकार हुए व्यक्तियों या उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता और पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाता है। हमारे देश में और प्रदेश में त्वरित न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे माताओं, बहनों और बच्चों के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम करती हैं और एक समयावधि सुनिश्चित के अंदर उन्हें न्याय प्रदान करने का काम करती है। पक्षकारों में, लोगों में आपसी सामंजस्य बना रहे, भाईचारा बना रहे, लोगों के विवाद समझौते के आधार पर समाप्त हो सके, ये सारी चीजों को लेकर विधिक सेवा संस्थाएं नियमित रूप से लोक अदालतों का आयोजन करती हैं। इसके अलावा विधिक सेवा त्वरित न्याय व्यवस्था के अंतर्गत मध्यस्थता योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित मध्यस्थता उद्योग के द्वारा मध्यस्थता का कार्य भी कराती है, जिसके आधार पर पक्षकारों के बीच उनके मुकदमे में राजीनामा की संभावनाओं के आधार पर उनके प्रकरणों का समाधान कराया जाता है।

हम सहायता लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे, यही अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का यह संकल्प है और यही उसका उद्देश्य है। बहुत बहुत नमस्कार। मैं चंद्रेश मंडलोई, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय मंडलेश्वर, पश्चिम निमाड़। धन्यवाद।

0: कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज शुक्रवार का दिन है। आज हम आपसे बातें करते हैं खेल और विज्ञान के बारे में। तो खेल जगत की शुरुआत आज एक ऐसी खबर से करते हैं जिसने भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया।
3: जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 270 रनों से हरा कर लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट मैच जीता। ये सिर्फ भारत की जीत नहीं थी दोस्तों, बल्कि लॉर्ड्स में महिला टेस्ट की पहली मेज़बानी भी थी और इसीलिए ये मुकाबला अपने आप में ऐतिहासिक बन गया।
2: और इस जीत की सबसे बड़ी स्टार रही क्रांति गौड़। महज अपने दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट लेकर लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया। ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई।
3: और बात यहीं खत्म नहीं होती। यास्तिका भाटिया ने शानदार 113 रन बनाए और उनका शतक भी लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर दर्ज हुआ। यानी एक ही मैच में भारत की दो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया।
2: साथ ही कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बनाया। वह लॉर्ड्स में टेस्ट, वनडे और T20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई। यह उपलब्धि अब तक किसी भारतीय पुरुष या महिला खिलाड़ी ने हासिल नहीं की थी।
3: और इस ऐतिहासिक टेस्ट को देखने के लिए श्रोताओं, 37,000 से ज़्यादा दर्शक मैदान पहुँचे। ये महिला टेस्ट क्रिकेट के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और ये दिखाता है कि महिला क्रिकेट लगातार नई ऊँचाइयाँ भी छू रहा है।
2: ये तो हुई क्रिकेट की बात तनिष्का, लेकिन फुटबॉल प्रेमियों का इंतजार भी अब अपने चरम पर है। 19 जुलाई को फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल खेला जाएगा, जिसमें मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन विश्व विजेता बनने के लिए आमने सामने होंगे।
3: तो क्या लियोनेल मेसी अपनी टीम अर्जेंटीना को एक और विश्व कप दिलाएंगे या युवा स्टार लामिन यमाल की लीडरशिप में स्पेन नया इतिहास रचेगा, इसका जवाब मिलेगा 19 जुलाई को।
2: तो तब तक करते रहिए आप इंतज़ार। और आप दोनों में से किस टीम को सपोर्ट करते हैं ये हमें पत्र लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारा पता ज़रा बता दो इन्हें तनिष्का। चलिए पता हम आपको बताते हैं कार्यक्रम के अंत में। तब तक आप इकट्ठा कर लीजिए कि क्या क्या लिखने वाले हैं आप हमें पत्र में। अभी सुनिए ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास सेगमेंट खेल और विज्ञान विशेष, जहां हम बात करते हैं उन खबरों की जो सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले भारत का भविष्य तय करती है।
3: और आज की खबर सचमुच ऐतिहासिक है। जब भी भारत के अंतरिक्ष मिशनों की बात होती है तो सबसे पहले इसरो का नाम आता है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत का निजी क्षेत्र भी अंतरिक्ष में अपनी मजबूत पहचान बनाने जा रहा है।
2: जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस अपना पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम वन लॉन्च करने जा रही है। अगर ये मिशन सफल रहता है तो ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट होगा, जो ग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा।
3: साथियों, ध्यान दीजिए कि ऑर्बिटल यानी ऐसा रॉकेट जो सिर्फ अंतरिक्ष की सीमा तक नहीं जाता बल्कि सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करता है। यही असली परीक्षा होती है किसी भी लॉन्च व्हीकल की।
2: और इस मिशन का नाम भी बेहद खूबसूरत है, मिशन आगमन। ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं बल्कि भारत के निजी स्पेस सेक्टर के लिए एक नए दौर का आगमन माना जा रहा है।
3: दिलचस्प बात यह है कि स्काईरूट एरोस्पेस की शुरुआत 2018 में कुछ पूर्व इसरो इंजीनियरों ने की थी, और सिर्फ कुछ वर्षों में ही यह स्टार्टअप भारत की सबसे चर्चित स्पेस टेक कंपनियों में शामिल हो गया।
2: 2022 में इसी कंपनी ने विक्रम एस नाम का सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था। वह भारत की किसी निजी कंपनी का पहला सफल स्पेस मिशन था। अब विक्रम वन उससे कहीं बड़ा और अधिक चुनौतीपूर्ण कदम है।
3: तनिष्का, अब सवाल ये भी है कि इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा? तो साथियों, बहुत बड़ा फायदा। आज दुनिया भर में छोटे छोटे सैटेलाइट तेजी से लॉन्च किए जा रहे हैं। इंटरनेट, मौसम, खेती, नेविगेशन

0: आपदा प्रबंधन और संचार जैसी सेवाओं के लिए इन्हीं सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। अगर भारत की निजी कंपनियां कम लागत में लॉन्च सेवाएं देंगी तो दुनिया के कई देश और कंपनियां अपने सैटेलाइट भारत से लॉन्च करवा सकती हैं। इससे रोजगार, निवेश और नई तकनीकों का विकास होगा।
1: यानी अब स्पेस सिर्फ सरकारों का क्षेत्र नहीं रहा, स्टार्टअप स्पेस में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
0: बिल्कुल, इसरो ने जो मजबूत नींव बनाई, अब उसी पर निजी कंपनियां नई इमारत खड़ी कर रही हैं। यही वजह है कि भारत का स्पेस इकोसिस्टम दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है।
1: तो कुल मिलाकर विक्रम 1 सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, ये उस भरोसे का प्रतीक है कि भारत अब अंतरिक्ष में मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर लॉन्च फ्रॉम इंडिया की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: और हमें इंतजार रहेगा उस पल का जब ये रॉकेट सफलतापूर्वक उड़ान भरकर इतिहास रचेगा।
1: चलिए इसी के साथ अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: साथियों, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने पूछे थे आपसे दो प्रश्न, तो आइए अब जानते हैं कि उनके उत्तर क्या है। तो पहला प्रश्न था कि समुद्र में रहने वाला ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास न मस्तिष्क होता है और न ही हृदय। तो इसका जवाब है जेलीफिश। जेलीफिश के पास न मस्तिष्क होता है, न हृदय और न ही हड्डियां। इसके शरीर में एक नर्व सेट होता है जो इसे अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। यही कारण है कि बिना मस्तिष्क के भी वे तैर सकती हैं, भोजन पकड़ सकती हैं और अपना जीवन सफलतापूर्वक जीती हैं।
3: और आज का दूसरा प्रश्न था कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर एक दिन उसके एक साल से भी लंबा होता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस। दोस्तों, एक दिन यानी ग्रह को अपनी दूरी पर एक बार घूमने में जितना समय लगे वो, और एक साल यानी कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगे उसे हम एक साल कहते हैं। शुक्र ग्रह पर यही बात बेहद अनोखी है। शुक्र अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 243 पृथ्वी दिन लेता है, लेकिन सूर्य के चारों ओर पर एक परिक्रमा केवल लगभग 225 पृथ्वी दिन में पूरी कर लेता है, और इसीलिए शुक्र पर एक दिन उसके एक साल से भी लंबे होते हैं।
2: अरे वाह, कितने रोचक जवाब थे। चलो साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आ गया होगा। घड़ी ने इशारा कर दिया है, तो फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए अब हमें इजाजत। मैं चित्रा
1: और मैं तनिष्का,
0: नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे थे युवा साथियों का पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी। शाम के 5:45 हुए हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा और राहुल के साथ साथियों की आवाजें। गीत हमने लिया था आर आर आर इस फिल्म से। गीत को लिखा था रिया मुखर्जी ने।

0: और संगीत था एमएम क्रीम का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: दिलजीत सुखबीर और ध्वनि भंसाली की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे कुमार का लिखा हुआ ये गीत। फिल्म का नाम था गुड न्यूज़।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, वांटेड फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान और वाजिद की आवाजों में। गीत को लिखा था जली शेरवानी ने और ये संगीत था साजिद वाजिद का। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम के अंत में नरेश अय्यर और साथियों की आवाज में रंग दे बसंती फिल्म का ये गीत। ए आर रहमान का संगीत है और गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने। लीजिए सुनिए।

रंग दे बसंती फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। आप ही आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के साथ शाम के 6 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम, जिसमें आप सुनते हैं उमंग। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंडासा तहसील कोडायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
0: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
0: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
0: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
0: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
0: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
0: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
2: इसके बाद हम सभी जानते हैं

0: कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा, अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
1: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
0: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ आ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था

0: टेथिस महासागर। क्या नाम था?
1: टेथिस महासागर।
0: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
0: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
0: अरे, एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर, फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर, ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा, अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरिशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर, आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा, उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टेथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
3: सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
3: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में, तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है, आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया। सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान है। आमतौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
3: सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
3: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था, वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और

0: जल आदि ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनिंकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
1: आजा, आजा, आजा।
0: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
2: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
0: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
2: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
0: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
0: दादी ने पूछा।
2: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा?
0: दादी काफी प्रभावित हुईं।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
0: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
2: बस काफी है दादी,
0: उसने रूखे स्वर में कहा।
2: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
0: दादी ने पूछा।
2: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया, और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि

0: मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
0: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
3: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: दो शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
3: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
0: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।
1: Hmm.

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

मीडियम वेव 465.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 होने को हैं। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं सुगम संगीत। आपको बता दें आज के हमारे कलाकार हैं अहमद रज़ा। आज हम उनके स्वर में आपको सुनवा रहे हैं कुछ गज़ली। पहली गज़ल जो हमने इस कार्यक्रम में शामिल की है उसके मौसीकार हैं यूसुफ सहर। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज के हमारे कलाकार हैं अहमद रजा पप्पन, और इनके स्वर में अब आपको सुनवाए जा रहे हैं कार्यक्रम में अगली गजल, जिसे लिखा है कवि मनीष ने। आइए सुनते हैं ये।

सुगम संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। आज के हमारे कलाकार थे अहमद रजा पप्पन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। लीजिए सुनिए लोकगीत। आज कलाकार हैं रामचंद्र गंगोलिया और इनके साथी।

श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं रामचंद्र गंगोलिया और इनके साथियों के स्वर में लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश।

रामचंद्र गंगोलिया और इनके साथियों के स्वर में आज आप सुन रहे हैं लोक संगीत में कुछ मालवी लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी लोकगीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज के हमारे कलाकार थे रामचंद्र गंगोलिया और इनके साथी। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 7 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसर रचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों और अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरण रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 अगस्त तक चलेगा। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री ट्रेन की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पे राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया।

0: और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आज के शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय होगा भिंडी की उन्नत खेती। डॉक्टर भरतलाल से बातचीत करेंगी तुलसा दरगैया। इसी के साथ इस कार्यक्रम में आप आनंद ले सकते हैं लोकगीतों का और साथ ही जानकारी ले सकते हैं मंडी के भाव की। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे सुर्खियों में। 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे चित्र गीत। 9:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम होगा मन भावन। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा शंभू प्रसाद पवार का गाया राग बागेश्री कानड़ा। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं, कल 6:05 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। 6:30 पर सुनिए चिंतन। 6:35 पर खेती की बातें, इसमें विषय होगा प्राकृतिक खेती। इस विषय पर जानकारी देंगी संध्या कोठारी। 6:40 पर आप सुन सकते हैं श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुनहरे पल सदाबहार फिल्मी गीतों का ये प्रोग्राम होता है जिसे आप सुन सकते हैं 7:20 पर। श्रोताओं, 9:00 आप सुन सकते हैं लोक संगीत, कलाकार होंगे नारायण लाल सिसोदिया। 9:10 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 9:40 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा विदुषी कल्पना झोकरकर का गाया राग सालम वराली तोड़ी। 10:05 पर फोन इन प्रोग्राम होगा MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में आप फोन कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंदीदा गीत। दिन में 11:00 से हमारे भोपाल केंद्र से कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे जिनमें आप सबसे पहले सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 फिल्म संगीत। 12:30 पर संग्रहालय से। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम प्रसारित होगा। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। दिन में 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। तो ये थे भोपाल केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और आइए अब आपको जानकारी देते हैं शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं, शाम की सभा आरंभ होती है 5:00 जिसमें सबसे पहले युवा साथियों का पसंदीदा प्रोग्राम होता है युववाणी। तो कल भी सुनिएगा युववाणी कार्यक्रम। कल का क्रम होगा हेलो फ्रेंड्स। 5:45 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। 6:00 आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। 6:30 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे इंदर सिंह चौधरी और इनके साथी। 6:45 पर आप सुनेंगे अखलाक वारसी के गाए लोकगीत। 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी। रात्रि 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर। 9:15 पर चित्रगीत प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय चित्र पत्रिका चित्र भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये था कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे थे आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और चंडीगढ़ को दी करीब 19,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का किया वर्चुअल उद्घाटन। मध्य प्रदेश के 13 स्टेशन भी शामिल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कटनी में सलीमनाबाद जल सुरंग का किया निरीक्षण। परियोजना से करीब 1450 गांवों की 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि को मिलेगा सिंचाई का लाभ। और प्रदेश में 9 दिन बाद मानसून फिर सक्रिय। बालाघाट, उमरिया और डिंडौरी में हुई तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद में करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अंबाला काला आम हाईवे और जींद गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे जैसी बड़ी सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। भिवानी और नारनौल में नए मेडिकल कॉलेज तथा कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और सिख म्यूजियम की नींव रखी गई। जींद के बाद प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना से जुड़ी 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया, जिसमें मध्य प्रदेश के 13 स्टेशन भी शामिल रहे। इनमें विदिशा, सांची, अशोकनगर, शिवपुरी, ब्योहारी, भिंड, हरपालपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, जुन्नारदेव, बालाघाट, छिंदवाड़ा और नैनपुर शामिल हैं। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और अशोकनगर में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल वनों के प्रशासक नहीं बल्कि प्राकृतिक धरोहर के संरक्षक भी हैं। वहीं दूसरी तरफ 19 जुलाई से राष्ट्रपति मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज कटनी में प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना सलीमनाबाद जल सुरंग का निरीक्षण किया। ये करीब 12 किलोमीटर लंबी देश की सबसे लंबी जल सुरंग है। इससे नर्मदा का पानी बिना पंप के गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी तक पहुंचेगा। इस परियोजना से जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों के करीब 1,450 गांवों की 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। टनल का निर्माण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने 2 सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा,
2: हमारे 5 जिले पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और अपना रीवा, ये 500 जिलों में 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो, ये पूरा क्षेत्र पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगा। इतना अच्छा अपना खेत सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, खेतों को पानी मिलेगा, पीने का पानी गाँव में मिलेगा और लोगों के लिए भी पानी मिलेगा।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा

0: आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश एक देश एक विधान और एक कानून की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र से पहले जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक कर इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दी जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर में भाजपा पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक कर बूथ सशक्तिकरण और आगामी रणनीति पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने सेमरी शाहबाद में 23 लाख की लागत से बने स्कूल भवन और नई ग्राम चौपाल का लोकार्पण किया। श्री सिंधिया ने दिशा समिति की बैठक में करीब 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर सिंचाई, सड़क और स्वास्थ्य जैसे कामों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारियों को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक 19 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के निवास पर होगी। इस बैठक में सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों और विपक्ष की रणनीति पर चर्चा होगी। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। चार दिवसीय इस सम्मेलन में 138 देशों के 1600 से अधिक प्रदर्शकों और 11000 से अधिक खरीदारों ने भाग लिया। इस सम्मेलन और दिल्ली में ही आयोजित निवेश संवाद कार्यक्रम में प्रदेश को करीब 20,000 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे करीब 27,592 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बताया कि टेक्सटाइल राउंड टेबल में करीब 1,592 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव और दिल्ली निवेश संवाद में रक्षा, डेटा सेंटर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में करीब 18,601 करोड़ रूपये के प्रस्ताव मिले हैं। इस दौरान एमपीआईडीसी ने 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज भोपाल में पॉक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में प्रदेश भर की बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसका मकसद समितियों की कार्यप्रणाली में एकरूपता लाना और उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं की बेहतर जानकारी देना था। आयोग की अध्यक्ष डॉ निवेदिता शर्मा ने कहा कि हर मामले में बच्चों का हित सर्वोपरि रखा जाए। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, जिस अभियान का उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजें। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्वार तथा रिचार्ज पिट व चेकडैम बनाकर भूजल को रिचार्ज करने पर जोर दिया जा रहा है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में 9 दिन बाद मानसून फिर सक्रिय हो गया है। आज बालाघाट, उमरिया और डिंडौरी में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी की तरफ से एक लो प्रेशर एरिया सक्रिय हो रहा है। वहीं प्रदेश के ऊपर 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी एक्टिव हैं। 19 जुलाई को उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से भी तेज बारिश का नया दौर शुरू होगा। प्रदेश में अब तक 243.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य बारिश 281.3 मिलीमीटर होनी चाहिए। पूर्वी हिस्से के जिलों में 26% और पश्चिमी हिस्से में 2% कम बारिश दर्ज हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल के रानी दुर्गावती शासकीय कन्या महाविद्यालय में 24 जुलाई को जिला स्तरीय रोजगार नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत किशोरियों और स्कूली बच्चों के लिए एक दिवसीय शैक्षणिक तथा जागरूकता भ्रमण का आयोजन किया गया। महिला बाल विकास विभाग देवास द्वारा बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने के उद्देश्य से खिलौने पर आधारित शिक्षण पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। झाबुआ के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एमएल चोपड़ा ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर झिरी का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खंडवा जिला पंचायत सभागार में सरपंच, सचिव, उपयंत्री और ग्राम रोजगार सहायकों की एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीहोर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की बैठक में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान और मादक पदार्थों की रोकथाम पर चर्चा हुई। नीमच के स्वामी विवेकानंद पीजी महाविद्यालय में एक दिवसीय भूकंप पूर्व तैयारी एवं क्षमता वर्धन कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर किया गया। गुना के जिला एवं सत्र न्यायालय में कल उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस अहलुवालिया डिजिटल रिकॉर्ड रूम प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन और हैंडबुक प्रयास का विमोचन करेंगे। दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने दमोह हिंडोरिया पटेरा मार्ग पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज तथा नवनिर्मित लोडिंग अनलोडिंग रैक प्वाइंट का निरीक्षण किया। शासकीय विधि महाविद्यालय राजगढ़ के प्राचार्य आशुतोष सिंह का चयन सितंबर 2026 में समरकंद कजाकिस्तान में आयोजित होने वाली चेस ओलंपियाड की भारतीय टीम के लिए हुआ है। और रीवा जिले में पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप जब्त की है। मैनगवां थाना पुलिस ने मक्के की बोरियों में छिपाकर ले जाए जा रहे करीब 20 क्विंटल गांजे को बरामद किया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और चंडीगढ़ को दी करीब 19,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। शाम के 7:21 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहन नख आपकी बहन तुलसा के राम राम। भाई बहनों ने अपना बोनी तो करी दी, न फसल अपनी पूर्ण बड़वार पर भी छे, कोलपा डोरा भी चली रहा है, न पानी बाबा का नहीं आने से थोड़ी परेशानी भी हुई रही, पर कोई बात नहीं पानी आवेगा। पर अभी हमने हमारा खेत में जो सोयाबीन की बोनी करी दी ओका में कदी चारों हुई गए हो तो उसकी निंदाई गुड़ाई करी देवा या फिर कोई खरपतवार नाशी को छिड़काव करी देवा, न कदी खेत में खाली जगह हो तो वहाँ नाड़ी नम कीट आकर्षक फसल लगाई देवा जैसे कि गेंदा की, जेका से कीट हमारी फसल पर नहीं आना का। साथ ही सोयाबीन को अंकुरण कमजोर होना पर फिर से भी बुवाई करी सका या खाली जगह में अपन बीज डाली सका। साथ ही जब पानी पड़ेगा तो वो पानी का हमका संचय करी न रखू, जेका से पानी नहीं आना पर वज पानी हम उपयोग में ली सका। किसान भाई उन्होंने वर्षा जल संरक्षण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग बरसात का पानी का बर्बाद होने से बचावना न ओख भविष्य का लेन संग्रहित करने की एक तकनीक है। छत या खुली जमीन पर बरसने वाला पानी का पाइप या नाड़ी का माध्यम से फिल्टर करी न टैंक में जमा कर या फिर ओख सीधा जमीन में भीतर पहुँचाई न भूजल स्तर का हम बढ़ाई सकाएं। एक कारण हम घर या इमारत की छत पर गिरने वाला बरसात का पानी का इकट्ठो करी लेवा न पाइप न सी स्टोरेज टैंक में जमा करी लेवा या सोखता गड्ढा न का माध्यम से जमीन में भेजी देवा या फिर जमीन पर बहने वाला बरसात का पानी का रोकी न तालाब कुआं या भूमिगत टैंक में हमें का जमा करी सकाएं। एका से हमका काई लाभ छे कि जसो कि पानी सीधो जमीन में रिसने से भूमिगत जल को स्तर ऊपर उठ जाएगा, साथ ही घरेलू काम बागवानी न खेती का लेना पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित हुई जाएगा। साथ ही शहर न निचला इलाका न में बरसात को पानी जमा होना या बाढ़ जैसी स्थिति से भी हम बची सकांगा। पर भाई रोहिणी पानी को संचय करना का पहले हमको कुछ बात न को भी ध्यान रखनो, जसो कि छत या सतह को ऊ हिस्सो जो सीधो बरसात को पानी एक जगह पाउतो हो ओका हम साफ रखा जेका सी पानी दूषित नहीं हो, न पानी का टैंक या जमीन में भेजने से पहले एक जालीदार फिल्टर या चारकोल रेत फिल्टर से निकाला जेका सी ओमा जो कचरो हो धूल मट्टी हो पत्ती न हो वो सब अलग भी जाए। साथ ही खेत का पानी का खेत में रोकने की व्यवस्था करा जेका सी वो पानी हमका सिंचाई का काम आई सक। न भाई बहनों ने तो हुई अपनी बातचीत न आओ सुना अपनी संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान

0: EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भाई नोनी, अब सुना जपन रतन दास बैरागी को गायली मालवी लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: किसान भाई नोनी, अभी हमारा खेत में खरीफ की फसल सोयाबीन कपास मूंगफली लगेल छे, साथ कुछ किसान भाई ने अपना खेत में सब्जी भाजी भी लगाई। तो बात करा भिंडी की उन्नत खेती कसा करा, इना विषय पर हमका जानकारी दी रहा है डॉक्टर भरतलाल, सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान विभाग RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर सी। तो सुना जा पड़ी भेंट वार्ता।
3: किसान भाई नोनी, अभी बरसात को मौसम चली रो न, बरसात का मौसम में हमारा किसान भाई बोनी भी करी रहा, कई किसान भाई सब्जी भाजी भी लगावल न। सब्जी भाजी ने मैं बात करा भिंडी की, तो भिंडी की उन्नत खेती कसा करा, इना विषय पर आज हमका जानकारी देगा डॉक्टर भरतलाल, सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान विभाग RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर सी। तो डॉक्टर साहब, आपको कार्यक्रम में स्वागत छे। राम राम।
4: राम राम सभी किसान भाइयों का, मेरा नाम राम राम।
3: डॉक्टर साहब, जैसो कि अभी हमने को कि बरसात को मौसम चली रो न, हमारा किसान भाई सब्जी भाजी भी लगावल न, भिंडी की उन्नत खेती हमारा किसान भाई किस प्रकार से करे, तो सबसे पहले तो हमारो प्रश्न आपसे ये छे कि भिंडी की खेती का लेना सबसे अच्छो मौसम न मिट्टी कौन सी रहे, क्योंकि मौसम तो अभी चली रो न, मिट्टी भी कहाँ की रहे जेका हमारी भिंडी की फसल अच्छी आवा।
4: देखिए मैम, जैसे भिंडी की अपन बात करें तो भिंडी एक बहुत ही पौष्टिक खेती है, बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, जिसमें अपन बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू देखी जाए इसकी तो बहुत ही अच्छी है, और ये विभिन्न प्रकार की एंटीऑक्सीडेंट है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करती है भिंडी की सब्जी। अपने भिंडी की खेती के बारे में जैसे बात करें उसकी मौसम और मिट्टी।
3: अच्छा,
4: भिंडी मुख्य रूप से गर्मी या अपन कह सकते बरसात की खेती है।
3: अच्छा,
4: तो इसके लिए बुवाई के अंकुरण के लिए जो तापमान रहता है 25 से 35 डिग्री का सेल्सियस डिग्री तक रहता है। मिट्टी वैसे तो यह हर तरह की मिट्टी में भिंडी हो सकती है, लेकिन बेहतर जल निकास वाली बलियों दोमट मिट्टी भिंडी की उत्तम खेती के लिए मानी जाती है।
3: अच्छा,
4: मिट्टी का पीएच मान 6 से 6.7 तक जाता है, इसके बीच होना चाहिए, तो इसके लिए भिंडी की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है।
3: बाजार में भिंडी की कई किस्म न मिले, तो हमारा जो किसान भाई थे वो कहाँ कैसे उन्नत किस्म लगाव जेका से उनका पैदावार अच्छी मिले न लागत भी कम लगा।
4: हाँ मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो किसान भाइयों के लिए बहुत समस्या का समाधान रहता है बीज चुनाव या किस्मों के चुनाव के लिए।
3: हाँ हाँ,
4: तो हमेशा ऐसी किस्मों को चुने जिनमें बीमारियां कम लगती हैं। कुछ प्रमुख किस्में इस प्रकार है, अर्का नाम का यह किस्म जो किसानों के पीला एलोमोजिक रोग के लिए प्रतिरोधक है, परवानी क्रांति ये अपने महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में है, उसके कृषि विश्वविद्यालय से ये बनी हुई है। इसके फल गहरे हरे रंग के चमकदार होते हैं, जैसे पूसा अपनी दिल्ली से निकली हुई है, इसके जो पौधे होते हैं मध्यम ऊंचाई के होते हैं और बहुत अच्छा फलन होता है। आजकल मार्केट में बहुत सारी जो हाइब्रिड वैरायटी चल रही है मैडम, ये भी अपन बहुत आसानी से मिल जाती हैं मार्केट में, बहुत अच्छी कंपनी है जो वेजिटेबल सब्जियों की खेती के सीड प्रोवाइड माइको हाइब्रिड, इन किस्मों को अपन बाजार में बहुत अच्छे से मिलती है और इन किस्मों के बीजों को अपन अपना सकते हैं।
3: अच्छा, ये तो आपने बताई कि भिंडी की जो किस्म ने बताई, एकाली बीजोपचार भी जरूरी है कि भिंडी का लेने की रोपो लगाई?
4: नहीं, भिंडी के जो अपन जैसे लेते हैं मैडम मार्केट से जितने भी लेते हैं तो ये पहले ही से बीज उपचार आता है इनका।
3: अच्छा।
4: और कुछ किसान भाई करते हैं तो अपन कुछ जैसे सकिंग पेस्ट के लिए कर सकते हैं, कोई डिसीज के लिए बीज उपचार कर सकते हैं। सकिंग पेस्ट के लिए ज्यादातर इसमें सकिंग पेस्ट आते हैं अपने हरा तेलू माहू के लिए और व्हाइट फ्लाई, जिसके लिए अपन बीज उपचार करते हैं। जैसे अपने पास कोई भी इंसेक्टिसाइड जो अपन स्प्रे के लिए यूज करते हैं उसी से अपन इसका स्प्रे कर सकते हैं।
3: भिंडी की बीज की बुवाई कवा कराना कसी कराना, पानी कवा कवा देवा, क्योंकि वस्तु अभी बरसात को मौसम चली रोज, पर जैसे पानी नहीं आवा तो कवा देवाना, फिर बुवाई भी किस समय करा, ये भी हमारा किसान भाई ने बताओ।
4: किसान भाइयों के लिए ये भी एक बहुत अच्छी है, जैसे भिंडी की खेती मैंने पहले भी बताया है कि दो समय में की जाती है, गर्मी में एक बरसात में। तो भिंडी के बीज की बुवाई कम से कम कैसे करना चाहिए, किसानों को बहुत जरूरी आवश्यक होता है। बुवाई का समय साल भर में इसकी 2 बार बुवाई की जाती है। गर्मी की फसल इसे अपन फरवरी या मार्च में लगाते हैं। इसके बाद बरसात की फसल को अपन जून जुलाई में लगाते हैं, जो अभी बहुत अच्छा सीजन चल रहा है।
2: अच्छा।
4: तो अभी इस टाइम पे जैसे बरसात की स्पेशल बात की जाए, अभी मौसम भी चल रहा है, किसान भाई इसकी कुछ खेती भी करना चाहते होंगे, लगाते भी हैं, तो बीज की मात्रा अभी गर्मी के लिए लगभग 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर रखते हैं अपन। ऐसी बरसात में 4 से 5 केजी बीज की जरूरत होती है। सिंचाई गर्मी के दिनों में जैसे बात की जाए तो 5 से 6 दिन यानी वीक, एक सप्ताह में अपन एक सिंचाई कर सकते हैं इसके अंतर से। और जैसे बरसात होती है तो अभी प्राकृतिक भी बारिश मिलती है, इसके लिए बारिश होती है तो कोई जरूरी नहीं है कि अपन सिंचाई करना पड़े। लेकिन जहाँ ज्यादा गैप हो जाता है प्राकृतिक बारिश से, तो वहाँ पे अपन उस टाइम से देखकर उसकी सिंचाई कर सकते हैं।
2: हाँ, कि भाई बहुत दिन तक पानी नहीं आवा, खूब घाम पड़ा, तो आज तो अपन का लगा तो उस समय कर ही सका है।
4: हाँ बिल्कुल, किसानों को जो किसान अच्छे रहते हैं वो बिल्कुल खेती का ध्यान रखते हैं, और सब्जी वाले तो स्पेशल बिल्कुल खेती पे ध्यान देते हैं, तो उनको बिल्कुल खेत मॉनिटरिंग है, देखते हैं खेत को, तो उनकी निगरानी में रहता है कि कब बारिश हुई है और कब नहीं हुई है। बारिश कम हुई है तो वो अपने हिसाब से सिंचाई कर देते।
2: अच्छा, एक खाद वगैरह कसो देवा, कौन सो खाद देवा भिंडी में?
4: भिंडी में जैसे अपन नॉर्मल सब्जियों में ज्यादातर खाद लगता है, तो जैसे अच्छा फ्रूटिंग लेना है तो अपन नाइट्रोजन को कम रख के, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है, तो जो मिक्स वाले आते हैं जिनमें फास्फोरस ज्यादा होता है, इस टाइप के जैसे डीएपी है, तो अपन उसको जैसे अपन इसमें निराई गुराई करते हैं, उस टाइम निराई गुराई के बाद उसमें अपन डीएपी का हल्का सा रो में डाल देते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, जिससे दोनों फर्टिलाइजर मिल जाते हैं भिंडी को, और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। और फ्रूट में जो डीएपी में फास्फोरस होता है अपना, तो उससे क्या है इंसेक्ट और डिसीज भी प्लांट को में कम आते हैं।
2: अच्छा सर, कभी भिंडी में कीड़ा लगी जाए या कि भिंडी की जो पत्ती ने वो पीली पड़ने लगी जाए, तो एकाक से हम कसा अपनी फसल का बचा ही सकें?
4: मैम ये बहुत ही सभी किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या आती है। जैसे इसमें 2 प्रकार के कीट आते हैं, एक आते हैं जो पत्तियों से रस चूसते हैं, ठीक है, और दूसरे आते हैं इसमें जो फल और उसके पौधे को खाते हैं। बात करें कि जो फल और पौधों को खाते हैं, तो इसमें एक आता है तना फल और तना छेदक।
2: अच्छा,
4: तो जैसे तना बनता है, इसका सूट बनता है, अच्छी ग्रोथ होती है वेजिटेटिव, उस टाइम पे क्या है इसमें क्या आता है तना छेदक। जैसे भिंडी अपनी 30 से 35 दिन की होती है, उस टाइम पे इसमें सबसे ज्यादा अटैक इसका होता है तना छेदक को, तो इसका जो पॉइंट होता है बढ़ने वाला जो मेन ब्रांच होती है उसमें तना छेदक का अटैक होता है, जिससे क्या है उसके तना सूख जाता है।
2: अच्छा।
4: और इसमें छोटी छोटी साइड से ब्रांचे फिर बाद में निकलती हैं, तो फ्रूट की क्वालिटी बहुत बेकार हो जाती है। और यही आगे जाके जैसे इसमें फ्रूट बनने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है फ्रूट वो ही तना छेदक का अपने फल में हानि पहुंचाता है। तो इससे जो कीड़ा होता है, इल्ली होती है उसकी, वो क्या फल को खाती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई ज्यादातर अपने जैविक कीटनाशक का उपयोग करें सब्जियों में, जैसे अपना नीम ऑयल है, इसका अपन 8 से 10 ml प्रति लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। अब इससे इल्ली तो नहीं मरती है जैसे किसान भाइयों को पता है, लेकिन जो कीटों के द्वारा अंडे दिए जाते हैं वो कैसे स्टरलाइज हो जाते हैं, अनफर्टाइल हो जाते हैं, जिससे उनसे इल्ली नहीं निकलती है। तो जितने भी जैविक अपने पेस्टिसाइड हैं उनके द्वारा यही होता है ज्यादातर कि कीट नहीं मरते हैं, लेकिन उनको अपन मैनेज कर सकते हैं। हाँ, असरदार ज्यादा होने पर इसमें ज्यादा कहीं इल्ली का अटैक होता है, तो अपन फिर इंसेक्टिसाइड की ओर अपना रुख बदल लेते हैं। जैसे इसमें सबसे अच्छा जो भी इंसेक्टिसाइड मार्केट में मिलते हैं इल्ली मारक, वो सभी कैसे होना चाहिए ग्रीन टैग वाले, ग्रीन अपने जो रहता है उसमें ट्राइंगल, तो वो ग्रीन मार्किंग वाले होना चाहिए, लेबल लगा रहता है। जैसे रेड आता है बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, ऐसे येलो होता है अपना, तो सबसे ज्यादा सब्जियों में करना चाहिए ग्रीन लेबल वाले।
2: अच्छा, तो ये मतलब पर्यावरण का दृष्टि से भी अच्छा रहे ग्रीन लेबल वाला?
4: हाँ, ग्रीन लेबल वाले पर्यावरण के बात से अच्छे होते हैं, साथ ही साथ मानव जाति के लिए बहुत अच्छे होते हैं, टॉक्सिक बहुत कम होते हैं, 3 या 4 दिन की इनकी टॉक्सिसिटी लेवल होती, माने हानिकारक होते हैं। 1-2 दिन में जैसे भिंडी की पिकिंग की बात करें तो ये क्या है वीक में 2 बार करना पड़ती है अपन को, एक दिन छोड़ के 1 दिन, तो अपन को ऐसे इंसेक्टिसाइड चुनना है जिनका जो असर है वो 1-2 दिन रहे, क्योंकि अपन को तोड़ना भी है उसको आगे।
2: हाँ, तोड़ना भी, बाजार में बेचना भी।
4: हाँ, बाजार में बेचना है तो उसके लिए अपन इनका ऐसी इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं जिनका असर एक दो दिन तक रहता है।
3: अच्छा सर, पत्ती पीली जाए पड़ी जाए तो ओकाले भी यह अपन दवा उपयोग करा कहीं?
4: हाँ, पत्ती पीली इसी में जैसे अपन ने बात की थी कि कुछ पत्ती खाने वाले कीट होते हैं और कुछ पत्ती से रस चूसने वाले कीट।
3: हाँ, हाँ।
4: तो पत्ती से जो पीली पड़ती है वो पत्ती में जो इनसे कीड़े होते हैं वो रस चूसते हैं जिससे अपनी पत्ती क्या पीली पड़ जाती है। इसके लिए जो पत्ती पीली पड़ती है भिंडी में सबसे ज्यादा, उसके लिए सफेद मक्खी जो आती है भिंडी में उसके द्वारा पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ऐसे इसके द्वारा जो एलोमोजिक रोग बोलते हैं किसान भाई उसको, कि पत्तियां पीली पड़ गई हैं एलोमोजिक रोग के नाम से, ये एक वायरस के द्वारा होती है। जो व्हाइट फ्लाई होती है सफेद मक्खी होती है उसके द्वारा वायरस फैलता है जिससे वो पूरे के रोग पीली की पीली दिखाई देती है। इसके निदान के लिए किसान भाई जैसे इसकी निगरानी के लिए सबसे पहले किसान भाई एलो स्टी की ट्रिप आते हैं मार्केट में, बहुत सस्ते होते हैं, या किसान भाई अपने स्वयं के बना सकते हैं। जैसे इसके बनाने के लिए एलो स्टी की ट्रिप बनाने के लिए किसान भाइयों को जैसे येलो कलर की कोई भी फाइबर की सीट ले सकते हैं, या अपने पास जैसे चद्दर हो कोई भी खाली ड्रम हो उस पर अपने येलो कलर करके ग्रीस और स्टी की मटेरियल को चिपकाते हैं और खेत के चारों तरफ लगा देते हैं, जिससे अपन को उसकी क्या है निगरानी पता पड़ जाता है कि ये कीट फील्ड में आने लगा है। इसके निदान के हाँ इसमें दोनों होते हैं, कीट की एक तो पता भी पड़ता है कि कीट आने लगे हैं फील्ड में, दूसरा क्या है इस पे जो कीट आते हैं वो चिपक जाते हैं।
3: अच्छा।
4: कुछ कंट्रोल भी करता है, साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग हो जाती है। इसके निदान के लिए भी किसान जैसे नीम ऑयल है अपना, नीम अरंडी ऑयल है, कस्टर्ड ऑयल है, कुछ इस टाइप के जो जैविक जो घर पे होम मेड इंसेक्टिसाइड है उनका यूज कर सकते हैं। नीम पत्ती का स्प्रे कर सकते हैं, छाछ का यूज कर सकते हैं। सब्जियों में किसान भाइयों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे इंसेक्टिसाइड का यूज करें जो एक से दो दिन तक असर रखते हो, क्योंकि ये भिंडी की सब्जी अपनी जितनी भी पत्ती वाली सब्जी होती है दो तीन दिन में इनकी जैसे पिकिंग होने तोड़ना पड़ता है, जैसे सब्जी वाली है वो आठ दिन में अपन को काटना पड़ती है। तो जैविक इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए किसान भाइयों को, जिसमें ज्यादातर ये सकिंग पेस्ट है तो इसमें नीम ऑयल बहुत अच्छा सरदार होता है जो उसको कंट्रोल कर देता है।
3: अच्छा सर, ये तो आपने बताया भिंडी की खेती के बारे में, तो हमारा किसान भाई भिंडी की खेती करेगा ना फसल लगाओ तो एक ही पैदावार से हमारा किसान भाई कितना मुनाफा कमाई सके?
4: मैम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसान भाई जैसे जैविक और केमिकल खेती के बारे में आजकल बहुत ज्यादा किसान सतर्क है और जानना चाहता है कि कैसे इसका अच्छा मुनाफा लिया जाए। अगर किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, यानी जो अच्छे तकनीकी किसान है जो हमेशा सब्जी की खेती करते हैं, तो ऐसे किसान भाइयों को एक एकड़ से लगभग 40 से 50 क्विंटल भिंडी की पैदावार आराम से मिल जाती है।
3: बिल्कुल।
4: लागत की बात करें तो लगभग 20 से 25 हजार रुपए प्रति एकड़ खर्च आता है। बाजार भाव अच्छा मिलने पर किसान भाई 3 से 4 महीने में ही 80 से 1.5 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। करें तकनीकी की मैम, जैसे कुछ किसान आजकल स्टार्ट ही कर रहे हैं सब्जी का खेती, तो उन किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी रहता है कि वो कैसे मुनाफे को निकालें। तो ये बहुत जरूरी है वो अपना एक रजिस्टर मेंटेन करें कि अपन कितना लगा रहे हैं और कितना फायदा हो रहा है। तो इस टाइप से वो करेंगे तो जरूर उनको इस खेती के लिए उनको अक्सर मिलेगा और वो उस खेती को बहुत जल्दी अपनाएंगे कि पैदावार में क्या कितना लगाते हैं और कितना डिफरेंस है लगाने।

0: करने के बाद और कितना हमें मुनाफा हुआ है, तो इसके लिए किसान ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी उनको पता पड़ जाता है कि हम इस टाइप्स की खेती करते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है। बाकी जो थोड़े तकनीकी या वैज्ञानिक तरीके से किसान भाई खेती नहीं करते हैं तो थोड़े उनके मन में हिलमिलाहट रहती है कि सब्जी की खेती ये खराब हो जाती है इस टाइप से, वो भी उनके मन में थोड़ी आशंका रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब, आज अपन ना भिंडी की उन्नत खेती का बात करी, बरसात को मौसम छे, हमारा किसान भाई अभी सब्जी भाजी लगाई भी रहा, तो इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ना। आप जो हमारा किसान भाई इन कार्यक्रम सुनागा तो कार्यक्रम का माध्यम से वो भी एक बारे में जानागा, तो कार्यक्रम में आना का लेना, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम, और सभी किसान भाइयों को खेती के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान बहनों ने अभी हम सुनी रहा था भिंडी की उन्नत खेती, जानकारी दी रहा था डॉक्टर भरतलाल सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान विभाग आरएके कृषि महाविद्यालय सीहोर सी। न भाई बहनों ने अपना कार्यक्रम में आवा सुना जापन एक लोकगीत जिख गायो संजय महाजन उनकी मंडली ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: किसान भाइयों ने अपना पास संयोगितागंज मंडी का भाव आएगा तो आपको बता देवा। मंडी में आज गेहूं की आवक रही 1560 क्विंटल, जिको भाव रहो 2100 से लगे ना 3000, मॉडल भाव 2628 रुपया। तिल्ली की आवक रही 8 क्विंटल, जिको भाव रहो 9715 रुपया से लगे ना 11000 रुपया। सोयाबीन की आवक रही 663 क्विंटल, जिको भाव रहो 4500 से लगे ना 7390 रुपया। मिर्ची की आवक रही 22 क्विंटल, जेको भाव रहे हो 17800 सी, एको एकज भाव रहे हो 17800 रुपया। चना की आवक रही 94 क्विंटल, जेको भाव रहे हो 4500 सी लगे ना 7600 रुपया, मॉडल भाव 7420 रुपया। मटर की आवक रही 320 क्विंटल, जेको भाव रहे हो 2205 सी 3980 रुपया, मॉडल भाव 3695 रुपया। मूंग की आवक रही 103 क्विंटल, जेको भाव रहे 5000 से लगे ना 7470 रुपया, मॉडल भाव 5700 रुपया। मक्का यानी कि भुट्टा की आवक रही 6 क्विंटल, जेको भाव रहे 2000 से लगे ना 2501 रुपया। ज्वार की आवक रही 5 क्विंटल, जेको भाव रहे 2505 रुपया। डॉलर चना की आवक रही 2962 क्विंटल, जेको भाव रहे 5600 से लगे ना 9300 रुपया, मॉडल भाव 7900 रुपया। राजमा की आवक रही 43 क्विंटल, जेको भाव रहे 10000 से लगे ना 11000 रुपया। लक्ष्मीबाई नगर का भी भाव हमारा पास आएगा तो भी हम आपको बता देवा, जेमा सोयाबीन की आवक रही 1734 क्विंटल, जेको भाव रहे 3300 से लगे ना 7365 रुपया, मॉडल भाव 7335 रुपया। गेहूं की आवक रही 2115 क्विंटल, जेको भाव रहे 2280 से लगे ना 2860 रुपया। चना की आवक रही 4 क्विंटल, जेको भाव रहे 5550 से लगे ना 6505 रुपया। न मूंग की आवक रही 3 क्विंटल, जेको भाव रहे 6705 रुपया। ये तो था मंडी ना का भाव, न चलते चलते काल की भी तय कर लेवा। काल सवेरा खेती की बात में अपन सुनांगा प्राकृतिक खेती का बारे में जानकारी, न संजा की घड़ा प्राकृतिक खेती कसा करा इना विषय पर जानकारी देगा डॉक्टर श्री पूर्णाशंकर बारचे, रिटायर्ड कृषि विस्तार अधिकारी। न चलता चलता एक लोकगीत आरु सुनी लेवान, जेख गाय अपनी बहन हेमलता उपाध्याय न।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

भाई वंडोनी अभी हमने हेमलता उपाध्याय उनकी मंडली को गायली निमाड़ी लोग भी सुनियो न एक साथ ज हमारो आज को खेती गृहस्थी कार्यक्रम को समय भी समाप्त हुई। तो अपनी बहन का देव आज्ञा राम राम।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। रात्रि के 8 बजने को हैं। कुछ पलों बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: रात्रि के 8 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री का पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का दौरा और विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: संजीव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद
4: संजीव जी। सबसे पहले तो आज के घटनाक्रम पर अगर हम नजर डालें तो एक ही दिन में हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में करीब 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ होने का कार्यक्रम रहा है, तो इसे आप सिर्फ विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं या आप इसके पीछे सरकार की एक ऐसी सोच देखते हैं जहां पर पूरे देश में लगातार विकास को और आधारभूत ढांचे को बढ़ावा दिया जा रहा है?
5: जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि इस सरकार की प्लान यही रही है कि विकसित भारत बनाना है 2047 तक। तो विकसित भारत के लिए हर कोना भारत का जो है वो विकसित होना चाहिए, और इस फील्ड में, इसी श्रृंखला में ये जो आज के प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये प्रधानमंत्री ने कुछ इनॉग्रेट किए हैं, कुछ का फाउंडेशन स्टोन ले किया है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। अब आप नॉर्थ में अगर देखें तो दिल्ली से ऊपर नॉर्थ में चंडीगढ़ एक मेजर सेंटर है जो नॉर्थ पूरे को केटर करता है, जो स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से भी लोग वहाँ आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी खुद में है। तो दिल्ली के नॉर्थ में एक मेजर सेंटर है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में भी करीबन 4500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स थे, हेल्थ केयर में है, एजुकेशन में है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में है। इसके अलावा पंजाब में करीबन 5200-5400 करोड़ के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के, रेलवेज के हैं, और हरियाणा में करीबन 14,500-15,000 करोड़ के। तो टोटल में 25,000-26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस एरिए की अगर आप सिग्निफिकेंस समझें, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हरियाणा भी साथ लगता है, तो एक पहले बॉर्डर स्टेट ही था, पूरा पंजाब एक ही था जी। तो इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब में बहुत अरसे तक, 2 दशक पहले आतंकवाद भी रहा और उससे जूझता रहा, तो डेवलपमेंट कहीं पीछे चली गई। तो उसको पेस अप करने के लिए, और जैसे कि ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ईज ऑफ लिविंग के लिए भी ये ज़रूरी हैं। और दूसरी बात, एक आज जो सबसे सिग्निफिकेंट बात थी वो ये थी कि कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन।
4: मैं बिल्कुल इसी पर आने वाला था, मैं आपसे पूछने वाला था कि आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, तो रेलवे के इतिहास में अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे की भविष्य की दिशा है, उसमें बदलाव होना है, और भारत अब उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेनें परिचालन की स्थिति में है, लगातार उन पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि हम लगातार इसको बढ़ावा देते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो हमारे आधारभूत ढांचे और जो हमारी रेलवे की व्यवस्था, उसे कैसे आकार देंगी?
5: जी बिल्कुल, इंडियन रेलवेज जो पहले से बहुत आधुनिक हो चुका है, हर रोज नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन, एडिंग न्यू लाइन्स, नई परियोजनाएं, और उसको मॉडर्नाइज करने के लिए पूरा एफर्ट किया जा रहा है। तो आज की श्रृंखला में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अब उन देशों में आ गया है जिनके पास बहुत कम टेक्नोलॉजी है। एक तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन प्रोपेल्ड जो इसके इंजन है, बेसिकली आप वाटर वेपर्स बाहर छोड़ता है, तो देयर इज जीरो पोल्यूशन। सो जो एमिशन गैसेस जो पहले हैं, पहले आप देखोगे तो पहले स्टीम इंजन यूज हुआ करते थे, तो कोयला यूज होता था तो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए अंग्रेजों के टाइम पे। उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन आई, तो ऑलमोस्ट 99% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे ट्रैक्स की हो चुकी है आज की डेट में। लेकिन एनर्जी सिचुएशन को भी देखते हुए बहुत जरूरी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना। सो हाइड्रोजन ट्रेन इसी श्रृंखला में एक मॉडल है जिसमें आप हाइड्रोजन सेल प्रोपेल्ड इंजन लगाएंगे, जिससे एक तो पोल्यूशन नहीं होगी और दूसरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। सो एनर्जी प्रेशियस है, एनर्जी और चीज़ों में लगानी है, तो ट्रेन चलाने की जगह हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। और आपको बता दूं कि भारत अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ US, चाइना, फ्रांस और जर्मनी और जापान के पास है, और अब इंडिया के पास भी है
4: जी।
5: और ये जो इंजन है 1300 हॉर्स पावर का इंजन, मतलब वर्ल्ड का माना जा रहा है कि सबसे पावरफुल इंजन है इसके। ट्रेन में 10 डब्बे हैं और करीबन 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है जींद और सोनीपत के बीच में। और ये भी हेरिटेज, जैसे हरियाणा को माना जा रहा है कि बड़ा हमारी हेरिटेज से जुड़ा हुआ है, वह महाभारत हुई तो हेरिटेज के साथ हरियाणा को जोड़ते हैं, तो ये हेरिटेज सिटीज हैं एक तरह से दोनों को जो जोड़ रहे हैं।
4: इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं कि उनके क्या विचार हैं।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से

0: सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान इस तरफ भी जाता है कि कार्बन उत्सर्जन को लेकर के हमारी जो सोच है, जो गोल हमने डिसाइड करके रखे हैं, उस दिशा में भी भारत लगातार बढ़ रहा है। अब उसमें ये एक बड़ा कदम होगा।
2: जी बिल्कुल, कार्बन एमिशंस तो खत्म ही हो जाएंगी, ओवर गैसियस एमिशंस जितनी भी हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि ये सिर्फ हवा में यू नो हाइड्रोजन यूज कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना रहा है, वाटर वेपर्स छोड़ रहा है। और ट्रेन की ऐसा नहीं कि तेज नहीं चलेगी, यू नो 75 किलोमीटर की मैक्सिमम लिमिट है इस ट्रेन की। इसको जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको आगे भी और एक्सटेंड करेंगे, ये फर्स्ट ट्रेन है लेकिन इसको और ट्रेन्स भी इस्तेमाल करेंगे और इस ट्रैक को भी एक्सपेंड करेंगे।
1: वैसे विकास की कई योजनाओं का आज उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, जिसका इंतजार एक लंबे समय से देश में किया जा रहा था, इसे भी राष्ट्र को समर्पित किया गया जिससे कि यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि देश में एक्सप्रेस वे का एक तरह से पूरा एक तंत्र बनता जा रहा है कि पूरे देश को ऐसे कनेक्ट किया जाए कि यात्रा आसान हो और जो हमारी लॉजिस्टिक व्यवस्था है उस पर भी काफी पॉजिटिव असर पड़े। आपको क्या लगता है?
2: जी बिल्कुल, आज की डेट में करीबन 6-8 लाख करोड़ का, ये थर्ड मोदी गवर्नमेंट में इतने लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत मेजर फोकस है और जितनी एक्सप्रेसवेज बन रही हैं इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है, सिर्फ ना सिर्फ लोगों का आवाजाही में समय बच रहा है लेकिन ट्रांसपोर्ट, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें भी कॉस्ट की कमी हो रही है। यू नो जैसे टोल ब्रिजेस को भी ऑटोमेटिक किया जा रहा है, आपको रुकना ना पड़े, समय कम लगे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में, मैन पावर वेस्टेज ना हो। तो ये सब करते कराते अब जैसे देहरादून की अभी एक्सप्रेस वे जब कुछ महीने पहले इनॉग्रेट हुई है, वहाँ देहरादून पहुँचने में दिल्ली से 5-6 घंटे लगते थे, आज की डेट में 2-2.5 घंटे में बंदा पहुँच रहा है। सिमिलरली साउथ में या पूरे इंडिया में इनफैक्ट यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना फोकस मेजर दिया जा रहा है। और ये दिल्ली से कटरा एक मेजर माता वैष्णो देवी है वहाँ, और बहुत लोग वहाँ आस्था की वजह से भी जाते हैं, तो एक यू नो इम्पॉर्टेंट स्टेप है अमृतसर को जोड़ते हुए, पूरे पंजाब को, हरियाणा को जोड़ते हुए, यू नो इनसे इससे कॉस्ट बहुत कम होगी और ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी।
1: पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इम्पोर्टेंट ये चीजें हो जाती हैं।
2: जी अब मेजर पुश दिया जा रहा है कि बॉर्डर स्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप करनी है। जैसे आज एक कबीर ट्रेन का नाम है संत कबीर के नाम पे, छियाटा से लेकर वाराणसी तक। अब छियाटा गुरु रविदास जी के साथ माना जाता है, लेकिन छियाटा है कहाँ? ऑलमोस्ट पाकिस्तान बॉर्डर के वाघा बॉर्डर से थोड़ा सा आगे, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेशन है अटारी वाघा है, लेकिन उससे पहले वाला स्टेशन जो है वो छियाटा है, बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है अमृतसर से भी आगे। तो वहां से ट्रेन जुड़ रही है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे ऑलमोस्ट आ गए हम। तो आप ये देखिए कि कितने यू नो डेवलपमेंट को पुश दिया जा रहा है बॉर्डर स्टेट में, कि वहां कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, उससे डेवलपमेंट ही होगा और विकसित भारत तभी हो सकेगा जब सारे स्टेट्स डेवलप होंगे।
1: बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जैसे कि कई सारी ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड हाईवे परियोजनाओं पर भी काम हो रहा है जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। अब सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है कि सड़क निर्माण की जो कनेक्टिविटी उसके साथ साथ औद्योगिक विकास भी हो, लॉजिस्टिक्स के लिए भी अच्छी सुविधाएं हमें मिल सके, कृषि और रोजगार को भी बढ़ावा मिले। ऐसे में हरियाणा में जो नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, अस्पतालों का लोकार्पण किया गया, तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव पर भी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, जहां पर कि डॉक्टरों की उपलब्धता हो, मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार का काफी ध्यान रहता है।
2: जी बिल्कुल, और अगर आप देखा जाए तो भिवानी बिल्कुल यू नो सेंटर ऑफ हरियाणा में पड़ता है, और एक तरफ नारनौल, तो एक मेडिकल कॉलेज भिवानी में है, एक नारनौल में है, साथ में एक हॉस्पिटल भी है नारनौल में। तो आप देखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी यहाँ से दिल्ली से बाहर जाएं तो रोहतक में अच्छा मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ एक अच्छा हॉस्पिटल है पीजीआई रोहतक में। तो हरियाणा में ये यू नो बढ़ावा, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो हिसार में भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है, तो एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में ये बहुत एक अहम स्टेप है कि रूरल बैकग्राउंड से लोगों को चिकित्सा पहुंचे, हेल्थ चिकित्सा पहुंचे, अच्छी चिकित्सा मिले उनको, ताकि उनको दूर स्टेशन्स में ना जाना पड़े। तो और चंडीगढ़ में भी, जैसे चंडीगढ़ एक मेजर सेंटर माना जा रहा है, तो आज जो चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किए हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें पीजीआई में एजुकेशन और हेल्थ केयर में दोनों में है,
1: मदर एंड चाइल्ड सेंटर
2: सेंटर का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कुछ कहा है, आइए सुनते हैं।
0: आज यहाँ चंडीगढ़ पीजीआई में एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज का विस्तार हो रहा है, यहाँ एडवांस न्यूरोसाइंस सेंटर, एडवांस मदर एंड चाइल्ड

0: सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, ये प्रोजेक्ट लाखों लोगों को इलाज के और बेहतर सुविधा देंगे। मुझे याद है 2015 में मैं चंडीगढ़ पीजीआई के दीक्षांत समारोह में आया था। तब से अब तक इस दशक में पीजीआई की क्षमताओं में बड़ा विस्तार हुआ है।
1: संजीव जी, आपको ये लगता है कि भारत अब स्वास्थ्य सेवाओं में विश्व स्तरीय तरीके से ध्यान दे रहा है, ऐसे संस्थान तैयार कर रहा है जहां पर किफायती दाम पर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, और आयुष्मान योजना का भी इसमें बड़ा रोल रहा है?
2: जी बिल्कुल। आप अगर पहले देखें तो भारत में एक एम्स थी दिल्ली में, आहिस्ता आहिस्ता पूरी विजन से चले हैं कि एम्स पूरे कंट्री में उस एक नेटवर्क बनता जा रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो अगर एम्स जैसे सेंटर्स पूरे देश में बनेंगे तो उससे सारे कॉर्नर्स में पहले हर आदमी जिसको क्रिटिकल केयर चाहिए होती थी वो एम्स में दिल्ली में आते थे। आज की डेट में वो उनको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली पे भी बर्डन बढ़ता रहता था, तो दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। कोई मतलब कहीं हर स्टेट में बनता जा रहा है, हर रीजनल सेंटर में एक एम्स सेंटर बनता जा रहा है। सिमिलरली एजुकेशन हब्स भी बनते जा रहे हैं, साउथ में भी हैं, नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। जैसे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई थी पहले पुरानी सरकारों में। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पंजाब में लॉन्च करते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी सरकारें जो ब्रिटिश टाइम के रेलवे स्टेशंस बने हुए थे वो वैसे के वैसे ही थे, कहीं उनको ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रेलवेज का नेटवर्क पूरा डेवलप करना, रेल ट्रैक्स नए करने। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले अनाउंसमेंट्स हो जाया करती थी। हमने भी सुना है कि पहले रेल मंत्री जब बजट प्रेजेंट किया करते थे, रेल बजट अलग होता था, तो लोग देखते थे सुनते थे पार्लियामेंट में कि नई ट्रेन्स, इतनी सारी नई ट्रेन्स लगा दी, लेकिन वो इंप्लीमेंट होता ही नहीं था। कितने कितने दशक लग जाते थे उनको इंप्लीमेंट करते वक्त। तो आज की डेट में प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम बिलीव करते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं और ईज ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, आम नागरिक की को अच्छी लाइफ जी सके। और जो ये हाइड्रोजन ट्रेन का जो एग्जाम्पल था, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज 21वीं सदी में मतलब जा रहे हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी, और वो मेक इन इंडिया का भी एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर जैसे भारत आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है तो ये सेल्फ सफिशिएंसी बहुत जरूरी है
1: बिल्कुल
2: भारत को आगे बढ़ने के लिए।
1: आपको क्या लगता है कि विकास की यात्रा में भारत आज कहां पर खड़ा है?
2: नहीं बिल्कुल, भारत अब बहुत तेज रफ्तार से आगे चल रहा है। जो पहले रफ्तार बहुत धीमी थी, अब भारत ने वो रफ्तार पकड़ ली है और बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। और जो लक्ष्य है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, उस लक्ष्य को पूरा करने में ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं।
1: प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि हम हाइड्रोजन के लिए लगातार काम करते रहेंगे और हाइड्रोजन हब बनाएंगे ताकि हम उस पर ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें और देश का पैसा है वो देश में ही रहे और विकास के काम आए।
2: जी बिल्कुल, पहले इक्विपमेंट मॉडर्नाइज करने के लिए इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट किया जाता था
1: जी।
2: अब मोस्टली क्रिटिकल पार्ट्स इंडिया में ही बन रहे हैं, भारत में ही क्रिटिकल पार्ट्स बन रहे हैं। जैसे सेमीकंडक्टर मिशन में भी अभी लास्ट कैबिनेट में मंजूरी दी गई, सेमीकंडक्टर 2 मिशन, सिमिलरली मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में नई स्कीम लाई। तो ये सब एफर्ट्स जो हैं भारत को विकसित बनाने की श्रृंखला में एक मेजर माइलस्टोन्स हैं। भारत मतलब मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर चिप बनाने में बहुत आगे जा चुका है और आगे चलते वक्त और आगे जाएगा। विकसित देशों के बीच में आज की डेट में हाइड्रोजन ट्रेन का आपने एग्जांपल दिया, बाकी सब देश हैं वो विकसित देश हैं जिन्होंने हाइड्रोजन सेल प्रोपेल्ड इंजन बनाए हैं। तो भारत उन देशों की श्रृंखला में जुड़ता जा रहा है जो विकसित देश हैं, और यही एक पॉजिटिव फैक्टर है कि भारत जल्द ही विकसित होने जा रहा है।
1: संजीव जी, इस चर्चा में आपने भाग लिया, तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री का पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का दौरा और विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कीजिए स्वीकार आपकी रेडियो दोस्त श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, प्यार का सबसे खूबसूरत एहसास सिर्फ किसी का हाथ थाम लेना नहीं होता, बल्कि उसकी यादों में हमेशा के लिए बस जाना भी होता है। मोहब्बत में अक्सर एक बात बड़े प्यार से कही जाती है, हमें भूल मत जाना। ये कोई डर नहीं, बल्कि अपनेपन का सबसे प्यारा इजहार होता है। जब दो दिल एक दूसरे के करीब आते हैं, तो हर मुलाकात के बाद ये एहसास और गहरा हो जाता है। यादों का सिलसिला यूं ही चलता रहे, तेरी मुस्कान से मेरा हर दिन यूं ही खिलता रहे।

प्यार का एहसास केवल मिलने में नहीं बल्कि एक दूसरे को याद करने में भी होता है। कभी हल्की सी नाराजगी, कभी रूठना, मनाना और फिर मुस्कुरा कर कहना, देखना मुझे भूल मत जाना, यही रिश्ते को और भी मधुर बना देता है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और

0: बी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। यादें कभी दस्तक नहीं देती, बस चुपके से दिल में उतर जाती हैं। जिसे दिल सच्चे मन से चाहता है, उसकी कमी हर पल महसूस होती है। तेरी यादों का मौसम कुछ ऐसा छाया है, तेरी यादों का मौसम कुछ ऐसा छाया है, हर फूल में बस तेरा ही चेहरा नजर आया है। दूर होकर भी तू मेरे दिल के सबसे करीब है, यही तो मोहब्बत का सबसे खूबसूरत साया है।

कुछ रिश्ते दूर होकर भी साथ निभाते हैं, कुछ रिश्ते दूर होकर भी साथ निभाते हैं, हर खामोशी में अपनी आवाज छोड़ जाते हैं। जब भी याद आती है तेरी, जब भी आती है तेरी याद, लब मुस्कुरा उठते हैं और नयन भीग जाते हैं।

भूलने की बात तुम यूं ही ना किया करो, भूलने की बात तुम यूं ही ना किया करो। हम तो हर सांस में तुम्हारा नाम लिया करते हैं, दूरियां चाहे जितनी भी हो जाए, दिल से तुम्हें कभी जुदा नहीं किया करते हैं।

सच्चा प्रेम वो है जिसमें दूरियां बढ़ सकती हैं, लेकिन दिलों की नजदीकियां कभी भी कम नहीं होती। समय के साथ चेहरों की चमक बदल सकती है, पर यादों की खुशबू हमेशा महकती रहती है। इसलिए प्रेम में याद दिलाना कोई शिकायत नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को और गहरा बनाने का सुंदर बहाना होता है। तुम मेरी यादों में हो, मेरी दुआओं में हो और हमेशा मेरे दिल में रहोगे। वादा करो, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, हमारे रिश्तों का रंग कभी फीका न पड़ पाए। अगर कभी मेरी याद आए, बस मुस्कुरा देना, मैं वहीं मिल जाऊंगा जहां तुम्हारा दिल मुझे बुलाए।

इसी के साथ दिल ने फिर याद किया समाप्त होता है। दीजिए इजाजत और कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। 8:45 होने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहां लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देशभर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी

0: उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रूपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says Centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday.

0: लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ और सी रामचंद्र का संगीतबद्ध किया हुआ गीत। फिल्म का नाम था अलबेला।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: अमृत फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
3: सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
4: अच्छा दादा।
3: हाँ तो बच्चों।

0: घोड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,
1: अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है।
0: तो अंधे ने कहा,
2: अरे मूर्ख तुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो चोर

0: एक मियां बीवी आठवीं मंजिल पर रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

0: का आदमी हलवाई की दुकान पर गया। उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया, एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा,
1: हुजूर, गुस्ताखी माफ, पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूं।
0: उस आदमी ने पूछा, कहां है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा,
1: हुजूर, वो

चित्रगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, और अब आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में मुक्ति फिल्म का एक गीत। आनंद बख्शी गीतकार हैं और इस गीत के लिए संगीत को तैयार किया है RD बर्मन ने। लीजिए सुनिए।

0: इसी गीत के साथ चित्रगीत अब समाप्त होता है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन। मन भावन सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है नया दौर फिल्म से। इस गीत के लिए पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर। ये पत्र आया है राजस्थान से। भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबेल पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राज

श्रोताओं, नया दौर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में गीत को लिखा था साहिर ने, और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत आवाज़ में दोस्ती फिल्म का ये गीत। मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और नवीन शर्मा। ये पत्र आया है मलोट कैंप पंजाब से सतीश मेघलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरुचरण ग्रोवर और रमेश मेघलानी का। मलोट से ही ये पत्र आया है। भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। अर्घापुर से पत्र है। भेजने वाले श्रोताओं का नाम है दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानंद जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, कुमारी साध्वी जोशी और गणेश हारगांवकर। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दोस्ती फिल्म का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम। अब अगला पत्र जो हमने शामिल किया है वो भेजा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। ये पत्र आया है शाहू नगर यवतमाल से। भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतना मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। ये पत्र है चंदन नगर सतारा से। भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति वाघमारे, वर्षा वाघमारे, श्रवण, श्रीमेण वाघमारे। कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता चौहान, अनिकेत चौहान और माया चौहान। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतीक बिरक, मीका बिरक। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। ये पत्र आया है मूसाखेड़ी इंदौर से। पंचशील कॉलोनी से हमें ये पत्र इन्होंने भेजा है। श्रोताओं के नाम हैं प्रकाश सेन, सुनीता सेन, रवि सेन, कृष्णा सेन और डुग्गू सेन। आपकी पसंद पर जो गीत हमने कार्यक्रम में शामिल किया है उसे हमने लिया है सरगम फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हमने शामिल किया है आप आए बाहर आई इस फिल्म से। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग आपको सुनवा रहे हैं।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हैं इस गीत में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम आपको बताएं, इनके नाम हैं कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। ये पत्र है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से। श्रोताओं के नाम हैं नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबैद, रजिया, जुनैद, अलीना और मुआज के साथ हैं आयत। पंढर कवड़ा से ये पत्र आया है। श्रोताओं के नाम हैं अनिल बुरांडे, उषा, प्राची बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री और इनके साथी। बल्ला रशा से सुरजी लोढ़े, प्राची और एकलव्य। ये पत्र आया है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के जिस गांव का नाम इन्होंने लिखा है वो है सिमगा से। इनका इनके नाम हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू, सन्नी और कोमल यादव। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर आप आए बाहर आई इस फिल्म से ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मनभावन कार्यक्रम में अगला गीत हमने शामिल किया है लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है असद भोपाली ने और संगीतकार हैं राम लक्ष्मण। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ये पत्र आया है राजकोट से। श्रोताओं के नाम हैं मधुसूदन भट्ट, आरती, जास्मिन और प्रयागराज। नेवासा खुपटी से माया, शिवांश, शीतल, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट। श्रीरामपुर भोकर से हरिभाव बिड़वे, श्रावण, अनीता बिड़वे। ये पत्र है भानपुरा जिला मंदसौर से। श्रोताओं के नाम है परवीन, बालकिशन, समीर, खुशी और राजू भाई। एक पत्र और है हमारे पास। भेजने वाले श्रोता का नाम है भरत सिंह चौहान। इन्होंने पत्र भेजा है शाजापुर से। तो आइए सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत।

0: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:06 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। मन भावन कार्यक्रम में अगला गीत हमने शामिल किया है लता मंगेशकर की आवाज में। आपने गीत सुन लिया है और अब आपको जो गीत सुनवाने जा रहे हैं वो है अलका याग्निक और शान की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है कल हो ना हो। इस गीत को अपनी कलम से लिखा है जावेद अख्तर ने और ये संगीत है शंकर एहसान लॉय का। पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम आपको बता देते हैं। इनके नाम हैं कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, श्री डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमारी संचित वायाल और ये पत्र आया है मैताले से। भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, रिसोर से कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सर्वद देशमुख और समस्त राजे जाधव परिवार जो है वो ये गीत सुनना चाहता है। इनके साथ ये पत्र हमने शामिल किया है। ये पत्र आया है महाराष्ट्र से। श्रोताओं के नाम हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे। सोमानी नगर इंदौर से बी आर राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, सुभति, टोनी और निधि। गुमाश्ता नगर 71 स्कीम से ये पत्र आया है। श्रोताओं के नाम हैं अनिल कवचाले, सुबीहा और स्मिता। ये पत्र है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। श्रोताओं के नाम हैं बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन भवन कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं शान और कविता सुब्रमण्यम की युगल आवाजें, जावेद अख्तर का गीत और फिल्म का नाम है दिल चाहता है। पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। ये पत्र है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर का। ये पत्र आया है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन का। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाफ, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूरा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। ये पत्र आया है जयराज राजकोट से, श्रोताओं के नाम है मधुसूदन भट्ट, आरती और पूजा। तो आइए आपकी पसंद पर सुनते हैं दिल चाहता है फिल्म का ये गीत।

इश्क फिल्म का गीत अब आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। अनु मलिक का संगीत है और बोल लिखे हैं राहत इंदौरी ने। फरमाइश करने वाले श्रोताओं के नाम हैं लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पावर, मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवार से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। ये पत्र आया है मलकापुर से। भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवरीला क्षीर सागर, संजय चौहान, तालखेत,

से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ये पत्र है लाबरा भैरव इंदौर से। श्रोताओं के नाम है अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिका, कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैज नबी शेख, शाकिर शेख, इस्लाम अबी, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सानिया, शकील पठान, बिस्मिल्ला शेख, कदर शेख और नीलोफर शेख। ये पत्र है जिला नांदेड़ से चांदनी आयुब, सैयद आणी और राजे अमन सैयद। इनके साथ इनके परिवार के सभी सदस्य ये गीत सुनना चाहते हैं।

तो श्रोताओं, ये था मन भवन कार्यक्रम का आखिरी गीत जिसे हमने इश्क फिल्म से लिया था। श्रोताओं, कार्यक्रम में शामिल करने के लिए पत्र और भी हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम से यही इजाज़त दीजिए और कीजिए स्वीकार आपकी रेडियो दोस्त श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम खत्म करने से पहले आपको बता देते हैं कि आप कार्यक्रम में पत्र भेज सकते हैं हमें। कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम मन भावन, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी इंदौर, पिन कोड है 452001। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में हमसे रोज नए श्रोता जुड़े और नए श्रोता हमें पत्र भेजें। पुराने श्रोताओं के साथ साथ नए श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम में हम शामिल करना चाहते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि नए नए श्रोता भी हमसे जुड़ेंगे और अपनी फरमाइशी फिल्मी गीतों की फरमाइश के साथ अपने नाम पत्रों में लिखकर हम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त और नमस्कार।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वन भवन। रात्रि के 10:30 होने को है, लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शंभू प्रसाद पवार का गाया राग बागेश्री कानड़ा। इनके साथ तबले पर संगति की है उल्लास राजहंस ने और वायलिन पर पंडित कमल कामले ने।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे शंभू प्रसाद पवार का गाया राग बागेश्री कानड़ा। इनके साथ तबले पर संगति की उल्लास राजहंस ने और वायलिन पर पंडित कमल कामले ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, पहले हिंदी में और उसके पश्चात अंग्रेजी में। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: میں محمد زبیر. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया. उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया. इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं. श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया. ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है. श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है. पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है.
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है. श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की

0: बिल की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
2: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।